सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

0: 91.2 MHz पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला
1: 91.2 MHz पर। ये तुम्हारे सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं, मैं या तुम्हारी भी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। ता श्रोताओं, कर देना अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीत कने। तुम्हारे सारे इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

0: समोसा मिलेगा। शट अप कर जाओ।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
0: चुप यार।
1: पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
3: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कर।

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे
1: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ,
2: ये लो भैया पानी।
1: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
3: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
5: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी।
4: जल है तो कल है।

0: ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
6: मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
7: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
8: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
0: मोहित मेरा इस्तीफा।
9: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
0: सॉरी यार।
9: काम कीजिए आप लोग अपना।
8: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
10: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।
11: बोला था ना तुझे, ये क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तू सिलेक्शन के लिए चला गया।
12: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
13: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
11: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता,
13: पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।
14: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
11: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
14: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
15: हेलो मम्मी, वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
16: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया। अरे एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
15: सॉरी बेबी।
16: क्या सॉरी यार, कमाल है। एक काम करो, ये लो मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए। 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तंगी दोनों के लिए चल रही है ना। अगल ना तो

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। आपातकालीन वाहनों को रास्ता ना देने पर हिमाचल प्रदेश में 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। APL परिवारों को अब राशन डिपो से 13 किलो आटा मिलेगा। शिमला स्मार्ट सिटी की पार्किंग व्यवस्था में बदलाव, अब ठेकेदार नहीं बल्कि लोग होंगे हकदार। हिमाचल को केरल से करीब 14 रुपए प्रति यूनिट से अधिक दर पर बिजली मिलने का समझौता। अक्टूबर में रोजाना 900 मेगावाट तक बिजली मिलने की संभावना। बच्चों की देखभाल के लिए अब पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पेड पितृत्व अवकाश की सिफारिश की। अब समाचार विस्तार से।

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि सड़क पर आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता दें और उन्हें रास्ता देने में किसी तरह की लापरवाही न बरतें। यदि कोई वाहन चालक आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नियम का पहली बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी बार नियम तोड़ने पर 6 माह तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों सजा का प्रावधान बताया गया है। पुलिस का कहना है कि एम्बुलेंस, दमकल और अन्य आपातकालीन वाहनों के लिए समय पर रास्ता मिलना बेहद जरूरी है। कई बार रास्ता न मिलने के कारण मरीज को अस्पताल पहुंचने में देरी हो सकती है और किसी की जान भी खतरे में पड़ सकती है। पुलिस ने वाहन चालकों को निर्देश दिए हैं कि जैसे ही सड़क पर कोई आपातकालीन वाहन दिखाई दे उसे सुरक्षित तरीके से रास्ता दें और अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे करें। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एपीएल परिवारों को मिलने वाले राशन के कोटे में बढ़ोतरी की गई है। नई व्यवस्था के तहत एपीएल परिवारों को अब 12 किलो की जगह 13 किलो आटा वितरित किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कोटे में ये बढ़ोतरी की है। विभाग के अनुसार महंगाई और रसोई के बढ़ते खर्च को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इससे प्रदेश के एपीएल परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से संबंधित अधिकारियों को नई व्यवस्था को जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं को बिना किसी देरी के संशोधित राशन कोटे का लाभ मिल सके इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इस फैसले से उन परिवारों को विशेष रूप से राहत मिलने की उम्मीद है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अपने घरेलू राशन की जरूरत पूरी करते हैं। शिमला में स्मार्ट सिटी के तहत पार्किंग व्यवस्था को लेकर नगर निगम ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। अब पार्किंग व्यवस्था में केवल ठेकेदारों का ही अधिकार नहीं रहेगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी पार्किंग आवंटित की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार ऑकलैंड और टूटू में आए आवेदनों को मंजूरी दी गई है और सोमवार से पार्किंग का आवंटन शुरू होने की बात कही गई है। बताया गया है कि ऑकलैंड पार्किंग की क्षमता करीब 315 वाहनों की है जबकि इसके लिए 230 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। पार्किंग के लिए आवेदन करने वाले लोगों के बीच पात्रता के आधार पर आवंटन किया जाएगा। नई व्यवस्था में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। इससे उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है जिन्हें अपने वाहनों को पार करने के लिए लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम की ओर से पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से पार्किंग का बेहतर संचालन हो सकेगा और स्थानीय लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए केरल के साथ बिजली खरीद का समझौता किया है। समझौते के तहत हिमाचल को अक्टूबर महीने में रोजाना करीब 900 मेगावाट तक बिजली मिलने की संभावना है। केरल के साथ पिकलॉड आवर्स में बिजली खरीद का समझौता हुआ है। हिमाचल में बिजली की मांग बढ़ने के दौरान अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार विभिन्न राज्यों और परियोजनाओं से बिजली की व्यवस्था कर रही है। हिमाचल को विभिन्न बिजली परियोजनाओं से भी बिजली का हिस्सा मिल रहा है। प्रदेश सरकार अपने हिस्से की बिजली दूसरे राज्यों को बेचती भी है लेकिन जरूरत के समय बिजली खरीदने की स्थिति भी बनती है। बिजली की दर को लेकर केरल के साथ हुआ समझौता 14.5 रुपए प्रति यूनिट से अधिक बताया गया है। ये समझौता पीक लोड के दौरान बिजली की जरूरत को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में बिजली की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखना और मांग के समय बिजली की कमी से बचना है। बच्चों की देखभाल को लेकर अब पिता की भूमिका को भी महत्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र में पुरुष कर्मचारियों के लिए पेड़ पितृत्व अवकाश देने की सिफारिश की है। आयोग ने निजी क्षेत्र में पुरुष कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 30 दिन की पितृत्व छुट्टी देने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही आयोग ने मातृत्व अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी मजबूत करने की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि बच्चों की देखभाल केवल माँ की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पिता की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सिफारिशों में ये भी कहा गया है कि बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों को नौकरी और वेतन से जुड़े नुकसान का सामना ना करना पड़े। आयोग ने सरकारी और निजी क्षेत्र में बच्चों की देखभाल से जुड़े नियमों में समानता लाने पर भी जोर दिया है।
निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है, जिससे वे अपने छोटे बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकें। रिपोर्ट में बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के लिए कामकाजी व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने की सिफारिश भी की गई है। साथ ही माता पिता को अपनी परिस्थितियों के अनुसार छुट्टी लेने की सुविधा देने पर जोर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक सेवाओं के वितरण के क्षेत्र में तेजी से बदलाव की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों और पहलों को लागू करते हुए प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में शुरू किए गए इन सुधारों का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। नई डिजिटल व्यवस्थाओं और मौजूदा प्रणालियों में किए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और विभाग अब महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को पहले की अपेक्षा अधिक तेज, व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से संचालित कर पा रहे हैं। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: समोसा मिलेगा।
1: शट अप कर जाओ।
2: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना

0: शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे।
1: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले
2: आया, ये लो भैया पानी।
1: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
3: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
5: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
4: जल है तो कल है।

0: भी सर।
1: हाँ, ये मेरा इस्तीफा।
0: क्यों
1: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
1: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
2: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
6: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
1: मोहित, मेरा इस्तीफा।
0: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
1: सॉरी यार,
0: काम कीजिए आप लोग।
6: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
7: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।
8: बोला था ना तुझे, ये क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तू सिलेक्शन के लिए चला गया।
9: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
10: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
8: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता।
10: पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।

0: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
1: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
0: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
2: हेलो मम्मी, वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
3: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया, अरे एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती। क्या सॉरी यार, कमाल है। एक काम करो, ये लो, मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए। 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तभी दोनों के लिए चल रही है ना। अगर ना तो

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से हम बोल रहे हैं और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो श्रोताओं कैसे हैं आप सभी लोग? हम पहुंच गए हैं 5 अक्टूबर, जी हाँ 5 अक्टूबर में हमारा प्रवेश हो चुका है और ये सुहानी सी सुबह कितनी प्यारी आज खिली हुई है ना। और साथ ही साथ आप सभी वीकेंड के बाद अपनी सारी एनर्जीज एकत्रित करके अपने अपने कामों पर चल पड़े होंगे या फिर अपने अपने दफ्तरों में पहुंच भी गए होंगे। और इसी के साथ हम भी पहुंच गए हैं अपने स्टूडियो आप सभी से बातचीत करने के लिए। तो चलिए कुछ भी कहने सुनने से पहले हम शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग
1: बेटा।
2: जी हमारी तरफ से भी गुड मॉर्निंग।
1: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ, I'm sorry।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना बावर्ची फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की और साथियों की आवाज़ों में। 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और आप सभी का स्वागत। जिन हमारे श्रोताओं ने अभी अभी रेडियो सेट ऑन किया, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्यारा सा गीत आपने भोर का ज़रूर सुना होगा। और इतनी लंबी जो इसमें नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग कही गई ना, आपको पता ही है, अगर आपने ये फिल्म देखी होगी तो ज़रूर आपको पता होगा कि इस फिल्म में आखिरकार था क्या। एक बावर्ची होता है घर का, जो कि घर के सारे टूटे हुए जो लोग होते हैं, बिखरे हुए अलग अलग से, उन सभी को मिलाने का काम करता है। और ये भी है कि आखिर में वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। और घर में कुछ लोग होते हैं जो कि थोड़े से पाश्चात्य सभ्यता से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो उन्हें अपनी संस्कृति में कैसे ढाला जाए उसकी कोशिश की जा रही थी, आप समझ गए होंगे। 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप सभी बने हुए हैं, और 88.4 मेगाहर्ट्ज तटवाल की आवाज़ हमीरपुर के श्रोताओं का भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपने फेसबुक पेज से भी लाइव हैं इस वक्त, और हमारे फेसबुक पेज के भी सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।

पीछे मध्यम मध्यम सी धुन है, सुन रहे आप। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। और सुबह की शुरुआत अगर अच्छे से विचार से हो जाए तो और भी क्या बात होती है ना। तो आज फिर से कोशिश मैं करूँगी, जैसे मैंने पिछली बार भी कोशिश की थी कि मैं इस विषय पर बात कर पाऊँ। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा ही सही रास्ते पर होती है। और इसके साथ ही अकेले चलने वाले लोग कमजोर बिल्कुल नहीं होते हैं, वो तो सबसे मजबूत होते हैं क्योंकि उनके पास खुद का साथ होता है। और हाँ, इतिहास गवाह है, कारवां हमेशा बाद में बनता है, इंसान पहले अकेला ही चलता है, पहले सिर्फ एक पागलपन और एक अकेला इंसान होता है। जैसे कि पिछले 2-3 कार्यक्रमों में मैं आपसे कह ही रही हूँ कि हमारे देश में भी ऐसा बहुत कुछ चल रहा है, अकेले इंसान बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। अब दमित गहलोत का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली से उन्हें भगाया गया, उन्हें परमिशन नहीं दी गई वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट करने की कि वो फूड माफियाओं के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, और 1.5 करोड़ हमारे देश की जो जनता है उनके लिए खड़े हुए हैं अकेले। तो अब वो अपने घर पहुंच चुके हैं और वहाँ पर वेट कर रहे हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर मिले उन्हें कि वो सही तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर पाएं। तो इस तरह की लोग जब हमारे आसपास होते हैं जो अपना ना सोच करके पूरे समाज का सोचते हैं, तो हमारा भी फर्ज बन जाता है कि हम उनके साथ खड़े हों। और फेसबुक पर हमें बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद जो भी श्रोता हमें लाइक दे रहे हैं उनका। इंदुबाला जी गुड मॉर्निंग कह रही हैं, गुड मॉर्निंग मैम जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस प्यारे से दिन की। और हमारे उन सभी श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारक हो जो किसी न किसी खास वजह से अपना ये खास दिवस मना रहे हैं। उनका जन्मदिन हो सकता है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या कोई भी और दिवस हो सकता है जिसको कि वो यादगार के रूप में अपने यादों में सजोए हुए हैं। और वो हमारे श्रोता जो थोड़े से नासाज हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी हम जल्दी से ठीक होने की शुभकामनाएं देते हैं ताकि वो ध्यान से हमारा जो कार्यक्रम है वो सुन पाएं। क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है ना तो कुछ भी करने को मन नहीं करता है ना, तब ऐसा मन करता है कि बस शांति से चुपचाप हम लेटे रहें और हमारे आसपास कोई भी नॉइज़ पॉल्यूशन ना हो, चाहे वो हमारा रेडियो ही क्यों ना बज रहा हो, लेकिन अगर सर में दर्द हो या तबीयत ख़राब हो तो वो भी हमें नॉइज़ पॉल्यूशन ही लगता है, चाहे फिर हमारे कितने ही खास कितने ही प्यारे जो उद्घोषक हैं वो क्यों ना बोल रहे हों रेडियो से। चलिए मौसम की बात करेंगे हम कार्यक्रम में आगे, फिलहाल मौसम से संबंधित एक गीत सुन लें।

उम्मीद तो रखा था मौसम का, लेकिन यहाँ पर तो मुझे मिल नहीं रहा। जी, आ गया है सामने, लीजिए सुनते हैं आक्रमण फिल्म का ये गीत।

जी हाँ, मौसम तो आ गया है खूबसूरत सा, और लेकिन हमें थोड़ा सा जागना है, ख्वाबो ख्यालों में बिल्कुल नहीं खोना है। श्रोताओं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में सुना आपने अभी आक्रमण फिल्म का ये बड़ा ही प्यारा खूबसूरत मनमोहक सा गीत। 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो फिर अब आपको बता दें हम मौसम का क्या हालचाल है। वैसे तो आप देख ही रहे हैं, है ना, बाहर धूप निकली हुई है और वो भी कड़कती हुई। गर्मी लग रही है ना थोड़ी थोड़ी। तो भैया, ये मौसम अब हो गया है ऐसा कि सुबह जब तक हम सूरज नहीं निकलता है तब तक थोड़ी थोड़ी ठंड है, और शाम ढलने के बाद भी ठंड होती है। मौसम में बदलाव हो रहा है, लेकिन जैसे ही सूरज देवता के दर्शन हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि गर्मियाँ फिर से वापस आ गई। और यही मौसम है जो कि ख़राब कर रहा है लोगों को। इस वक्त धर्मशाला और उसके आसपास में तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस। मौसम साफ है, धूप वाला बना हुआ है। हवा की गति दक्षिण पश्चिम से लगभग 3 से 5 मील प्रति घंटा की रफ्तार से है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है दोपहर या शाम के समय छिटपुट गरज के साथ आंधी या फिर हल्की बारिश की संभावना है। लगभग 35 से 40% संभावना हो सकती है।

इस मौसम के मद्देनज़र अपने आप का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने हमेशा ही कहा और आप सब लोग अपने आप से भी जान रहे हैं कि अब मौसम बदल रहा है धीरे धीरे। जैसे ही रामलीला का समय आता है ना, रामलीलाएं शुरू होती हैं, तो आप जब बाहर निकलते हैं देखने जाते हैं तो आपको पता लगता है कि ठंड बढ़ गई है। और अगर बच्चे भी जाएं देखने के लिए तो बच्चों को रोके नहीं, बल्कि उन्हें अच्छे से गर्म कपड़े पहना दें ताकि वो हर एक पल का एंजॉय कर सकें और अपनी संस्कृति के बारे में कुछ जान सकें। यही कुछ दिन होते हैं, यही कुछ समय ऐसे होते हैं जबकि हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी पुरातन संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में जान सकते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत पता लगता है। अदरवाइज़ तो हम लोग हमेशा ही मोबाइल्स में घुसे रहते हैं, और जब कुछ नया, कुछ अलग सी चीज़ देखने को मिलती है ना साल में एक आध बार, तो बच्चे वाकई में उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। कई बच्चे जाना चाहते हैं पर माता पिता उन्हें जाने नहीं देते, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि खुद भी उनके साथ चले जाइए और आप भी उन पलों के साक्षी बनिए, गवाह बनिए।

बीच में ये इस तरह से कुछ ही हुज्जत होती रहे ना, तो हमें क्षमा कीजिएगा, हमें खेद है, क्योंकि ये सिस्टम है और सिस्टम का कुछ भी पता नहीं चलता कि इसकी अपनी मर्जी, कभी ये मान जाता है और कभी ये रूठ जाता है। लेकिन हमारी कोशिश जारी रहती है कि हम बिल्कुल भी व्यवधान ना डालें और आपसे बातचीत करते ही रहें।

दोस्तों हम बात कर रहे थे अकेले चलने की। तो इतिहास गवाह है, कारवा हमेशा बाद में बनता है। शुरुआत हमेशा किसी अकेले इंसान के कदम बढ़ाने से होती है। जब कोई व्यक्ति समाज की परवाह किए बिना किसी अच्छे किसी बदलाव के लिए अकेले चलने का हौसला रखता है तो एक दिन जमाना भी उसके पीछे चलता है। और ये बातें शायद मैंने पहले भी आपसे कही हैं, अकेला चलना कमजोरी नहीं बल्कि उस अटूट आत्मविश्वास की निशानी है जो बड़े बड़े बदलावों की नींव रखता है। हाल फिलहाल में ही आप देख ही रहे हैं, हमारे अपने ही देश में एग्जाम्पल्स हैं कि कुछ लोग जो अकेले चले उनके साथ कितनी भीड़ जुट गई और क्या क्या करने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। ऐसी ऐसी चीजें जो कि शायद कभी हम सोच भी नहीं सकते थे और हाल फिलहाल में भी वो सब कुछ हो रहा है। अब आगे आने वाले समय में देखते हैं कि होता क्या है।

जी श्रोताओं, अकेले चलने की ना बात ही कुछ और होती है। अकेले चलना इतना आसान भी नहीं होता है ना। जो अकेले चलते हैं उनसे कभी पूछिएगा कि कितनी मुश्किलें आती हैं रास्ते में।

अक्सर हम सोचते हैं कि बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ी टीम या फिर पूरी दुनिया का साथ होना जरूरी है। क्या ये सच है? सच तो ये है कि समाज को बदलने वाली हर बड़ी क्रांति की शुरुआत किसी एक इंसान की सोच और उसके पहले अकेले कदम से ही हुई। और जैसा कि मैंने कहा, अकेले चलना आसान नहीं होता, इसमें रास्ते की मुश्किलें भी खुद ही झेलनी पड़ती हैं और साथ ही समाज के सवाल भी खुद ही सुनने पड़ते हैं। लेकिन जो भी इस अकेलेपन को अपनी ताकत बना लेता है ना, वो दशरथ मांझी की तरह अकेले ही पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बना देता है।

दोस्तों, इसी के साथ अब हम आपको बताएं कि 5 अक्टूबर का इतिहास क्या क्या है और आज कौन कौन से दिवस जो हैं खास हम मना रहे हैं। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है आज। जी हाँ, बिल्कुल हमारे ही देश में। और पोषण माह पता है आपको कब शुरू हुआ था? 9 सितंबर को, और 8 अक्टूबर को तक वो मनाया जाएगा। लेकिन पोषण एक ऐसा विषय नहीं है कि इसके बारे में कोई माह मनाया जाए या कोई खास दिवस हो। पोषण तो हमेशा ही हमारी जिंदगी के साथ, स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ ही विषय है। और हर रोज ही हमारे स्टेशन से, हमारे रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप इसके बारे में सुनते ही हैं। हमारे हर साथी, हर आरजे आपसे इस बारे में बात करते हैं। और आज विश्व शिक्षक दिवस भी है। जी हाँ, हमने तो शिक्षक दिवस मनाया था 5 सितंबर को, लेकिन साथ ही में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस भी आ जाता है। और इसके साथ ही विश्व अंतरिक्ष सप्ताह भी हम मना रहे हैं। यही सप्ताह है।

और एक बात आपको और भी बता दूं कि हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सप्ताह भी मना रहे हैं। तो हमारी कोशिश है आज की, शायद हम किसी अफसर से आपकी बात, आपको बातचीत सुनवा पाएं कि आखिरकार उनका इस विषय पर कहना क्या है। चलिए, इन सभी विषयों पर हम शॉर्ट में आपको जानकारी ज़रूर देंगे कार्यक्रम में आगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे कार्यक्रम में और अब आपको फिर से सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

जी हाँ, गीत भी गाइए और गुनगुनाइए भी हमारे साथ साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो दोस्तों, हमने आपको बताया राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस आज आधिकारिक तौर पर मनाया जाता है भारत सरकार द्वारा। 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन गैंग्स रिवर डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित किया था और इसी की याद में डॉल्फिन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 2022 से वन्य जीव बोर्ड द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई। और अब बात करते हैं आज विश्व शिक्षक दिवस की। हालांकि भारत का राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को होता है, लेकिन 5 अक्टूबर को भारतीय स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में विश्व शिक्षक दिवस के वैश्विक उत्सव में भी हिस्सा लिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों पर चर्चा की जाती है। और आपको पता है भारत की राजधानी नई दिल्ली में 3 से 5 अक्टूबर तक 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है। इसमें भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतिगत बदलावों पर देश विदेश के विशेषज्ञ चर्चा करते हैं, जो कि इस वक्त हो भी रही है। और अगर हम सांस्कृतिक और क्षेत्रीय स्तर पर बात करें तो 5 अक्टूबर को असम के महान संत, समाज सुधारक और विद्वान श्रीमंत शंकरदेव का जन्मोत्सव भी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।

0: श्रोताओं, अब समय हो गया है समाचारों का, और जो बातें रह गई हैं वो हम करेंगे आपसे 10 बजे के बाद।
1: नई इलेक्ट्रिक व 7 डीजल बसों को दूसरे डिपुओं में भेजने से परेशानी बढ़ी। एशियन खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली चंबा जिले की उड़न परी सीमा ने युवाओं से नशे से दूर रहने का किया आह्वान। और प्रदेश में अगले 3 दिन अधिकतर स्थानों में आंधी व गरज के साथ बारिश का जलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 6 अक्टूबर से हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति बिलासपुर स्थित एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होगी। इसके बाद उनका मनाली और अटल टनल जाने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और विशेष यातायात प्रबंध लागू किए गए हैं। राष्ट्रपति के बिलासपुर में एम्स दौरे को देखते हुए 6 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है। इसके तहत जिले में दोनों दिशाओं में आने जाने वाले वाहनों को घागस चौक से कंदरौर, बघेड़, ओहर, ऋषिकेश, भराड़ी, ओपन एयर जेल जबली मार्ग से वाहनों को भेजा जाएगा। उधर कुल्लू जिले में 6 अक्टूबर रात 8 बजे से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों को अटल टनल की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। 7 अक्टूबर को पलचान से अटल टनल तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इसी तरह 6 से 8 अक्टूबर तक रामबाग से हिडिंबा मंदिर व ओल्ड मनाली की ओर सभी प्रकार के भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता शिष्टाचार के साथ जनता के बीच अपनी बात रखें। वे कल ऊना जिला के पालकवाह में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हरोली की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी की विचारधारा सरकार के विकास कार्यों व हरोली में हुए बदलाव को जनता के बीच मजबूती से रखना है। मुकेश अग्निहोत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि विपक्ष के

0: किसी भी दुष्प्रचार या गलत बयानबाजी का जवाब शिष्टाचार व संयम से देना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरौली विधानसभा क्षेत्र में विकास को लगातार गति मिल रही है और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सड़क, शिक्षा व पेयजल योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालीन शिकायतों का समाधान किया जाएगा। डॉक्टर सिंह इस वर्ष 13 मई को आयोजित 16वीं पेंशन अदालत की सफलता की गाथाओं को उजागर करने वाले छोटे पोस्टर जारी करेंगे। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन मुद्दों का विमोचन भी किया जाएगा। सिरमौर जिला में हिमाचल पथ परिवहन निगम के नाहन डिपो को हाल ही में 25 नई इलेक्ट्रिक बसें मिली है। हमारे जिला संवाददाता ने बताया कि एचआरटीसी की इन नई इलेक्ट्रिक बसों में से 10 बसें प्रदेश के अन्य डिपो में भेज दी गई हैं, जिससे यहां विभिन्न रूटों पर इसका असर देखने को मिल रहा है।
1: सिरमौर जिला के नाहन डिपो को जुलाई और अगस्त महीने में 25 इलेक्ट्रिक बसें मिली थी, जिन्हें अलग अलग रूटों पर चलाया जा रहा था, मगर अब इन 25 बसों में से 10 इलेक्ट्रिक बसों को रोहडू, रामपुर और पठानकोट डिपो में भेजा गया है, जिसके बाद सिरमौर जिला में विभिन्न रूटों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक बसों के अलावा 7 डीजल बसें भी शिमला जिला के अलग अलग डिपो में भेजी गई है। नई इलेक्ट्रिक बसें मिलने के बाद नाहन को ई डिपो के रूप में विकसित किए जाने की उम्मीद जगी थी, मगर अब फिर बसों की उपलब्धता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: युवा मामले और खेल मंत्रालय के राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देश में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा पद यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें 1 लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। माय भारत का अर्थ है मेरा युवा भारत। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आयोजित इस पहल का उद्देश्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहित करना था। इसमें कई प्रतिभागियों ने नशा मुक्त युवा की शपथ ली और नशीले पदार्थों से दूर रहने तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: यार, 2 दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है
3: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
4: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
3: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। एशियन खेलों में कांस्य पदक हासिल करने वाली चंबा जिले की उड़न परी सीमा ने युवा पीढ़ी से नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहकर खेलों से जुड़ने का आह्वान किया है। कल देर शाम अपने पैतृक गांव रेटा पहुंचने पर उन्होंने एशियन खेलों में जीत का श्रेय अपने माता पिता को दिया। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। सीमा ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य देश के लिए और अधिक पदक जीतना रहेगा।
5: मेरिट मेडल के जीतने के बाद तो आप सबको पता ही होगा कि पूरे भारतवासियों ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है। मैं सबका बहुत ज्यादा तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, मेरे पूरे भारतवासियों का, मेरे हिमाचल वासियों का। मैं यही चाहूंगी कि जितने भी यंग एज में है वो सब कोई भी नशे की तरफ ना, आप कोई भी ऐसा काम ना करो। मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है इस मेडल के। इस टाइम पे 2015 में मैं घर से निकली थी, उस टाइम पे कोई भी अपनी बेटियों को इतने दूर नहीं भेजता था, तो मेरी माँ ने मुझे रोका नहीं, तो मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ और शायद इनको बहुत प्राउड फील भी है।
0: हिम ई पंचायत प्रोसीडिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की बैठकों की कार्यवाही को ऑनलाइन किया जाएगा और इससे बैठकों की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
6: इन ई पंचायत पोर्टल पर पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक के अधिकारी जुड़ सकेंगे। पंचायत, बीडीसी और जिला परिषद की बैठकों का एजेंडा, बैठक का विवरण एवं प्रोसीडिंग ऑनलाइन अपडेट की जा सकेगी। पोर्टल में प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्यों सहित ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। बैठक के लिए आवश्यक कोरम की स्थिति भी सिस्टम के माध्यम से निर्धारित की जा सकेगी। बैठक की कार्रवाई तैयार होने के बाद ई हस्ताक्षर की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे भौतिक रिकॉर्ड पर निर्भरता कम होगी और बैठकों में संबंधित डेटा डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा। इम ई पंचायत को पंचायती राज विभाग की ओर से आधिकारिक वेबसाइट के साथ भी जोड़ा जाएगा, जिससे भविष्य में आम नागरिक कहीं से भी किसी पंचायत की बैठक की कार्रवाई देख सकेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज भी मौसम साफ बना हुआ है और मैदानी इलाकों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले तीन दिन मौसम में बदलाव आएगा। विभाग ने 6 से 8 अक्टूबर तक राज्य के अधिकतर स्थानों में आंधी व गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने का भी अनुमान है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, चुनाव जनगणना की ड्यूटी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, सरकार करेगी विचार। दिव्य हिमाचल के शब्द है, हिमाचल को मिलेंगे 237 करोड़। सुक्खू सरकार ने कैंपा के तहत केंद्र को भेजी थी 288 करोड़ की कार्य योजना। हिमाचल दस्तक लिखता है, हिमाचल में लॉटरी के लिए अलग से बनेगा निदेशालय, ट्रेजरी और अकाउंट से अलग होगा लॉटरी विभाग। अमर उजाला ने खबर दी है, टांडा में प्रशिक्षु डॉक्टर से छेड़छाड़ का आरोपी, लैब तकनीशियन निलंबित। मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आज सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, शिमला समेत 6 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट। जबकि दैनिक जागरण का शीर्षक है, केलंग कल्पा में 20 वर्ष बाद अक्टूबर में सबसे गर्म दिन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय हिमाचल प्रवास कल से, बिलासपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल, मनाली और अटल टनल जाने का भी कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, कांग्रेस कार्यकर्ता शिष्टाचार व संयम के साथ जनता के बीच रखें अपनी बात। सिरमौर जिला के नाहन डिपो से HRTC की 10 नई इलेक्ट्रिक व 7 डीजल बसों को दूसरे डिपो में भेजने से परेशानी बढ़ी। एशियन खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली चंबा जिले की उड़न परी सीमा ने युवाओं से नशे से दूर रहने का किया आह्वान। और प्रदेश में अगले तीन दिन अधिकतर स्थानों में आंधी व गरज के साथ बारिश का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।

91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ। और श्रोताओं, घड़ियाँ मिलाइए, 10:02 हो चुके हैं और हम आपसे बात कर रहे थे पोषण माह के बारे में। वैसे पोषण पखवाड़ा भी चलता है, पोषण एक खास दिवस भी होता है पोषण दिवस, उसके बाद पोषण पखवाड़ा और साथ में पोषण माह जो कि 8 अक्टूबर तक रहेगा, 8 अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन हमने आपसे कहा कि पोषण की ज़रूरत हमें हर रोज़ ही होती है। चलिए एक गीत सुन लेते हैं और फिर करेंगे हम साथ ही साथ पोषण के बारे में बात।

जी श्रोताओं, सुबह सुबह खा लिया आपने ताज़े ताज़े समोसे? मुझे पता है सुबह सुबह कोई समोसे नहीं खाता है, जब तक कि बड़ी मजबूरी ना हो या आप कहीं फंसे ना हो, कहीं किसी बस स्टैंड पे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे, तभी ये सब चीज़ें होती हैं। अदरवाइज़ आप लोग जो हैं वो अच्छा पौष्टिक खाना खाना ही पसंद करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं समोसे इत्यादि, ये पौष्टिक नहीं होते हैं। कई लोग अच्छी तरह से भी बनाते हैं, क्योंकि रोज़गार चलता है लोगों का, तो इसमें हम अपोज़ बिल्कुल नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग रोज़ रोज़ ही ये चीज़ें खाना शुरू कर देंगे तो क्या ये पोषण की श्रेणी में आती हैं? ज़रा सोच के देखिएगा।

0: तो आखिरकार ये जो पोषण की बात हम कर रहे हैं इतने दिनों से, पोषण होता क्या है? जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उससे ऊर्जा तथा आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये शरीर के विकास, रखरखाव और सभी जैविक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत जरूरी होती है। रोज रोज आपको इस बारे में बताया जा रहा है। एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विधि होती है, जो कि स्वपोषी पोषण होता है, और इस विधि में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन तैयार करते हैं। और एक होता है विषमपोषी पोषण, यानी कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस विधि में जीव अपने भोजन या ऊर्जा के लिए प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, जैसे कि मनुष्य, पशु या फिर अधिकांश कवक। अब भोजन में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व क्या क्या होते हैं? ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट्स। शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होते हैं। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो ये फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वीक भी चला हुआ है, इस पर हमने आपको कहा था कि हम एक अफसर से बात करवाएंगे आपकी, तो हमारे साथ इस समय डीएफओ सर हैं। आइए बात करते हैं। हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
1: मैं अमित शर्मा डीएफओ धर्मशाला बोल रहा हूँ।
0: जी सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद, आपको मेरा नमस्कार और आपके श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: जी सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो वाइल्ड लाइफ वीक है, ये आखिरकार है क्या? क्योंकि अभी तक हमें इस बारे में पता नहीं, और हमें भी आज ही अचानक से पता लगा, तो मुझे लगा कि बात की जानी चाहिए। तो जी बताएं।
1: देखिए कि हम एक इकोसिस्टम में रहते हैं, जिसमें एक मानव भी उस इकोसिस्टम का हिस्सा है।
0: जी,
1: तो हमारे साथ बहुत तरह के वन्य प्राणी, कीट पतंगे और बड़े जानवर, पशु पक्षी और पेड़ पौधे साथ रहते हैं।
0: जी।
1: तो इनके ऊपर कंजर्वेशन का एक दायित्व है हमारे पास, जो निभाना है हमने।
0: जी।
1: तो इसलिए हम प्रति वर्ष एक वीक का एक वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं। इसमें हम वाइल्ड लाइफ के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करते हैं स्कूलों के माध्यम से, आम जन के माध्यम से।
0: जी।
1: और उसकी एक थीम होती है।
0: हाँ जी।
1: इस बार की जो थीम है वो है प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट टू कंजर्व हेल्थ एंड लाइवलीहुड।
0: ओके।
1: तो इसमें हमने सिर्फ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात नहीं करी है, बल्कि उनके हैबिटेट की, जो कि वन है, नदियां हैं, ग्रासलैंड्स हैं, उनके प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। और कंजर्व हेल्थ, हेल्थ नॉट ओनली ऑफ द ह्यूमन बीइंग बट ऑफ द वाइल्ड लाइफ, और जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी हेल्थ की भी बात कर रहे हैं और लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं। लाइवलीहुड ऑफ द मैनकाइंड, जो लोग इन पे आश्रित हैं, जैसे इको टूरिज्म के माध्यम से या होटल टूरिज्म के माध्यम से लोग हिमाचल में यहाँ की बायोडाइवर्सिटी देखने आते हैं।
0: जी।
1: और यहाँ पे आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं, 5 कंजर्वेशन रिजर्व हैं और 28 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं।
0: जी।
1: उनमें हम अपने प्रदेश की जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ का अर्थ सिर्फ जीव जंतुओं से नहीं होता, बल्कि पेड़ पौधे भी वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी में आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हम उनको शोकेस करते हैं।
0: जी।
1: तो जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, हिमाचल इज ए टूरिस्ट स्टेट, तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो वो इन्हीं को देखने आते हैं, जंगलों को और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को।
0: जी।
1: तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हम वाइल्ड लाइफ वीक के माध्यम से देना चाहते हैं कि लोग यहाँ की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें और यहाँ के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करें, ताकि जो एक यहाँ का हिमालयन इकोसिस्टम है वो कंजर्व रह सके, उसके प्रति लोगों की एक संवेदनशील भावना हो, यही हमारा ध्येय है इस वाइल्ड लाइफ वीक का।
0: जी सर, वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक अगर क्वेश्चन करूं कि देखिए, आपने कहा कि कुछ तो हमारे जो सेंचुरीज हैं वो हैं, लेकिन इधर एक गोपालपुर में बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कई बार बताते हैं बाहर आकर के कि कंडीशन ज़्यादा अच्छी है नहीं पशुओं की भी जो वहाँ पर रखे गए हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर?
1: हाँ बिल्कुल, एक नेचुरल हैबिटेट होते हैं और एक जू जो है वो हमारे छोटे छोटे एरियाज हैं जहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ को शोकेस करते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो जू में जो एनिमल रखे गए हैं वो या तो बाहर से किसी दूसरी स्टेट से हम प्रोक्योर करते हैं
0: जी।
1: और लोगों को वहां पे हम उनके प्रति अवेयर करते हैं कि कैसे कैसे जानवर हमारे यहाँ मिलते हैं और उनका हैबिटेट कैसा होता है
0: जी।
1: जू की मैनेजमेंट बेसिकली बड़ा डिफिकल्ट टास्क है और कई बार जानवरों की हेल्थ, क्योंकि कैप्टिविटी में रहते हैं उनकी हेल्थ थोड़ी डिटोरेट होती है, जो नेचुरल हैबिटेट में जंगल जंगलों में जो पशु पक्षी मिलते हैं उनकी हेल्थ ज्यादा बढ़िया होती है वो, क्योंकि वो फ्रीडम में रहते हैं।
0: हाँ
1: जी। तो यहाँ कैप्टिविटी में जू में रखना है तो ओवर ए पीरियड टाइम उनकी हेल्थ डिटोरेट होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु हम कोशिश करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, समय पर उनको भोजन मिले, परंतु कैप्टिविटी उनका एक इशू है जिसकी वजह से हो सकता है उनकी हेल्थ थोड़ी डिटोरेट हो गई हो।
0: हेल्थ ही एक इशू नहीं सर, वो थोड़ा सा मतलब साफ सफाई की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर क्या उस पर नजर रखी जाती है?
1: बिल्कुल, वैसे तो सारे मैकेनिज्म इन प्लेस होते हैं और ये जू अथॉरिटी होती है उसके तहत मैनेज होते हैं, ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश वन विभाग इंडिपेंडेंटली इनको देखता है, एक सेंट्रल जू अथॉरिटी है, स्टेट में जू अथॉरिटी है
0: जी।
1: तो इनके ऊपर काफी मॉनिटरिंग होती रहती है, हो सकता है कुछ माइनर इशू हो वहां पे क्लीनिनेस के, वो हमारे संज्ञान में आपने लाया तो मैं कंसर्न अथॉरिटी को इनको कन्वे कर दूंगा।
0: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक एक चीज और भी हमारे संज्ञान में है कि बनखंडी में भी बहुत बड़ा जो एक तरह से जू ही कह लो वो बन रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो इससे थोड़ा सा अलग है क्योंकि काफी ज्यादा एरिया है वहां पर, तो वहां पर जो भी लेकर आए जाएंगे जो जानवर वो बाहर से लाए जाएंगे या फिर यहीं के जो हैं उन्हीं के लिए वो बनाया जा रहा है?
1: एक्चुअली वो जो बनखंडी में जू बन रहा है
0: जी,
1: वो स्टेट लेवल का या नेशनल बहुत बड़ा जू है वो।
0: हाँ जी।
1: तो उसमें सफारी भी होंगी जिसमें थोड़ा सा नेचुरल हैबिटेट दिया जाएगा बाहर के एनिमल्स को, मोस्टली एनिमल बाहर के ही प्रोक्योर करने हैं, तो स्टेट में भी मिलते हैं
0: जी,
1: सांबर यहाँ का लोकल एनिमल है, चीतल भी मिल जाएंगे, परंतु मोस्टली जो एनिमल्स हैं बाहर से प्रोक्योर किए जाएंगे क्योंकि उनको एक उसके साथ रेवेन्यू का इशू जुड़ा होता है और जू को सस्टेनेबल बनाने के लिए उसके अपने रिसोर्सेज होने चाहिए
0: जी,
1: तो इसलिए बाहर के एनिमल्स को भी शोकेस किया जाएगा, उसके मोस्टली बाहर के एनिमल्स को शोकेस किया जाएगा।
0: सर एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी आती है कि हम लोग कहते हैं कि हम वाइल्ड लाइफ के साथ हम अपना बना के रखें, जैसे अभी कुछ वर्कशॉप्स भी हो रही हैं बेस वॉरियर्स के द्वारा भी हुई पीछे, जैसे कि हमें वाइल्ड लाइफ के साथ अपना कैसे तालमेल बना के रखना है और वो क्यों हमारे हैबिटेट्स में आ जाते हैं, तो इसमें एक चीज़ निकल करके ये आई थी कि जैसे आपने भी कहा कि लोग आते हैं उन्हें देखते हैं उन्हें समझते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं कुछ हुड़दंगी टाइप जो कि जैसे हम लोग ट्रैकिंग पे चले जाते हैं तो वहाँ पर ऊपरले इलाकों में जंगलों में जानवर रहते हैं, जब हम उनके इलाकों में जाकर के घुसपैठ कर रहे हैं तो वो भी तो हमारे इलाकों में आ सकते हैं ना, तो फिर हम क्यों?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, कि आपने देखा है कि पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है इंडिया में
0: जी,
1: तो घर बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, तो फॉरेस्ट जो लैंडस्केप है उसकी डिग्रेडेशन हुई है और हैबिटेट लॉस हुआ है जो वाइल्ड एनिमल होते हैं। तो जब भी हम टूरिज्म के माध्यम से या डेवलपमेंट के माध्यम से उनके हैबिटेट में घुसते हैं तो मानव और जीव जंतुओं का संघर्ष बढ़ जाता है, इसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट कहते हैं। तो जब भी वो मानव के क्षेत्र में आ रहे हैं तो हमें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है और किसी प्रकार के कंफ्लिक्ट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो उस कंफ्लिक्ट को मिटिगेट करने के लिए सक्षम हैं। तो मेरा लोगों से अनुरोध है कि जानवर यदि आपके क्षेत्रों में आते हैं तो कभी वो उनका हैबिटेट रहा होगा इसलिए वो वहां पे वेंचर करते हैं, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार के संघर्ष को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।
0: अमित शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेडियो गुंजन धर्मशाला को समय देने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में भी जब हमें आपकी जरूरत होगी तो आप हमसे जरूर जुड़ेंगे।
1: धन्यवाद
0: जी, धन्यवाद,
1: थैंक यू।

श्रोताओं, ये साल हर साल इस तरह इस बार भी 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2026 तक पूरे देश में मनाया जा रहा है, जी हाँ, वाइल्ड लाइफ वीक। अब क्योंकि महात्मा गांधी वन्यजीव संरक्षण और अहिंसा के बड़े समर्थक थे, इसलिए उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर से ही इसकी शुरुआत की जाती है। और थीम तो सर ने आपको बता ही दिया है, कनेक्टिंग हैबिटेट्स थ्राइविंग वाइल्ड लाइफ, यानी कि आवासों को जोड़ना और वन्य जीवों का फलना फूलना। तो ये थीम रखी गई है और इसका मुख्य फोकस होता है जंगलों और वन्य जीवों, गलियारों, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को सुरक्षित करना, ताकि जानवर बिना किसी बाधा के आ जा सके। और फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़े हैं रियाज भाटी जी। रियाज भाटी फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान ये कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सुपर शो, धन्यवाद बहुत बहुत। और रियाज भाटी जी भी हमारे नियमित श्रोता हैं, हर लाइव पर ये जरूर अपना जो कमेंट है, अपने विचार हैं वो रखते हैं। तो इस बारे में हम बातें आपसे और भी करेंगे, अभी फिलहाल चलिए आपको लिए चलते हैं एक और गीत की ओर।

मुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पटर सीरा कूड़े मुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पटर सीरा कूड़े।

तो सीता और गीता फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। पोषण के बारे में हम बात कर रहे थे कार्यक्रम में, और उसी बीच हमें फ़ोन कॉल आ गया था जो कि लेना बहुत ज़रूरी था। तो आपको हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए, और वसा जो फैट होता है वो होता है ऊर्जा और गर्मी प्रदान करने के लिए शरीर को। कई बार हम कहते हैं ना कि फैट ज़्यादा हो गया है शरीर में, इसे कम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर के लिए फैट ज़रूरी भी होता है, और विटामिन और खनिज जो होते हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता और आंतरिक कार्यों के लिए होते हैं। और कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो पोषण है वो हमें बड़ी मतलब ऐसी चीज़ें खा करके ही मिलेगी जो कि हम सोचते हैं इसको बड़े तरीके से बनाया जाए क्या, कि ऐसे हम इस तरह से करें। कभी कभी हमें रूखी सूखी रोटी खा करके भी पोषण मिल जाता है। जी हाँ,

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: जी सर, मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि हमारे साथ इस वक्त अमित शर्मा, डॉक्टर अमित शर्मा
1: अभिनव
0: जी,
1: अभिनव
0: डॉक्टर अभिनव शर्मा जी हाँ, मौजूद हैं और फ़ोन कॉल पर हमने इन्हें लिया है। और हम जानेंगे सर से कि ये जो पोषण माह चला हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी सर हमें देंगे।
1: हाँ जी, नमस्कार सभी को।
0: जी सर।
1: मैं आप जो भी सुनने वाले श्रोतागण हैं उनको इस पोषण मास के
0: बहुत
1: बारे में
0: शुक्रिया।
1: कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूँगा। ये पोषण माह जो है ये हर हर साल मनाया जाता है
0: जी
1: और लगभग ये अब 9वीं बार मनाया जा रहा है,
0: जी
1: और ये सितंबर माह से शुरू हुआ था।
0: हाँ जी, सितंबर से शुरू हुआ।
1: हाँ, 9 सितंबर 2026 से इसको शुरू किया गया है और इसकी लॉन्च जो किया गया था वो प्रधानमंत्री द्वारा ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से हुआ था ये।
0: हाँ जी सर।
1: हाँ जी, तो इसमें बेसिकली जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है जिसके अंदर आंगनवाड़ी द्वारा आती है उसके थ्रू इसको जमीनी जमीनी लेवल पर उतारा जाता है, क्योंकि मेनली जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं
0: जी
1: उनका जो पोषण का जो और उनके जो पढ़ाई लिखाई का जो हमारे यहाँ पर एक रखा गया है कि जहाँ पे उनको भेजा जाता है
0: हाँ
1: तो वो
0: जी
1: आंगनवाड़ियों में भेजा जाता है।
0: जी
1: ठीक है, तो आंगनवाड़ियों में हमें ये देखा जाता है कि जो बच्चे हैं जो कुछ हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट है वहां पे कॉन्टिन्यूसली वहां पे एक हेल्थ चेकअप करती। जब हेल्थ चेकअप हुआ तो उसमें ये पाया गया कि बच्चों के अंदर कुछ कमजोरियां पाई जा रही हैं
0: जी
1: जिसको हम सैम या मैम बोलते हैं,
0: जी
1: सीवियरी माल न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं, कुछ मॉडरेटली होते हैं।
0: हाँ जी
1: मान लो जैसे कोई बच्चा जन्म लिया और उसको ढंग से यदि पोषण नहीं मिला तो वो कमजोर हो जाता है, और यदि वो कमजोर होगा तो उसका दिमागी रूप से भी वो अक्षम हो जाता है।
0: हाँ जी
1: तो यदि हम उसको ढंग से समय पर यदि उसको न्यूट्रिशन दें तो उसका जो दिमाग है उसका जो सेहत है उसको हम संभाल सकते हैं।
0: जी
1: यदि वो मॉडरेटली कमजोर बच्चा है तो यदि यदि उसको वहां पे इग्नोर हो जाए वो या किसी कारण से माँ या किसी कारण से फाइनेंशियली उसको न्यूट्रिशन ना दे पाए
0: जी
1: तो वो बच्चा सीवियर सीवियरली माल न्यूट्रिशन हो जाता है,
0: तो सर, ये क्या
1: जिसके कारण हो
0: सिर्फ
1: सकता। हाँ जी, हाँ
0: ये सिर्फ
1: जी,
0: बच्चों के लिए ज़्यादा फोकस्ड है या फिर जो गर्भवती माँ होती है उसके लिए भी होता है? और
1: हाँ
0: हाँ जी
1: हाँ जी, एक्चुअली में क्या है ये इसको जो एक थीम माना गया इसका जो इस बार पोषण माह मनाया जा रहा है
0: जी
1: इसका जो थीम है वो है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी,
0: अच्छा
1: लेकिन उसके अंडर फिर उसके अंदर हमने 5 थीम और लिए हैं। जैसे पहला मैंने आपको बताया कि डाइटरी डाइवर्सिटी,
0: हाँ जी
1: मतलब कि हम ऐसी ऐसा खाना पीना देंगे उनको जिसमें वो लोकली उनको अवेलेबल हो और उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो,
0: जी
1: क्योंकि प्रोटीन हमारे दिमाग को बढ़ाने के लिए खासकर 2 साल के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है।

0: है, उसमें क्या है कि हम फ्रेश होल कुकड मील देंगे बच्चों को। तो उसमें बच्चों को जो भी लोकल खाना होगा हमारा, जो लोकल मिलेट्स होंगे या पल्सेस होंगी, जो भी दालें होंगी,
1: जी
0: उनका खाना बनाकर उनको एज पर द मौसम, जैसे जो उस मौसम में जो सब्जी है अवेलेबल है उस हिसाब से उसको दिया जाएगा,
1: जी
0: ताकि उसको इनरिच कर दिया जाएगा कि ताकि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। क्योंकि बेसिकली जो बच्चे होते हैं छोटे 2 साल के, उनको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत पड़ती है
1: हाँ जी हाँ
0: दिमाग के रूप में। हाँ जी, ये चीज रहती है। और इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हम उनको वीकली ऐसा एक मेनू बनाएं, ताकि उसमें भी जो दालें हैं और जो पल्सेस हैं उनका एक कॉम्बिनेशन करके उसको हर हफ्ते बदल बदल के, हर हर दिन बदल बदल के उसको पका के दिया जाए।
1: हाँ जी। तो सर ये जो है, ये माह जो चला हुआ है 9 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक, ये हाईलाइट करने के लिए तो इसको हमने एक माह के रूप में ले लिया, तो क्या
0: हाँ जी
1: ये कंटिन्यू रहेगा उसके बाद भी, जब इन
0: हाँ
1: सब
0: जी हाँ जी
1: चीज़ों के बारे में बात नहीं होगी तब?
0: नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी। आप इसको इसमें मतलब कि इसको अपनी डेली वर्किंग में ऐड कर लिया जाएगा ना।
1: जी
0: और इसके लिए अब एक SNP करके एक वो बनाई जा रही है, कमेटी टाइप में बना दी है, AMC आंगनवाड़ी मैनेजमेंट कमेटी,
1: जी
0: उसको जो चेयर करेंगी वो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर चेयर करेंगी,
1: जी
0: और उसके अंडर वो हर महीने इनसे जो है वो एक रिपोर्ट लेंगे कि आप इस पर क्या कर रहे हैं।
1: जी अच्छा
0: तो ऐसे इस पे रहेगा। और इसमें जो ये मेनू होगा, जो भी बच्चों का मेनू होगा, जो वो हर हर आंगनबाड़ी के बाहर उसको डिस्प्ले किया जाएगा,
1: ओके
0: ताकि उसको हर किसी को पता लगे, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रहे कि इनको हम क्या दे रहे हैं और किस तरह से दे रहे हैं।
1: तो क्या माता
0: इसका
1: पिता वहां
0: प्योरली
1: पर आ सॉरी
0: हाँ
1: सर
0: जी
1: माता पिता वहां पर आकर के ये इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं कि उनके किचन में क्या बन रहा है, किस तरह से बन रहा है?
0: बिल्कुल मैडम, इसका जो थीम है बेसिकली वही तो है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेवारी।
1: जी ठीक है
0: तो ये जिम्मेवारी हमारी, हमें ही लेनी
1: क्योंकि
0: पड़ेगी
1: हम
0: ना,
1: लोग
0: सारी
1: कुछ सोचते
0: कम्युनिटी
1: नहीं
0: को।
1: ना, हम सोचते हैं बच्चों को भेज दिया, चलो ठीक है अभी 2-3 घंटे के लिए हमारा थोड़ा सा अभी शांति रहेगी घर में, अब वो दिमाग
0: हाँ
1: नहीं
0: जी
1: खाएंगे, और जब छुट्टी होने का वक्त होता है तो हम साथ में उनको लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसके
0: नहीं,
1: अलावा हम लोग ये नहीं देखते कि वहाँ पर उन्हें क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कितनी स्वच्छता बरती जा रही है ना, तो
0: हाँ
1: वो सब कुछ
0: जी
1: भी हम आज आपके माध्यम से जान रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है।
0: हाँ जी।
1: जी
0: तो
1: सर
0: हाँ उसमें एक उसमें यही है मेन, जो ये कमेटी रखी जाएगी इसमें ये जो सुपरवाइजर है ये इसमें कुछ कम्युनिटी के लोगों को भी लिया जाएगा,
1: हाँ जी
0: ताकि वो आके देखें समझें और किस तरह से इसको हम और तरीके अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो आइडिया भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमने बोल दिया वही करना है,
1: हाँ
0: जो
1: जी
0: उनको लगता है कि ये इसको ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, तो वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसको करके।
1: ठीक है जी।
0: हाँ जी
1: डॉक्टर अभिनय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है रेडियो गुंजन धर्मशाला से बातचीत करने के लिए, और हमारे श्रोताओं तक तो ये बहुत ही खास ही जानकारी, इम्पोर्टेंट जानकारी पहुंचाने के लिए
0: थैंक यू
1: और
0: थैंक
1: समय
0: यू
1: देने के लिए धन्यवाद।
0: थैंक यू।

तो श्रोताओं, आपने दो दो महत्वपूर्ण जानकारियां आज हासिल की रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से।

और हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे अपने आज 5 अक्टूबर के इतिहास पर, तो फातिमा बीबी का इतिहास भी जानना जरूरी है। 1989 में इसी दिन मीरा साहिब फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, जो कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में महिलाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा मील का पत्थर था। भारतीय इतिहास की महान और पराक्रमी वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था और भारतीय पत्रकारिता के स्तंभ और इंडियन एक्सप्रेस समूह के संस्थापक रामनाथ गोयंका का निधन हुआ था 5 अक्टूबर 1991 को, जिन्हें आज भी प्रेस की स्वतंत्रता के रक्षक के तौर पर याद किया जाता है।

और हम आपको बता रहे थे कि ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ वीक चल रहा है, कंजर्वेशन वीक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ साथ सभी राज्यों के वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स इसके तहत कई जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जैसे कि स्कूलों में प्रतियोगिताएं हो रही हैं, नेशनल पार्क्स और जूज में विशेष गाइडेड टूर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, और जंगलों और ट्रैकिंग रूट्स पर प्लास्टिक कचरा हटाने के लिए मास क्लीनअप ड्राइव भी चलाई जा रही है। वैसे श्रोताओं, ये कूड़े कचरे की बात ना हम हमेशा ही हर कार्यक्रम में, हर दूसरे तीसरे कार्यक्रम में करते ही रहते हैं। ऐसे क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि यहाँ से आप लोगों को बोला जाता है कि भैया आप ये जो क्लीन अप ड्राइव है इसके बारे में थोड़ा सा ख्याल रखें। अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने जो आप चिप्स इत्यादि खाते हैं ना, उसके रैपर्स ही अपने पॉकेट में रख लिया करें, जहाँ पर आपको दिखे डस्टबिन वहाँ फेंक दिया करें। वैसे तो अभी धर्मशाला में डस्टबिन फ्री कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि कहीं आपको डस्टबिन नज़र नहीं आएंगे, आप लोगों को वो अपने झोले में रख करके अपने घर ही लेके जाना है, क्योंकि डोर टू डोर कलेक्शन होती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि जो बाहर से लोग आते हैं टूरिस्ट, उनके लिए कहाँ डस्टबिन पॉइंट्स आपने रखे हुए हैं, वो जो बात है उसके ऊपर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो फिर कहाँ लेके जाएंगे, वो कितने दिनों तक अपने पास रखेंगे और कब जा कर के अपने घर में जाके डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो प्रशासन थोड़ा सा इस बारे में भी ध्यान दे। हम तो बहुत दिनों से कह ही रहे हैं, हम जब मिलते हैं आमने सामने तब भी हम इस बारे में बात करते हैं, लेकिन चलिए रेडियो से भी कर लेते हैं।

और जैसा कि आज हम विश्व शिक्षक दिवस मना रहे हैं, तो शिक्षक से संबंधित गीत अगर हम आपको ना सुनवाएं तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी।

जी हाँ, जो टीचर्स होते हैं वो ही हमारी प्रेरणा होते हैं और उन्हें शत शत प्रणाम हम हमेशा ही करते हैं और करना भी चाहिए। 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

और अब आपको बताएं कि 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 दिसंबर 1999 को इसकी घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य होता है अंतरिक्ष विज्ञान में मानव जीवन को बेहतर बनाना और प्रौद्योगिकी के योगदान का जश्न मनाना। ऐतिहासिक महत्व है, 4 अक्टूबर 1957 को दुनिया का पहला मानव निर्मित सैटेलाइट स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण हुआ था और 10 अक्टूबर 1967 को अंतरिक्ष संधि लागू हुई थी। और इस वर्ष की थीम है रॉकेट क्रांति। अब आप सोचेंगे कि भैया अंतरिक्ष दिवस की बात तो पहले भी हो चुकी है, लेकिन वो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस था। भारत में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ये दिन चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सफलता की याद में मनाया जाता है। और एक और दिवस होता है अंतरिक्ष वैज्ञानिक दिवस, अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस, जो कि पूरी दुनिया में हर साल 20 जुलाई को अंतरिक्ष वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है, जो मनुष्य की पहली बार चंद्रमा पर कदम रखना एपोलो 11 मिशन की याद दिलाता है। तो ये सारे दिवस जो हैं वो अलग अलग हैं, और ये जो हम इस वक्त मना रहे हैं ये तो सप्ताह है, अंतरिक्ष सप्ताह, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे कि ये सभी कंफ्यूज है ना अभी। कौन? अरे सुनिए ना गीत, कहाँ ढूंढ रहे हैं ये सभी मिल करके। सुने से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चंदा को।

0: मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ।
1: नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो फाइल लेने आया था।
0: फाइल लेने? यहाँ
1: यहाँ तुम्हें बच्चों का गाना सुनने।

कैसा लगा गीत आप सभी को? कभी आपने भी देखा है ऊपर आसमान की तरफ रात के समय कि कभी चांद होता है कभी चांद नहीं होता है, और जब चांद नहीं होता है तो सच में ऐसा लगता है ना कि चांद को ढूंढने के लिए सभी तारे निकल गए हैं। जीने की राह फिल्म का ये गीत था, मोहम्मद रफ़ी, उषा मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। इसमें बाल कलाकार ज़्यादा थे जो कि आपने स्पष्ट रूप से सुना होगा। और समय के साथ साथ हम आगे को बढ़ते चले जा रहे हैं श्रोताओं। समय अब हमारे पास, वैसे ये तो नहीं कहूंगी बहुत कम रह गया है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं बचा। और ऐसे ही बस ये समय आगे को खिसकता चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। कहते हैं ना कि रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता है ये समय।

0: तो देखिए पोषण माह के बारे में भी आपने जानकारी सारी दे ली है, और इस वक्त जो हमारे 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाया जा रहा है वन्य जीव संरक्षण सप्ताह, उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दी है। लेकिन उसके बावजूद भी हम भी इस समय से नहीं बच सकते हैं, कोई बचा है आज तक? तो बस कोशिश यही होनी चाहिए हमारी कि समय का सदुपयोग हम कर लें अपने जीवन में जितना भी हो सके, क्योंकि बाद में हमें फिर ये कहने का मौका ना मिले कि हमारे पास समय था लेकिन हमने उसका अच्छे से यूज़ नहीं किया। उसके बावजूद भी ये जो जीवन है ये चलने का नाम ही है, और बस सुबह शाम हमें चलते ही रहना है जब तक ये जीवन है। और इस चलने में हम अपने समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमारे ऊपर है। मुझे लगता है कि अब मुझे भी समय का सही सदुपयोग कर लेना चाहिए।
1: चलते रहो सुबह शाम, जीवन चलने का नाम।
0: पर आप लोगों से ले लेनी चाहिए विदा। आज तकनीकी सहयोग में मेरे साथ थी शशि। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे संदीप परमार।

तो श्रोताओं, हमें एक कुट्टी नहीं करनी है किसी भी बात से, बस चलते रहना है यूं ही जब तक हमारा जीवन है। हम हर पल को फ्रूटफुल बनाते चले जाएं। इसी के साथ ज्योति को दे दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: अरे भाई साहब समोसा मिलेगा?
1: सेटअप कर जाओ।
2: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो?
3: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार।
2: पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
3: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
2: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
4: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहेंगे
1: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ,
2: ले लो भैया पानी।
1: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
3: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
5: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
4: जल है तो कल है।

0: ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
0: मोहित मेरा इस्तीफा।
7: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार? सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग।
6: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
8: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।
9: बोला था ना तुझे, ये क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तो सिलेक्शन के लिए चला गया।
10: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
11: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
9: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता,
11: पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।
12: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
9: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
12: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
13: हेलो मम्मी, वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
11: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया। अरे एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
13: सॉरी बेबी।
11: क्या सॉरी यार, कमाल है। एक काम करो, ये लो मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए। 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तंगी दोनों के लिए चल रही है ना। अगर ना तो

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, जिससे आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

0: अरे भाई साहब समोसा मिलेगा, शट अप कर जाओ।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
2: अरे भूल गए भूल गए भूल गए, अरे भूल गए भूल गए भूल गए।
0: चुप यार।
1: पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
3: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे
1: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे अरे भाई पीने का पानी और लिया
2: ले लो भैया पानी।
1: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
3: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
5: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
4: जल है तो कल है।

0: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
7: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
8: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
9: मोहित, मेरा इस्तीफा।
10: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
9: सॉरी यार,
10: काम कीजिए आप लोग।
8: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
11: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।
12: बोला था ना तुझे, ये क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तू सिलेक्शन के लिए चला गया।
13: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
14: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
15: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता,
16: पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।
17: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
18: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
17: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
19: हेलो मम्मी, वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
16: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया, एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
19: सॉरी बेबी।
16: क्या सॉरी यार, कमाल है।
20: एक काम करो, ये लो, मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए।
16: 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तभी दोनों के लिए चल रही है ना।
20: अगर ना तो

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है और मैं ऑर्गन इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस बार भी एक अंगदान से जुड़ी कहानी आपको सुनाने वाले हैं। पर्पस सिर्फ यही है कि आपको अवेयर किया जा सके, आपको इससे जुड़ी हुई जानकारी दी जा सके और ऐसे लोग जो लोग सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं उनको मदद की जा सके, उनका डर मिटाया जा सके। तो दोस्तों, देर ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं और अपने मेहमान से आज मुलाकात करते हैं। हमारी आज की जो मेहमान है वो जोधपुर की रहने वाली हैं। इनका नाम है मुद्रिका गहलोत और इनका परिचय मैं इस बात से देना चाहूंगा कि इन्होंने 2018 में अपने फादर की जान बचाने के लिए उनको अपनी एक कुंडली डोनेट करी थी। तो मुद्रिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सौरभ जी।
2: मुद्रिका जी, देर ना करते हुए मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो आपको दे दिया है, अगर आप इसके अलावा कुछ बताना चाहती हैं तो आप बिल्कुल बता सकती हैं, अदरवाइज सीधे आपके पापा के बारे में बात करते हैं कि 2018 में ऐसा क्या हुआ कि किडनी ट्रांसप्लांट तक की बात, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट तक बात पहुंच गई, मतलब कब ये बीमारी शुरू हुई, क्या सिचुएशन हुई, यहाँ तक कैसे बात पहुंची?
3: जी, 2017 में एक रेगुलर चेकअप के थ्रू हम लोगों को ये पता चला था कि उनका बीपी बहुत हाई है एंड इट वाज मोर देन लाइक 200 प्लस था। इट वाज अ रेगुलर चेकअप, हमारे डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे बात चल रही थी। तो जब चेकअप कराया था इवन ही वाज शॉक्ड, उनको भी ऐसा लगा था कि अचानक से इतना कैसे हो सकता है। तो उन लोगों ने उन्होंने एक बेसिक टेस्ट वगैरह लिख दिए थे। तो द नेक्स्ट डे जब हम लोगों ने टेस्ट वगैरह कराया तो हमें पता चला कि वो ऑलरेडी बहुत टाइम से हाई था, क्योंकि मेरे पापा खुद मेडिकल में हैं तो, और वो टचवुड वो काफी फिट हैं अभी तक भी, ही इज वेरी फिट क्योंकि स्पोर्ट्स में थे हम सब लोग। तो कभी उन्हें पता ही नहीं चला, उनकी बॉडी पे कोई असर हुआ नहीं। तो जब ये चेकअप हुआ और उनके बाद टेस्ट करवाए तो वी गॉट टू नो कि उनके दोनों किडनियां 90% तक फेल है।
2: तो मेरा थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है, आपने बोला रेगुलर चेकअप के दौरान ये चीज सामने आई, तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि रेगुलर चेकअप जब आप करवाते हैं तो आपको अर्ली डिटेक्शन होता है ना? तो
3: जी,
2: आपने बोला रेगुलर चेकअप मतलब उनकी वजह, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, वो कुछ बीमार नहीं थे, उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं थे, जस्ट चर्चा के दौरान उन्होंने कुछ बताया डॉक्टर्स ने। तो ये कैसी सिचुएशन हुई, मतलब थोड़ा सा मैं इसे डिटेल में समझना चाहता हूँ, बिकॉज हम लोग हमेशा सलाह देते हैं दूसरे मरीजों को कि आप रेगुलर चेकअप करवाते रहिए ताकि किसी भी बीमारी का अर्ली डिटेक्शन हो सके, अगर गड़बड़ हो रही है या, तो यहाँ पे तो उल्टी बात हो रही है कि रेगुलर चेकअप के दौरान सडनली किडनी फेलियर हो रहा है एंड देन ट्रांसप्लांट तक बात पहुंच रही है।
3: डैड का मोस्टली ये था क्योंकि मैंने कहा वो मेडिकल में थे तो उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि हाँ, मतलब उनको खुद को भी सारे टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि जब तक मेनली हम लोगों में क्या होता है कि अब हमें ये समझ में आया है इन लास्ट 5 इयर्स कि क्यों रेगुलर चेकअप इम्पॉर्टेंट है, आप 6 महीने में 1 साल में क्यों एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप कराओ। यही रीजन है कि हम लोग बहुत ईजीली ले लेते हैं, जब तक कोई प्रॉब्लम आती नहीं है तब तक हम चेकअप कराने जाते नहीं है, राइट? ये एक ह्यूमन बिहेवियर होता है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से जैसे मेरा मम्मा का हम लोग तो करवाते रहते हैं बिकॉज यू आर ऑलवेज कंसर्न, डैड ने कभी उस चीज को इतना लिया नहीं, ही थॉट कि मैं ठीक हूँ, कभी कुछ हुआ नहीं है, कभी भी उनको हेडेक, ये छोटी छोटी चीजें, ही वाज ऑलवेज फिट, तो ही नेवर वेंट इनटू इट। जब एक बार ऐसा हुआ कि हमने कंटिन्यूसली 2 दिन तक डैड को देखा कि उनका थोड़ा हेडेक वगैरह हो रहा है तो मम्मा वॉज कंसर्न, तो कहीं ना कहीं मम्मी का फोर्स था, डॉक्टर आए हुए थे घर पे क्योंकि दादी का भी चेकअप था, मम्मी भी करवा रही थी, तो उन्होंने रैंडमली बस डॉक्टर से सिर्फ इतना कहा कि सर प्लीज आप इनका भी ले लीजिए। तो इवन द डॉक्टर वॉज लाइक नहीं नहीं इनको तो क्या होगा, बिकॉज उन्होंने भी हमें स्टार्टिंग से देखा है, पापा को देखा है, तो ही वॉज ऑल्सो लाइक कि नहीं इनको कुछ नहीं होगा, आप चलो आप बोल रहे हो तो मैं कर लेता हूँ. तो दिस वॉज अ सिचुएशन विद डैड स्पेसिफिकली कि ऐसा क्यों रैंडमली इट हैपेंड.
2: ओके, तो चलिए फैमिली की बात करते हैं. तो जब भी मतलब ऐसी सिचुएशन सामने आती है तब जनरली डिनाइल होता है एक तरह से कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, कहीं कुछ मिस्टेक हुई है. तो आपकी फैमिली, आपका, आपके फादर का क्या रिएक्शन था जब सडनली ये सब चीजें इस लेवल पर पता चली?
3: मेरे फादर का डिनाइल था, आई अग्री फॉर दैट, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि यू नो फादर्स आर स्ट्रॉन्ग, दे आर सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग, ऐसा उन्हें बनाया जाता है, समझाया जाता है. तो उनका ऑफकोर्स थोड़ा सा था, बट द मोमेंट हमें पता चला कि ऐसा कुछ है, मैं, मेरी छोटी बहन और मेरी मदर, वी वर वेरी कंसर्न. हमें पता है क्या सिचुएशन होती है, बिकॉज नाना को हमने देखा है, जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, सो वी न्यू दैट बीपी इज अ थिंग जो आपके हार्ट और किडनी को बहुत जल्दी इफेक्ट कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलता और वो यू नो अंदर ही अंदर समथिंग हैपेंस. तो हम इस चीज को लेके थे श्योर कि कहीं कुछ हो सकता है, एंड वी टुक अप्रोप्रिएट सिचुएशन, हम डिनाइल में नहीं थे.
2: सो वंस इट इज डिटरमाइंड ये हो गया है, देन क्या हुआ, देन आपने क्या एक्शन लिया इस पर?
3: क्योंकि उनका बीपी बहुत ज्यादा था और दोनों किडनी ऑलमोस्ट 90% फेल थी, जो डॉक्टर ने फर्स्ट हमें रिकमेंड किया था वाज टू बी ऑन डायलिसिस. दिस इज द फर्स्ट स्टेप राइट, कि आप डायलिसिस पे आ जाओ. और फर्स्ट डे जब एडमिट हुए थे तभी उनका दो बार डायलिसिस हुआ था, उनका क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा हाई था, मतलब रिपोर्ट के बाद ऑफकोर्स जब हम लोगों ने रिपोर्ट करवाई किड पता चला क्रिएटिनिन बहुत हाई था, तब ये सिचुएशन थी. बट जैसे मैं बहुत मतलब गूगल वगैरह इंटरनेट यूज करना बहुत इजी एक्सेस हो गया है, तो हमें मुझे बहुत था कि टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. तो जब हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था तो वी न्यू दैट डायलिसिस ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता. आई मीन बोथ द केसेस, मैंने वो भी देखे हैं जो चार चार पाँच पाँच साल आठ आठ साल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड. बट वी हैड एन अंडरस्टैंडिंग के कहीं ना कहीं दिस विल यू नो कम टू एन एंड, मे बी कहीं कोई और प्रॉब्लम्स हो जाए. तो हम उस चीज के लिए थोड़ा रेडी नहीं थे, तो वी थॉट ऑफ काफी लोगों से बात करी, काफी डॉक्टर से बात करी, ऑफकोर्स सजेशन हुए थे, पहली बार ऐसी सिचुएशन है फैमिली के अंदर, तो देयर वर लॉट ऑफ डिस्कशन.
2: मेरा सेम नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि आपके फादर ऑलरेडी मेडिकल फील्ड से हैं और दिन रात डॉक्टरों के डॉक्टर रहते हैं, एंड आप भी इतना गूगल जानते हो, आप एजुकेटेड हो, अवेयर हो चीजों को लेकर, तो 17 लोगों से मिले होंगे, 17 बातें सुनी होंगी, 17 सजेशन सुने होंगे, तो फाइनली कंक्लूजन कैसे पहुंचा कि किस हॉस्पिटल में आपने दिखाया, कहाँ ट्रांसफर करने का फैसला किया?
3: जैसे जोधपुर के ही हॉस्पिटल में थे हम लोग मेडिपल्स में, क्योंकि वो रेलवे से अफिलियेटेड है, तो हम लोग मेडिपल्स में डायलिसिस करवा रहे थे. जैसे आपने कहा 17 लोगों से मिलते हैं, पापा डॉक्टर हैं, ऑफकोर्स जब डायलिसिस करवाते हैं तो आप अकेले बेड पे नहीं होते, आपके आसपास कम से कम 7-8 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, तो आप सबसे बात करना चाहते हैं, कोई वहाँ पे 2 साल से है, कोई 1 साल से है, कोई अभी आया है, तो सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं. और इसी तरीके से जैसे मैंने, हम लोग बैठते थे पापा के साथ, मम्मी बैठती थी, कभी मैं, कभी मेरी बहन, तो वी हैड स्लॉट. तो हमें समझ में आया कि ये चीज़ थोड़ी मोनोटोनस हो गई है, और क्योंकि पापा कहीं ना कहीं डिनाइल में और हर अल्टरनेट डे आपको जाना पड़ता है या हर 2 दिन में एक बार जाना पड़ता है, तो क्या होता है जब कोई इंसान जाने वाला होता है तो वो पहले से सोचने लग जाता है, कल मेरा अपॉइंटमेंट है, कल मुझे यहाँ जाना है, कल मैं इतने बजे यहाँ से निकलूंगा, मम्मी ये सोचती है कि खाना बनाना है, मैं ये सोचती हूँ कि जॉब से फ्री होकर इतने बजे वहाँ पहुँचूंगी. सो यू नो द एंटायर फैमिली, इट वी आर लिंक्ड, हमें पता है कि हमें नेक्स्ट डे क्या करना है. तो अगर हफ्ते में 2 से 3 दिन हम ये सोच रहे हैं कि हमें अगले दिन क्या करना है, और जिस दिन वो डायलिसिस पे हैं वो 4 घंटे निकालना उनके लिए कितना यू नो

0: प्रेशर हो जाता है, इट्स वेरी पेनफुल, डीमोटिवेटिंग. तो ऑल दिस सिचुएशन, फाइनली हमारा ये था कि नहीं, हम इस तरीके से तो नहीं देख सकते. वी डोंट वॉन्ट दिस लाइफ, हमें एक बेटर लाइफ चाहिए. एंड हमने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विद इन लाइक 4 months व्हेन ही वाज ऑन डायलिसिस, हमने 4 महीने के अंदर ऑर्गन डोनेशन का पूरा डिसीजन ले लिया था.
1: एंड डायलिसिस के अलावा, मतलब ट्रांसप्लांट में दो ऑप्शन होते हैं बेसिकली, लिविंग ऑर्गन डोनेशन एंड डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन. तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे. यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे आपने ऑप्शंस का चुनाव किया. तो जल्दी हम इस अंतराल के बाद वापस आएंगे और अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे.
2: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव.
3: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है. लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है. हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को ज़िंदगी मिल जाएगी. मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने ज़िंदगी और गुजारी. ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा ज़िंदगी दे सकता हूँ. अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद. हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है. आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं. हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं. ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि ज़िंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा. एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है. 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए. तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं. हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है. उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे. तो आज ही फ्लैश करिए और हमारा साथ दीजिए.

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे मुद्रिका से ब्रेक में जाने से पहले और ब्रेक के बाद अब हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक में जाने से पहले हमने जाना कि किस तरह से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और किस तरह से कंक्लूजन निकला कि किडनी ट्रांसप्लांट ही सबसे उचित उपाय है इसका, इस सिचुएशन का। तो मुद्रिका जी, हम बात कर रहे थे कि कैसे चुनाव किया ऑप्शन का।
2: बिल्कुल,
1: आमतौर पर दो ऑप्शन होते हैं, लिविंग ऑर्गन डोनेशन एंड डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन। तो आपने डिसीज के लिए ट्राई नहीं किया, सीधा लिविंग पर?
2: नहीं, हमने डिसीज के लिए किया था, जो जैसे डिसीज का होता है, ब्रेन डेड बॉडीज होती है, कैडेवर कहते हैं उसको। बिल्कुल, हम लोगों ने उसके लिए ट्राई किया था। जयपुर के हॉस्पिटल में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब प्रोसेस पता किया था, हमने रजिस्टर किया था। बट यू नो, उसके बारे में भी हमने पता किया कि हाउ थिंग्स हैपन। लेकिन इतना इजीली आपको ब्रेन डेड बॉडी आना आपके लिए और वो आपके मैच करना किडनी, फिर वो आपको बुलाएंगे, फिर वो टेस्ट करेंगे, यू नो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। लकीली कुछ लोगों को एक महीने में मिल जाता है और कुछ लोगों को एक या दो साल में भी नहीं मिल पाता है।
1: बिल्कुल,
2: सो दिस इज, ये हमारा एक और रीजन था जहाँ हमने बोला था कि हम ये मोनोटोनस नाइफ नहीं देना चाहते। प्लस कैडेवर में अगर एक साल लग गया तो हम नहीं, यू नो वी वोंट बी एबल टू हैंडल, बिकॉज एवरीवन इज वर्किंग, सबका अपना टाइम होता है और हम इस तरीके से नहीं उसको स्पेंड करना चाहते थे इन द हॉस्पिटल। तो वी वेंट फॉर लिविंग। एंड सी, अगर आप मेरा पूछें तो मेरा तो स्टार्टिंग से यही था दैट ही इज माई फादर एंड आई हैव टू डू इट। मैंने कभी किसी और से रिलेटेड बात सोची ही नहीं, मतलब कोई और रिलेटिव के बारे में मैंने और मेरी बहन ने कभी सोचा ही नहीं। जब आया था डोनेशन का, मैं और मेरी बहन तब भी रेडी थे कि हम ही करेंगे, बट ऑफकोर्स पेरेंट्स का थोड़ा सा
1: बस यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब भी कोई अनमैरिड गर्ल डोनेट करने की बात करती है तो सबसे पहले जो डिनायल आता है वो खुद डोनर या फैमिली मेंबर या डॉक्टर की तरफ से नहीं आता, वो सिर्फ वो रिसिपिएंट की तरफ से आता है कि नहीं बेटी से तो बिल्कुल नहीं लेंगे।
2: बिल्कुल,
1: तो आपकी सिचुएशन में ये कैसे था और कैसे इस चीज पर को ओवरकम किया आपने, कैसे कन्विंस किया?
2: मेरी मदर थोड़ा सा, ऑफकोर्स जैसे आपने कहा अनमैरिड लड़की, आई वॉज अनमैरिड एंड 25 आई थिंक मेरी एज थी 2018 में। एंड मम्मा बहुत ज्यादा डरी हुई थी बिकॉज हम राजस्थान से हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ पे शादियाँ किस मतलब जल्दी हो जाना और लड़की की शादी होना, सब चीजें मैटर करती हैं। तो मम्मा वॉज कंसर्न, उन्होंने इस बारे में डिस्कशन करी थी। मम्मी खुद नहीं दे सकती क्योंकि वो खुद भी बीपी और डायबिटीज है उनको। और जैसे अगर हम बात करें मेरे बुआ की, तो बुआ का ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता, चाचा का ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो एट द एंड मैंने कन्विंस सबसे ज्यादा अपनी मॉम को सिर्फ एक ही चीज बोल के किया था। मेरी मॉम अपने पापा से बहुत अटैच्ड है, जैसे मैं मेरे नाना से, वो अपने पापा से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। तो द ओनली थिंग दैट आई टोल्ड हर वाज कि अगर आपके पापा के साथ होता व्हाट वुड यू हैव डन।
1: बिल्कुल
2: राइट, मतलब जब हम उनसे वो सवाल पूछते हैं ना कि आप उन सिचुएशन में होते तो क्या करते, तो दैट वॉज द टाइम वो आंसर नहीं कर पाई। तो वो मेरे लिए फायदा हो गया देखा जाए तो। और डिनाइल पेरेंट्स का था, प्लस डिनाइल मेरे सारे डॉक्टर्स का भी था अगर देखा जाए तो। देवर ऑल्सो कंसर्न क्योंकि मैं राजस्थान से आई, ऑपरेशन अपोलो में करवाया अहमदाबाद
1: जी।
2: और ऑफकोर्स वो डरे हुए थे, 25 ईयर ओल्ड अनमैरिड, देवर ऑल्सो नॉट कन्विंस्ड। उन्होंने बहुत कोशिश करी मुझे समझाने की कि मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, एंड मैंने उन्हें समझाने की कि मैं ही करूंगी। तो दिस ऑल्सो टुक अ लॉट ऑफ टाइम।
1: ओके, तो ये तो हो गया दूसरे लोगों के डिनाइल का। कई बार जो डोनर होता है, ठीक है आप बोल तो रहे हैं कि आप करिए, लेकिन अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी शंकाएं होती हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो आपके मन के अंदर अगर जानने की कोशिश करें तो उस टाइम आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी, इन चीजों को लेकर क्या शंकाएं आपके मन में थी? बिकॉज जब आप ये चीजें शेयर करते हैं ना, तो हमारे जो दूसरे श्रोतागण रहते हैं जो सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं, उनको बहुत हेल्प मिलती है इन सब चीजों पे। कई बार सेम शंकाएं, सेम डाउट्स उनके मन में भी होते हैं और उनको आंसर नहीं मिल रहे होते हैं और हर चीज कोई कह भी नहीं पाता।
2: आई एग्री सरल जी, ट्रस्ट मी, मैं एक तरीके से अपने आप को वो कहते ना चोजन वन, क्योंकि इट्स नॉट, आई अंडरस्टैंड कि वो मेरे पापा हैं, कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल फीलिंग होती है। बट अगर आप मेरे को पर्सनल लाइफ में भी देखो, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, आई नो व्हाट टू डू। अगर मेरे पास फैक्ट्स है, मेरे पास चीजें हैं, तो आई डू द थिंग्स. मैं नॉर्मली भी ऐसी हूँ. और जब इस सिचुएशन में एक मौका आया था, तो ऐसा कहते हैं ना कि हम अपने पेरेंट्स को वी वांट टू गिव एवरीथिंग, वी कैन नॉट रीपे देयर डीड जो वो हमारे लिए करते हैं. तो आप इसको देख लो, शायद सेल्फिश थी. मुझे लगा एक मौका मिल रहा है पेरेंट्स को कुछ वापस देने का, दिस वॉज माई चांस, और मैंने छोड़ा नहीं. मैं बिल्कुल भी डरी भी नहीं थी. मेरा डर अगर आप वर्ड यूज करना चाहें तो डर सिर्फ मैंने डॉक्टर से शायद एक सवाल पूछा था कि सर, बिकॉज आई वॉज यंग, तो थोड़ा एक हाथ में ही है अगर देखे तो. मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि सर, ऑपरेशन होने से पहले मेरे को तो बेहोश करेंगे ना. विच वॉज स्टूपिड. मतलब मुझे पता है कि बहुत स्टूपिड सवाल था, बट एक कहीं ना कहीं मजाक था. मैंने कहा सर, मुझे पता क्या नहीं चलना चाहिए, बाकी आप कुछ भी करो. तो यू नो आई वॉज पॉजिटिव, क्योंकि एट दी एंड वो मेरे ही पापा हैं, डीएनए हमारा मैच कर रहा है, चीजें हमारी मैच करती है. तो मैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव थी, और मैं बहुत चीजें पढ़ चुकी, तो कहीं डाउट नहीं था.
1: एंड कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन रिश्तेदारों की तरफ से कि ये क्या करने जा रहे हो, और ऐसा कुछ नहीं था. मतलब नॉट जस्ट बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ अनमैरिड गर्ल, इस जैसे जनरल लोगों को भी बोला जाता है कि आप अपनी किडनी डोनेट कर रहे हो, आपकी खुद की तबीयत खराब हो जाएगी, ये वो बहुत सारी चीजें. कभी ऐसी कोई चीज रिश्तेदारों की तरफ से सुनाई पड़ी हो, जिन लोगों को जानकारी नहीं रहती, वो अक्सर बोलते हैं.
2: बिल्कुल बिल्कुल. नहीं सर, कहते ना कि कभी किसी को ज्यादा चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, नजर लग जाती है.
1: जी.
2: सो व्हाट हैपेंड वाज, जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे ऑपरेशन वगैरह के लिए, तब हमारा एक बार ऑपरेशन कैंसिल हुआ था, तो शायद पापा का वापस क्रिएटिनिन बढ़ गया था और उनके पैर में स्वेलिंग आ गई थी. तो हमें ऐसा लगा कि शायद हम लोगों ने किसी को ऐसा बताया है जो ऐसा नहीं चाहते, या वो नजर लगने वाला. तो द नेक्स्ट टाइम जब हमारा ऑपरेशन एक्चुअली नेक्स्ट डेट हमें मिली थी, हम लोग एक बार अहमदाबाद छोड़ के जोधपुर आ गए थे, हफ्ते भर के लिए घर रहे थे. नेक्स्ट टाइम हमने किसी को बताया ही नहीं. वी वेंट, हम ही 4-5 जने थे, मेरी फैमिली के अलावा भी वहां ऐसा 2 जने और थे. हम ही वहां पहुंचे, वी हैड एवरीथिंग सॉर्टेड, हमारा कब होने वाला है ऑपरेशन सब कुछ सॉर्टेड था. तो अगर आप रिस्ट्रिक्शंस की बात करें रिलेटिव से, मैं ऐसी हूँ कि मुझे मेरे लिए, अगर मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन इफ दे आर कन्विंस, या फिर हम चारों ही एक्चुअली ऐसे हैं, अगर हम चारों किसी चीज को लेके कन्विंस हैं, तो हमको फर्क नहीं पड़ता और क्या बोलते हैं.
1: जी.
2: बिकॉज वो हमारे लिए, ऐसा तो नहीं है ना हर सिचुएशन में आपको लगता है कि रिलेटिव आते हैं साथ में, वो खड़े होते हैं. नहीं, एट दी एंड हम चार ही एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं इन द गुड टाइम्स एंड इन द बैड टाइम्स. तो हमारे लिए हमेशा से वही था कि जो है हम ही है, वील डू इट. अगर कोई ऑफकोर्स साथ में आएगा, मोस्ट वेलकम, बट हम एंटरटेन नहीं करेंगे नेगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ में. पहले से ही ये क्लियर मैंने और मेरी बहन ने मम्मी को कर दिया था, बिकॉज मदर थोड़ा ज्यादा डरती है. तो हम दोनों ने मम्मी को ये जरूर क्लियर कर दिया था दैट आप थोड़ा रिलैक्स रहो, थिंग्स विल बी डन. अगर सुनोगे तो लोग सुनाएंगे.
1: बिल्कुल. तो कुछ अगर प्रैक्टिकल बातों के बारे में बात करें, तो जैसे कि आपने बोला कि आपने अहमदाबाद में जाकर ट्रांसप्लांट करवाया था, तो जोधपुर से अहमदाबाद मूव करना, तो किन किन चीजों की आपको अरेंजमेंट करने पड़े, कैसा क्या सिस्टम था? मतलब क्योंकि हॉस्पिटल का पार्ट तो हॉस्पिटल प्ले कर लेता है, हॉस्पिटल का अरेंजमेंट हॉस्पिटल में कर लेते हैं, उनके पूरे प्लानिंग रहती है इन चीजों की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो मैनेज करनी पड़ती है. तो वो सब क्या क्या थी, क्योंकि ये सब जानकारी जो आप बताएंगे वो पेशेंट्स को हेल्प करेंगे.
2: राइट राइट. सर, जैसे हम लोग रेलवे से हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं रेलवे से जो अफिलिएशन है, तो पहले हम लोगों ने प्रोसेस ये देखा था कि रेलवे का अफिलिएशन किस किस हॉस्पिटल्स में होता है. उसमें से हम लोगों के पास अहमदाबाद का अपोलो और आई गेस अहमदाबाद का एक और हॉस्पिटल था, नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, ये 2 नाम थे. एक हमारे पास नडियाद था, ये जो बड़े बड़े नाम नडियाद आप जानते हैं, एशिया हॉस्पिटल. एग्जैक्टली. तो ये नाम हमारे लिस्ट में काफी जनों ने बताए थे और ये रेलवे से अफिलिएटेड भी थे, तो हमें इस चीज का फायदा था. जब हम नडियाद गए थे, तो हमारा जो रहने वगैरह का था, जिन्होंने पहले करवा रखा था, उनसे हमने पूछा था, तो उन्होंने हमें बताया था कि नडियाद के पास में फ्लैट्स मिलते हैं. क्योंकि हॉस्पिटल, जैसे आपने कहा, हॉस्पिटल तो अपना पार्ट करेगा, हमें क्या करना था, हमें वहां का रहना, खाना पीना, वो सब एट दी एंड देखना था. तो नडियाद में और अहमदाबाद में वी वर एक्चुअली प्लानिंग कि हम लोग फ्लैट वगैरह लेके रह सकते हैं. और अपना सामान ले जाएंगे, खाना वहां से। हम लोग कम्यूट देख रहे थे कि एक हॉस्पिटल से हमें कितने एरिया में हम फ्लैट ढूंढ सकते हैं या रह सकते हैं, और कि हमें आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। हम जोधपुर से अपनी कार लेके गए थे ताकि ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हमें लोकल कम्युनिकेशन यूज ना करना पड़े, कभी कोई काम पड़े तो एनी टाइम हम कार लेके जा सकें। तो हमारी प्लानिंग इस हिसाब से हुई थी कि हमने पुराने लोगों से थोड़ी बात करने की कोशिश करी, थ्रू डॉक्टर्स, थ्रू अदर पेशेंट, कि वो कैसे रहे थे, उन्होंने कौन सा फ्लैट लिया था। नड़ियाद के पास में जैसे एक बिल्डिंग है, जैसे जो वहाँ के घर हैं आसपास वाले वो भी देते हैं, उनको भी पता है ना हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन के लिए आते हैं, तो वो भी अपना घर एक दो रूम दे देते हैं रेंट पे। तो ये पूरा हमारा एक प्रोसेस था, बट लकीली हमें एक रिलेटिव का, जब उन्हें पता चला तो उनका डायरेक्टली हमारे पास फोन आया था, और उन्होंने बोला अहमदाबाद में मेरा एक फ्लैट है वो खाली पड़ा है, आपको रहना है, आप जो भी काम करवाना है वी अंडरस्टैंड, तो आप ये फ्लैट रख लो। तो वी गॉट दैट फ्लैट। जैसा मैंने कहा कि हम कार तो लेके ही गए थे और कम्युनिकेशन हमारा हो गया था कार से, और अपोलो से उनका घर वॉज 7 मिनट्स।
1: ठीक है,
2: तो हमारा ये फायदा हुआ था और फाइनल डिसीजन अपोलो इसलिए हुआ था।
1: तो कितने महीने पहले से शिफ्ट हो गया आप वहाँ, और ऑपरेशन के कितने दिन तक, कितने टाइम तक वहाँ रहना पड़ा, ये सब चीजें थोड़ी सी डिटेल में बताइए।
2: बिल्कुल, जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ था जुलाई 7 जुलाई को हुआ था ऑपरेशन, और जहाँ तक मुझे याद है मिड ऑफ अप्रैल। रीजन बीइंग जो डॉक्टर थे उन्होंने ये बोला था कि टेस्ट होंगे मेरे फादर के, मतलब एक सीरीज ऑफ टेस्ट होता है आपके, है ना, बॉडी का एक एक पार्ट लिटरली वो लोग चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चाहे वो एक डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट हो, क्यों, बिकॉज आई एम अ गर्ल, तो मेरे जो वो लेडीज प्रॉब्लम से लेकर और भी जो टेस्ट होते हैं।

0: शाम तक फ्री होते थे, फिर वापस घर आते थे और नेक्स्ट डे द सेम रूटीन। तो ये कम से कम हमारा एक डेढ़ महीने तक चला था। फिर उसके बाद एक पार्ट आता है जहाँ पे आप जो डॉक्टर्स ऑपरेशन करने आते हैं, तो जो मेरे लिए आ रहे थे डोनर, बिकॉज वही है यंग लड़की थी, तो जो मेरे लिए आ रहे थे वो नडियाद से आ रहे थे, महेश डॉक्टर महेश देसाई, वो मेरे लिए ऑपरेशन करने, मेरा लेप्रोस्कोपी होने वाला था। मेरे डॉक्टर मनोज गुंबर ने कहा था कि मैं इनका कट वगैरह नहीं लगाऊंगा, मैं लेप्रोस्कोपी ही सजेस्ट करूंगा फॉर अ गर्ल। तो उसके लिए महेश देसाई सर आने वाले थे, तो उनकी पूरी टीम से भी हम लोग मिले थे। उनके जितने टीम में डॉक्टर्स होते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज उनको एक एक जने से कंसल्ट करना होता है। इवन वो भी हमारी रिपोर्ट देखते हैं, वो हमारे सीटी स्कैन देखते हैं, बॉडी का फुल सीटी स्कैन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज एट द एंड वो सर्जरी करेंगे, दे विल गेट टू नो कि उन्हें कहाँ कहाँ कट लगाना है, क्या निकालना है, क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं उनकी टीम के भी तीनों चारों डॉक्टर्स से मिली थी। मैंने महेश सर को भी खूब रिक्वेस्ट करके मनाया है देखा जाए तो मेरे ऑपरेशन के लिए, बिकॉज वो भी थोड़ा सा रेजिस्टेंट है। तो इट टुक अबाउट 2 months इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर द एंटायर प्रोसेस।
1: तो ठीक है मुदिका जी, यहाँ पर हम फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे मुज्जिका जी से और ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं अपने इस कार्यक्रम में। तो चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुज्जिका जी, हमने बहुत सारी बातें जानी, एक और सवाल है मेरा आपसे कि जैसे पेपर वर्क, तो लिविंग ऑर्गन डोनेशन में पेपर वर्क बहुत सारा होता है एंड चूंकि आपका तो स्टेट से बाहर जाकर आपने ट्रांसप्लांट करवाया, आपको तो शायद एक्स्ट्रा पेपर वर्क करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इनके बारे में बताइए, क्या क्या पेपर वर्क, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको अरेंज करना पड़ा, कहाँ पे क्या दिक्कत आई, करीब कितना टाइम लगा इन सब चीजों में।
2: जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2 महीने अहमदाबाद रही थी टेस्ट के लिए, उससे पहले ही हमने डॉक्टर्स से पूरे क्या कहते हैं जो वहाँ के एमआरज होते हैं उनसे हम लोगों ने पूरा लिस्ट ले ली थी कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए होगी, बिकॉज हम लोग राजस्थान के रेसिडेंट हैं और हमें अहमदाबाद आके वो करवाना है। तो आपके आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं कि भाई मैं उनकी डॉटर हूँ, एक तो वो वाला प्रूफ भी हो जाता है जहाँ पे फादर डॉटर रिलेशन प्रूफ करना होता है, आपके आधार कार्ड वगैरह तो बहुत नॉर्मल चीजें होती हैं, हर जगह होता है, फिर आपका डोमिसाइल होता है that you are resident of that place, फिर आपके पुलिस वेरिफिकेशन भी होते हैं टू प्रूव दैट आप वहीं रहते हैं एंड मतलब आप उसी जगह के रेसिडेंट हैं, तो ये पुलिस के भी सिग्नेचर्स होते हैं। और इनमें मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे आती है डोमिसाइल वगैरह में, जब आपको कोर्ट जाके एक्चुअली वो पेपर पूरा प्रिंट करवाना पड़ता है दैट हम लोग यहाँ पे रहते हैं, और वो क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट लॉयर्स के सिग्नेचर्स होना, उनके स्टैम्प लगना और उन्हें पूरे सिचुएशंस बताना, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे दैट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अहमदाबाद में, और हमें डॉक्यूमेंट्स में ये भी सबमिट करना था कि हम लोग अहमदाबाद क्यों जाना चाहते हैं, हमारी भी एक एप्लीकेशन थी कि हम राजस्थान में क्यों नहीं करवा रहे, हम अहमदाबाद क्यों जा रहे हैं। हमें रेलवे से एक अप्रूवल चाहिए था इन अ मैनर के रेलवे क्यों राजस्थान में ऐसा मतलब अब हॉस्पिटल नहीं है और हम रेलवे के थ्रू ही अहमदाबाद जा रहे हैं, तो वो रेलवे का अप्रूवल भी था, जो रेलवे के हेड थे उनसे हमारा एप्लीकेशन के ऊपर सिग्नेचर था।
1: कई बार मैंने लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि जब हम अधिकारियों से बात करने जाते हैं तो उनको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं होता।
2: जी
1: तो
2: जी,
1: आपको जीरो से उनको पहले शुरू से समझाना पड़ता है कि नहीं आपके ही सिग्नेचर की जरूरत है एंड आपको ही करने पड़ेंगे एंड देन क्या होता है क्यों होता है।
2: राइट मैं रेलवे में तो ये नहीं कहूंगी कि अधिकारियों को नहीं पता होता, क्योंकि क्या होता है रेलवे का वो जो पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं उसके अंदर जब वो हमें रिफंड देते हैं या वो वहां से हमारा क्या एज एन जो चेक अप्रूव वगैरह करवाते हैं उनमें उनके स्टेट मतलब लिखे हुए होते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों को दे सपोर्ट। राइट, तो एग्जैक्टली मुझे रेलवे के अधिकारियों को शायद इतना नहीं समझाना पड़ रहा था, बट उनको ये चीज समझानी पड़ रही थी कि एट दी एंड मतलब मेरे डैड को ये समझाना पड़ रहा था कि मेरी डॉटर करेगी, तो यू हैव टू बी लाइक उनको ये कन्विंस करना भी इम्पोर्टेंट था कि क्यों आपकी डॉटर कर रही है कहीं और। जैसे आपने कहा कैडेवर, तो रेलवे कैडेवर भी करता है
1: जी,
2: आप स्पॉन्सर बोल लो या रेलवे से रेफरल करवा लो, तो वो कैडेवर वो भी करते हैं, तो वो चीजें समझाना मुश्किल हो रहा था। तो मेरे लिए पेपर वर्क में किडनी ट्रांसप्लांट से ज्यादा समझाना ये मुश्किल हो रहा था कि व्हाई इज योर डॉटर गिविंग इट, आप क्यों नहीं वेट करना चाहते, तो वो क्वेश्चंस मेरे ऊपर ज्यादा थे।
1: तो सब चीजें हो गई, सब ट्रांसप्लांट हो गया, अब आपके फादर और आपकी हेल्थ कैसी है, कभी आपको ऐसा लगा कि किडनी डोनेशन की वजह से आपको कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो?
2: नहीं सर, मैं हेल्थ प्रॉब्लम की अगर आप बात करें तो नहीं, किडनी डोनेशन की वजह से कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी नहीं है टचवुड, ना मेरे फादर को है ना मुझे है। हम लोग वी स्टार्टेड विद जिम, लेकिन जिमिंग का थोड़ा वेट वगैरह यू कैन नॉट, तो हम लोगों ने बेसिक जिमिंग भी स्टार्ट करी, हम आज तक मेरे डैड वॉक करते हैं, और मैं मेरा थोड़ा सा वेट को लेके था, आई थिंक आई गेन्ड अ लिटिल वेट पोस्ट द ट्रांसप्लांट, और इसका रीजन भी यही है कि मेरी मॉम बहुत प्रोटेक्टिव हो गई थी, तो उन्होंने 6 महीने तक मुझे कहीं जाने नहीं दिया, घर पे बैठा आराम करना वगैरह, आप मतलब ऐसा हो ही जाता है कि उस ऑपरेशन हुआ है रेस्ट करना चाहिए, तो वो रेस्ट के चक्कर में आई गेस आई गेन सम वेट, बट अभी एट प्रेजेंट मैंने अपनी जॉब भी वैसे 6 महीने में ज्वाइन कर ली थी, मेरे फादर ने भी आई गेस 8 महीने में जॉब ज्वाइन कर ली थी, तो अभी वी आर इन अ वेरी गुड स्टेट। एक नॉर्मल सी चीज़ है कि हेल्दी लाइफ के लिए जो डाइट बताई गई है आप थोड़ा बहुत अगर उस पर ध्यान दो, बाहर का खाना थोड़ा कम, जैसे अगर हम लोग बाहर घूमने भी जाते हैं, हम लोग डॉक्टर की परमिशन से जब पहली बार ऑपरेशन के बाद बाहर घूमने गए थे, तो हम लोग मोस्टली मेरे डैड का सारा सामान खाने का हम लोग साथ लेके गए थे कि उनके लिए क्या क्या चीजें होगी। इवन वी टुक एन इंडक्शन के खाना हम घर पे बनाएंगे, सामान ले लेंगे और घर पे खाना बना सकते हैं, जहाँ आप रूम में रुक रहे हो, जहाँ आप फार्म हाउस में रुक रहे हो। तो हम आज तक वो चीजें फॉलो करते हैं कि कहीं भी जाना हो वी प्रेफर कि मेरे फादर के जो चीजें हैं खाने वगैरह की वो हम साथ लेके चलें और खुद बनाएं रेदर देन वो बाहर खाएं।
1: ओके, तो कंक्लूड करते हैं, अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप कोई मैसेज देना चाहते हो समाज को अंगदान के ऊपर, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें?
2: मेरा बेसिक चीज यही होती है कि जब अपने लोगों को अपनी जरूरत होती है, द फैमिली जो हमारे लिए स्टार्टिंग से खड़ी होती है हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए, तो वी शुड ऑलवेज बी देयर। मतलब मैं ये सिर्फ बात अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कह रही हूँ कि भाई एक बच्चे को अपने माँ बाप के लिए करना चाहिए, आई वुड से फैमिली में कोई भी हो सकता है, भाई बहन, मम्मी पापा, बेटी बेटा। माय कंसर्न इज क्यों हमें किसी और की जरूरत पड़े, क्यों हम एक कैडेवर का वेट करें, क्यों हम एक दूसरे इंसान का वेट करें अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो स्टार्टिंग से मेरा डोनर होके सबसे बड़ी चीज यही रही है, अगर मैंने किसी से बात भी करी है तो मैंने उन्हें ये कन्विंस किया है कि सी ये आपकी फैमिली का मैटर है, राइट, सो यू हैव टू बी सपोर्टिव इनफ कि आप थोड़ी सी हिम्मत कर लो, बिकॉज ट्रस्ट मी डोनर को कुछ नहीं होता है, लाइक इफ यू आर हेल्दी, मतलब ऑब्वियसली अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं काम वो अलग बात है, आप पर्सनली अपने आप को कुछ गलत चीजों की वजह से हेल्थ को खराब कर रहे हैं तो उसमें मैं नहीं बोल रही, बट एक नॉर्मल ऑपरेशन और एक नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू डोनर इतना इफेक्ट नहीं होता है, इनफैक्ट यू एक्चुअली प्रोवाइड लाइफ टू योर फैमिली मेंबर। आई गेस दिस इज इट दैट यू हैव टू सपोर्ट, यू हैव टू बी विद योर फैमिली, ताकि वो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फैमिली वालों का ही किडनी या कोई भी चीज है ना मैच भी ज्यादा करती, तो दे विल हैव अ बेटर लाइफ, वो 5 साल की एक्स्ट्रा लाइफ भी ना बहुत मायने रखती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एक डोनर और रेसिपिएंट से मिला हूँ जिनका जिन्होंने अपने भाई को 45 इयर्स पहले किडनी दी थी, वो राजस्थान से मिली थी,
2: बिल्कुल जयपुर हनुमानगढ़ वाला है जी, जी मैं कनेक्टेड हूँ काफी ऑर्गन डोनेशन उनसे, तो जाते रहते हैं हम भी अटेंड करने के लिए।
1: बिल्कुल मधुरिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इतना समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। थैंक यू मधुरिका, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच।
1: श्रोताओं से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आपको मौका मिले, चाहे वो अपनी फैमिली के बाहर हो, अगर फैमिली में, मैं तो आशा करूंगा कि फैमिली में किसी को जरूरत ही ना पड़े एंड आप अपनी लाइफ आराम से जियो, लेकिन जाने के बाद भी अंगदान करके जाएं और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां आप बचा सकते हैं इसके थ्रू, एंड ट्रस्ट मी जब आप एक जिंदगी बचाते हो तो बहुत सुकून मिलता है इस चीज में। यहीं पर हम बिता लेते हैं, अगले शो में हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए शख्सियत के साथ और उनकी कहानी जानेंगे। धन्यवाद।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहुं ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।

0: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
1: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहुं ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
0: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी

0: कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
3: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
4: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
1: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि समझौते में लगभग 2 अरब लोगों और वैश्विक जीडीपी के करीब 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। 4वें दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पगांव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 71,992 पर और निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 22,450 पर था। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिन में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों, साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम अनुकूल होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अरे भाई साहब समोसा मिलेगा, सटअप कर जाओ।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
2: अरे भूल गए भूल गए भूल गए, अरे भूल गए भूल गए भूल गए।
0: चुप यार।
1: पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
3: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार।

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे
1: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और लिया?
2: ये लो भैया पानी।
1: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
3: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
5: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
4: जल है तो कल है।

0: ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
1: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
2: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन?
6: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
0: मोहित मेरा इस्तीफा।
1: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
0: सॉरी यार,
1: काम कीजिए आप लोग।
6: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
7: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।
8: बोला था ना तुझे, ये क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तू सिलेक्शन के लिए चला गया।
9: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
10: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
8: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता,
10: पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।
11: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
8: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
11: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
12: हेलो मम्मी, वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
13: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया। अरे एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
12: सॉरी बेबी।
13: क्या सॉरी यार, कमाल है। एक काम करो, ये लो मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए। 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तभी दोनों के लिए चल रही है ना। अगर ना तो

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल। मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम इंजॉय करना है आज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हाँ श्रोताओ, आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा सब तो पहला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

91.2 MHz ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

0: मौका मिलेगा। सेटअप कर जाओ।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
0: चुप यार।
1: पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
3: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहाएंगे
1: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ,
2: ले लो भैया पानी।
1: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
3: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
5: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी।
4: जल है तो कल है।

0: ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
2: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन?
7: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
0: मोहित मेरा इस्तीफा।
8: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
0: सॉरी यार,
8: काम कीजिए आप लोग।
7: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
9: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।
10: बोला था ना तुझे, ये क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तू सिलेक्शन के लिए चला गया।
11: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
12: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
10: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता,
13: पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।
14: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
13: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
14: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
15: हेलो मम्मी, वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
13: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया, अरे एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
15: सॉरी बेबी।
13: क्या सॉरी यार, कमाल है। एक काम करो, ये लो मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए। 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तभी दोनों के लिए चल रही है ना।

कानून दशमलव 2 MHz पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक तशु तो इंतजार जिड़े से तुहां जो रेंदे की कालू दिया 2 बजदे न कने कालू दिया तुहां सारे इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़दे न तो जरूर इस सफर जो हाँ सुहाना बनाना है कने तो हाँ भी जरूर इस सफर कने जुड़ना है कने इस सफर दा जिड़ा समय है से तो हाँ तक रहता है 2 से 3 बजे तक तो जल्दी जल्दी कॉल या मैसेज या अपनी पसंद दा जिड़ा गीत है से तो हाँ इस कार्यक्रम च सुनी सकते कने हाँ कने गलबात जिड़ा है सभी करी सकते गलबात करने वास्ते जिहड़ा हुंदा स्टूडियो दा नंबर है से तुहां तक पहुँचाई देना क्योंकि नंबर तुहां तक पहुँचा होगा तो तुहां इस नंबर पर अपनी पसंद दा जिहड़ा गीत है गलबात जिहड़ा है से जरूर अहां कन्ने करी सकदे नंबर है 701-811-7091 नंबर तुहां तक पहुँचाई दा है कन्ने इसी कन्ने अहां भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न क्योंकि सफर दी शुरुआत जिड़े से अहां करी दी हो है कने इसी कन्ने शुरुआत तल तक नहीं होंदी जल तक अहां गीत संगीत जिड़े से सुनी लैंदे न कार्यक्रम च क्योंकि गीत संगीत जिड़े से कार्यक्रम च चार चांद जिड़े से जरूर लगाइंदे न तो जरूर अहां अपने कार्यक्रम च चार चांद जिड़े से लगांदे न कने आगाज़ करदे न इस गीत कन्ने

0: श्रोताओं तुम सारे अं सुनिया ये गीत शुरुआत अहाँ करी थी इस कार्यक्रम दी कने तो हाँ सारे भी शुरुआत करने जरूर जुड़ी होने न अजकने दिने दी जेड़ा गलबात करिए तो हाँ भी अपने अजकने दिने दी जेड़ा शुरुआत ऐसे हमेशा सकारात्मक सोच कने जेड़े ऐसे करते होने न क्योंकि जिंदगी दा सफर है कने अजकने दौर दी अहाँ गल करिए कुछ ना कुछ अहाँ ज़्यादातर नकारात्मक जिहड़ा विचार हैं तिना पर निर्भर रहिंदे न या सकारात्मक विचार जिहड़े न सहां दे अंदर जिहड़ा न दिखने जो कम मिलते न कने नकारात्मक विचार हर कुसी अंदर जिहड़े से दिखने जो मिली आंदे न चाहे अहां सकारात्मक भी सोचते न फिर भी अहां दा जिहड़ा मन है सही बोलता है कि कोई भी अहाँ गलत कर देना या गलत विचार अपने अंदर लौन देना तो कुछ ना कुछ अहाँ अपने स्वास्थ्य जो नज़रअंदाज कर देना या तनाव जिहड़ा है से कुछ ना कुछ अहाँ रहन देना पर हमेशा अगर अहाँ सकारात्मक विचारा पर काम कर देना या सकारात्मक सोच विचार अपने अंदर रख देना तो कुछ ना कुछ अहाँ की जिहड़ा सेहत है सभी बिल्कुल फिट एंड फाइन रहती है कने जिंदगी दा सफ़र है जिंदगी दे सफ़र च हमेशा कोई ना कोई जिहड़ा उतार चढ़ाव से चले रहिंदे तो उतार चढ़ाव जिंदगी च आउंदे न सहां जो बड़े सारे सबक जिहड़ा न से देई करि जांदे न कने अहां तिना ते क्या सबक जिहड़ा है से लैंदे न सहां पर निर्भर करदा है। इसी कने पहले जिहड़ा श्रोता न सहां कने जुड़ चुके न कर दें तिना कने गलबात से कुत्थों दे रहने वाले न कने तिना दा नां क्या है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हां जी मैडम जी ठीक ठाक। मैडम जी तुसा ठीक ठाक? मैडम जी
0: जी हां भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तुहां अपना जेड़ा परिचय है से जरूर दे दिया जी।
1: कोठियां जलोट दे बोल रहे मैडम जी सुनील कुमार
0: जी। तो कोठियां जलोट वालों दे क्या हाल चाल है? मौसम कदे है उस साइड?
1: मैडम जी गर्मी का एहसास हो रहा मैडम जी
0: जी। अच्छा गर्मी दा था। सर्दियां दे मौसम च भी गर्मी दा जेड़ा एहसास है
1: उमस दे ता लगा ही ना रात सांझ पे अगड़ा ठंड दा मैडम जी।
0: जी अच्छा जी जी ता क्या कामकाज छेड़िया कोठियां जलोट आलिया?
1: सिनी मैडम जी बैठे हो तोंदे प्रोग्राम सुना दे।
0: जी अच्छा प्रोग्राम सुना दे।
1: हां जी मैडम जी
0: जी। नोई दा जी
1: सब बढ़िया मैडम जी। नोई ताजी क्या बस
0: जी सुनाई दिया कुछ
1: ताना दी लणाज लई पौनी हुण
0: जी जी। ता धान जेड़ा न से तोहां भी लगायो?
1: हां जी थोड़ी बहुत है मैडम जी पड़मा च ना
0: जी। अच्छा
1: थोड़ी चंगर चंगर आज ताई नहीं मैडम जी।
0: जी सही ना दंत मैं पूछा दी कि उस साइड बड़ी कम हुंदी ना जी था नहीं
1: फसल बड़ी कम है छलियां कने मैडम जी कण की हो सकदी है कण कने छलियां में नहीं मैडम जी जाट ਉਜਾੜੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਾਂ
0: ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਾੜ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ
1: ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿਲੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਹੁਣ
0: ਜੀ ਕਨੇ ਸੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
1: ਸੁਖੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਨੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਹੁਣ
0: ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਯਹਾਂ ਸੁਖੀ ਹਨ ਉਤਨੇ ਯਹਾਂ ਕੁਥੀ ਨਾ ਕੁਥੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਿਨਾ ਜੋ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿ
1: ਆਹਾਂ ਆਪਣੀ
0: ਸਿਹਤ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ ਕੁਥੀ ਨਾ ਕੁਥੀ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਪਹਿਲਾ ਦਿਖਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਭਰ ਕੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੋਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਲਵਾ ਨਾਲ ਕੀ ਇਤਨੀ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਡਮ ਜੀ।
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੋੜੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੋੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਥੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪਾਣ 'ਚ ਵੀ ਕਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਅਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੇ ਤਾਂ ਅਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਬੋੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੇ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
1: ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ
0: ਜੀ ਕਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਥਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਥਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਥਾ ਨਾ ਜੀ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਸੁਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਤਨੇ ਦੁੱਖ ਵਧੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ ਹੁਣ
0: ਜੀ ਜੀ ਆਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ।
1: ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਤਨੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਆਹਾਂ ਹਰ ਕੁਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਹਾਂ ਚਲਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਹਾਂ ਕੁਥੀ ਨਾ ਕੁਥੀ ਥਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀ।
1: जी मैडम जी, पहले 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल जाना होंगे, जर के भी जाना चला सकना, बस सही कार मोटर जो भी है।
0: जी
1: जी मैडम जी,
0: जी
1: चलो
0: सुनील
1: मैडम जी, क्या गलाई सकते अजकल मैडम जी हूँ।
0: जी, पर सोच विचार करने की जरूरत है ना जी,
1: हाँ जी, हाँ जी
0: क्योंकि
1: मैडम जी,
0: हर चीज हाँ ठीक है कमा दी भी अपने वास्ते ना जी,
1: हाँ जी
0: पर तिस कमाने का ताई फायदा है, चलो वहां की सेहत ठीक रहेंगी ना जी,
1: ठीक है, थैंक यू, सही बोले मैडम जी,
0: क्योंकि
1: तो
0: सेहत ठीक नहीं है तो तिस कमाने का भी कोई फायदा नहीं है ना
1: कोई
0: जी।
1: फायदा नहीं मैडम जी, कोई
0: जी
1: फायदा नहीं।
0: हर
1: हाँ
0: चीज का कोई ना कोई मतलब जरूर होता ना जी।
1: जी मैडम जी,
0: जी, तो सुनील जी आज तो हाँ कुंडिया गीत सुनना है जी।
1: अज गाना सुनाई ना मिंजो गाना ना, कह चरखे दिया पुनिया माए।
0: जी
1: हाँ जी मैडम जी, सा गाना सुनाई ने।
0: जी जरूर जी, तुम्हारी जेड़ा फरमाइश है से तुम तक पहुँचा दी जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुम्हारा।
1: धन्यवाद, धन्यवाद मैडम जी, पूरे FM गुंजन जो, बड़ा धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद
0: जी तुम्हारा भी
1: मैडम जी,
0: जी,
1: नमस्ते मैडम।
0: दर्शो तो अपनी गलबात जो इतों ही रोकते ही ना, कन्ने इसी गलबात जो हाँ थोड़ा दिया आगे बढ़ाने, गीत और जड़े से चलने, फरमाइश जड़े से तुम तक कहाँ पहुँचा देना।

0: कहाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहा सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दोष शशि कन्ने। इसी कन्ने अगले जेड़ा श्रोता न से जुड़ चुके हैं कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हाँ जी, तुसा सुना
0: जी? हाँ भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी।
1: अच्छा, दो दिन को तो थे
0: जी? दो दिन हाँ चली है, एक दिन तो रेडियो बंद था कने लाइट दा कट था ना जी?
1: हाँ जी
0: जी जी जी ता रेडियो गुंजन जो तो हाँ मुझे लगा था मिस करा दे थे ना दो दिन।
1: हाँ जी
0: जी जी जरूर जी, हाँ फिर ते वापिस आई हो ना, तो हाँ तक इंतजार तो हजो भी रहंदा, हजो भी रहंदा कि कल दिया दो बज दे ने कने कल दिया आहां भी गल कर दे ने कने तो हाँ ता कर दे या तो हाँ ता हमेशा सुन दे रहंदे ना जी?
1: हाँ जी
0: जी जी जी ता पवना जी कांगड़े ते ना जी?
1: हाँ जी
0: जी। ता पवना जी कांगड़े आले दे क्या हाल चाल है, क्या काम कार छेड़िया तो हाँ क्या करा दे?
1: बस कोई काम नहीं छेड़िया बैठे ही है ना
0: जी। अच्छा बैठे, कोई काम कार नहीं है?
1: हाँ जी, पहले मंदिर मंदिर गया, सोमवार है आज, ता मंदिर जाके खाना खुना खादा
0: जी। अच्छा
1: घर के काम ने बढ़ाए तो फ्री है ना
0: जी। अच्छा अच्छा
1: हाँ जी
0: जी। नोई ताजी

0: बस कोई नई ताजी नहीं, बारिश नहीं हो रही है लेकिन थोड़ी बारिश
1: जी। ता एक दिन ता रेडियो शटडाउन था ना जी, बंद था, तो तुम्हें कदया लगा था
0: बार बार लगा था रेड लाइट आ गया, लाइन आ गया आगे
1: जी। अच्छा जी जी अच्छा, कई बार होंगे ना कि हाँ जी हर चीज़ जो रोज़ सुनते हैं ना, कने एक दिन मिस हुई है तो थोड़ा अजीब जहा लगता ना जी, अधूरापन लगता
0: हाँ जी, 1 घंटा बड़ा बुरा बीत गया उस
1: जी।
0: दिन
1: अच्छा 1 घंटा जड़े
0: बेकार गया।
1: से बेकार गया
0: हाँ जी
1: जी। जरूर जी, यहाँ तो आई हूँ जी, तो वहाँ तक कहने तो हाँ आज खूब एंजॉय करा दिन ना जी।
0: हाँ जी हाँ जी, आई तो खुश है ना लगी
1: जी अच्छा, खुशी चाहिए ना जी,
0: अभी।
1: क्योंकि
0: हाँ जी
1: खुश रहना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। आंधी जिड़ा सेहत है ना, सेहत ताई ठीक रहती है जल वहाँ खुश रहते ना जी।
0: हाँ जी, अगर दुख भी आया तो मैं खुश रही यार,
1: जी
0: समझ।
1: जी ये भी तो हम बड़ी सही गल बोल दी कि दुख है तभी खुश रहे हैं
0: जी
1: जी, क्योंकि फैमिली च अहाँ रहते ना तो उतार चढ़ाव का जड़ा है ना से चले रहते ना जी।
0: हाँ जी हाँ जी
1: जी पर अगर अहाँ हमेशा अपनी ही कर दे ना तो कुछ ना कुछ से फैमिली च फिर उस तरीके ने फैमिली नहीं चली पाती ना जी।
0: हाँ जी, पर खुश रखना चाहिए तो सारे बंदे जिंगे कोई बोले तिंगे कर दिया आपको भी खुश करने बाकी भी खुश।
1: जी। तो तुम क्या मतलब फैमिली वास्ते एक छोटा दिया संदेश, क्योंकि आज के दौर दी अगर अहाँ गाल करिए तो कुछ ना कुछ से प्यार भावना बिल्कुल खत्म है ना जी।
0: हाँ जी, अजकल तो सब अपने अपने हैं जी,
1: जी
0: फोन ना
1: जी
0: लेके बैठे सारे अपने अपने फोन सुन दा कुछ दी।
1: जी तो थोड़ा दिया बुरा भी लगता अहाँ बोल दे तो अहाँ वह चीज़ पर गौर भी कर देना जी,
0: हाँ
1: क्योंकि
0: जी, पर
1: जी जी
0: हम
1: फैमिली
0: बोल देना कि बैठना करती है तो फोन मत लिया, सारे
1: जी
0: फोन रखी दिया अपने।
1: जी फोन साइड
0: हाँ जी अपनी सुना, थोड़ा दिन के लिए अभी टेक दे अभी के क्या अब
1: जी
0: दोस्तों कोई दस पति
1: जी जी
0: अपना फोन जैसे साइड रखो, बेशक 1 घंटा बैठा अपने घर पूरी गल करना
1: जी अच्छा 1 घंटा जेड़ा है से फोन साइड, कने जेड़ा
0: ठीक
1: भी पूरा दिन तोहों दा किस तरीके ने गया, किस तरीके ने तोहों क्या आज के दिन च सीखिया या नहीं सीखिया, बच्चे की गल करिए तो या
0: रहेंगे।
1: माता पिता की गल करिए, माता पिता भी अपने बच्चे वास्ते समय चाहते, कने बच्चे भी माता पिता थे यही चाहते कि माता पिता हाँ जो समय जेड़ा है से जरूर देन ना जी।
0: हाँ जी
1: जी जी जी तो पवना जी आज का जेड़ा तुहदा प्यारा दिया गीत तुहां कुन दिया सुनना है आज
0: आज तुम्हें सुनाई दिया उनसे उनसे बोले दे कैलाश। हाँ
1: जी, ऊंचे ऊंचे भोले दे कैलाश
0: जी, सानू बड़े प्यारे लगते।
1: जी। जरूर तुहदी जेड़ा फरमाइश रहे से तुहां तक पहुंचा दें जी, कन्ने जुड़ने वास्ते, कन्ने रेडियो गुंजन जो इतना ज्यादा तुहां प्यार दिन देने तिदी वास्ते धन्यवाद जी तुहदा
0: धन्यवाद जी।
1: जी। तशु तो तुह सारे इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि, कन्ने ये सफ़र तुह तक लाइव चलिया, कन्ने सफ़र जो हाँ फिर ते थोड़ा दे आगे बढ़ाना है, कन्ने तुह तक अगली जेड़ा फरमाइश है से पहुँचा देना, क्योंकि तुह जो भी इंतज़ार लगे कि कालू दी अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पुजती है, तो इसी कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है से जरूर हाँ पहुँचानी है, कन्ने तो सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ सकते, कन्ने यहाँ कन्ने गलबात जड़े से जरूर करी सकते, तो गलबात जो इतनी रोक देना ये फरमाइश तुह तक पहुँचा देना।

0: कशु तो ये गीत हाँ सुनील कुमार जी तक पहुँचाया कने से रहने वाले न कोठियाँ जलोट ते ता जरूर तो हाँ सारे भी ये गीत इंजॉय किया होने कने इसी कन्ने अगले जेड़ा श्रोता न से जुड़ चुके न कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
1: जी? मैडम जी
0: जी तो कुथों दे रहने वाले न कने तुहां दा नाम के है जी?
1: धर्मशाला
0: जी। धर्मशाला दे क्या हाल चाल है जी? मौसम कदे है उस साइड?
1: मैडम जी बदल है
0: जी। अच्छा बदल है
1: जी।
0: और नोई का जी?
1: ठीक है मैडम जी, टाइम निकल गया था। ठीक है देखो
0: जी जी जरूर जी, टाइम नहीं निकालने जी क्योंकि हर दिन जो एंजॉय करना भी जरूरी है ना जी।
1: हाँ जी मैडम जी
0: जी। ता विजय जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनने कुंदी फरमाइश है तो हंदी
1: आज फरमाइश है हाँ सबना दार रखवाला मेरा डंबर माँ वाला
0: जी। कुंदिया
1: सबना दार रखवाला मेरा डंबर माँ वाला
0: जी। जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: ठीक मैडम जी
0: जी। तो शो तो आज कने दिने दी यहां गलबात करिए ता आज कना जेड़ा दिन है से बेहतर खास है। 5 अक्टूबर 2026 दी यहां गल करिए सोमवार दा ये दिन है कने दिने दी जेड़ा शुरुआत है से यहां हमेशा पॉजिटिव सोच कने कर देने कने करना भी जरूरी है कने इसी कने विश्व शिक्षक दिवस जेड़ा से आज यहाँ बना दिन कने तुहां सारी भी आज कने दिने जो जरूर सेलिब्रेट जेड़ा से करा दे होने न कने इसी कने बाकी जेड़ा दिन सभी तुहां खास तरीके ने बना दे न कने खास बनाना भी जरूरी है क्योंकि जिंदगी दा सफर खास होना भी जरूरी है क्योंकि कई बार हाँ ये सोचते हैं कि अजकना जेड़ा समय है से ठीक है कि अच्छे तरीके ने निकलना भी जरूरी है पर इसी कन्ने खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है कन्ने अपना जेड़ा खान पान है सबसे पहले अपना जेड़ा खान पान है उसका ख्याल रखना भी यहाँ वास्ते जरूरी है कन्ने यहाँ भी तुहां दा जेड़ा ख्याल है से जरूर रखा देना तो इसी कन्ने यहाँ फ्री ते अगे बढ़ना है कन्ने पवना जी तक अहाँ तिना दी फरमाइश चेगी तिना अहाँ तक पहुँचाई है अहाँ जरूर तिना तक पहुँचाना है कने से रहने वाले न कांगड़े ते कने पवना जी तिना दा ना है तो जरूर तिना तक अहाँ ये भजन पहुँचा देना तुम सारे भी इंजॉय करा।

ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, तुहां सारे इस वक्त एंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि करने कार्यक्रम दा नाम है माटी दी महक। तो जरूर इस कार्यक्रम च जेड़ा माटी दी महक यानी कि जेड़ा मिट्टी दी खुशबू है, सौंधी सौंधी जेड़ा खुशबू है, से जरूर तुहां तक पूजा दी होनी है, क्योंकि जिंदगी दा जेड़ा सफर है सियाहां दा हमेशा खेतीबाड़ी कन्ने जुड़िया है, या खेतीबाड़ी जेड़ा है सियाहां वास्ते जरूरी है। कन्ने कुथी ना कुथी तुहां भी जेड़ा अपना सफर है से हुण तय करने वाले ने, क्योंकि जेड़ा धाना दी जेड़ा फसल है से भी हुण तैयार होने वाली है या हो भी गई है, कुथी जेड़ा से लगी भी पे होने ने धाना बढ़ना, क्योंकि जिस जो लगा था कि धान जेड़ा न से पक्की हो न तो जरूर सतीना जो बढ़ना जेड़ा है से जरूर लगी होने न। धाना दी गल हाँ छेड़ी दीती है तो कुथी ना कुथी हाँ जो याद आई आंदा है पुराना समय, क्योंकि कोई भी अहाँ काम करते न तो काम अहाँ जेड़ा है से हमेशा क्या करते न मिली जुली कर करते न, क्योंकि मिली जुली कर काम करने च अलग इसका अलग ही अंदाज होंदा है, इस करने का भी अलग ही जेड़ा रौनक वाला जेड़ा माहौल है से बनी आंदा है। कने अगर अहाँ इसी कमे जो किले करते न तो कुथी ना कुथी इस कमे का जेड़ा एहसास है से अहाँ जो ज़्यादा आंदा है, होंदा कि नहीं होंदा तो वहाँ भी जरूर कॉल करा जल्दी जल्दी, क्योंकि समय जेड़ा है से अपनी जेड़ा रफ्तार है से लेकर चल रहा है। समय कार्यक्रम जो ये है 2:38 समय के अनुसार अहाँ भी चलो न कने तो हाँ भी समय के अनुसार इस कार्यक्रम के सफर च जुड़ा दे न। कने जुड़ने वास्ते जेड़ा स्टूडियो का नंबर है से फ्री ते एक बार तुहां तक पहुँचाई दे न, क्योंकि नंबर तुहां तक पहुँचाऊंगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल या टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज जेड़ा है से जरूर कर सकते। नंबर है 7018117091 नंबर तुह तक पहुँचाई तो है। कने फ्री ते थोड़ा दिया चल दिन गीत की ओर, ये गीत अहाँ पहुँचा दिन विजय कुमार जी तक कने से रहने वाले न धर्मशाला ते, तो जरूर तिरा तक अहाँ ये भजन पहुँचा देना।

0: मतलब 2 MHz पर ए है तो हाँ सार यदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो दोस्त शशि कन्ने अगले जेड़ा श्रोता है ना यहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं ना कर दें तीना कन्ने कल बात। हेलो श्रोताओं कॉल जेड़ा से जरूर डिस्कनेक्टेड हो ही होता तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ करने जुड़ सकते कन्ने यहाँ करने गलबात जड़े से जरूर करी सकते गलबात करने वास्ते जड़ा हाँ दा नंबर है से तुह तक पहुँचाई दे ना क्योंकि नंबर तुह तक पहुँचाऊँगा तो तुह इस नंबर पर कॉल या टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज जड़े से जरूर करी सकते नंबर है 7018117091 नंबर तुम तक पहुँचाई तो है कन्ने आज जहाँ जेड़ा खास दिन बना देन हर साल जेड़ा 5 अक्टूबर जो अहाँ जेड़े से विश्व शिक्षक दिवस जेड़े से आज जहाँ बना देन कन्ने तो हाँ सारे भी ज़रूर आज कने दिने जो सेलिब्रेट जेड़े से करा दें न क्योंकि शिक्षक जेड़ा न सियाहां दे जीवन च बड़ी अहम भूमिका अदा करते न इना दा जेड़ा आशीर्वाद है सियाहां दे सर पर होना जरूरी है कने इसी कन्ने माता पिता की गल करिए तो माता पिता दा भी जेड़ा आशीर्वाद है सभी अहां वास्ते बड़ा ज़्यादा जरूरी है। अगले जेड़ा श्रोता न से जरूर अहां कन्ने जुड़ चुके हैं ना कर दिन तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न।
1: हाँ जी ठीक ठाक जी।
0: जी तो हाँ कुछ ते बोला दे कने तो हाँ दा ना क्या है जी।
1: नाम प्रकाश चंद जी नगरी।
0: जी प्रकाश चंद जी नगरी ते बोला दे।
1: हाँ जी।
0: जी तो क्या हाल चाल है जी नगरी आ रहे हैं दे क्या काम कार छेड़े तो हाँ क्या करा दे।
1: बढ़िया जी खेती बाड़ी दे।
0: जी खेती बाड़ी दा क्या काम कार छेड़े जी तो हाँ।
1: खेती बाड़ी दा
0: कितनी की जेड़ा ऐसे तुहां सोयाबीन जेड़ा ऐसे लगाई हुए जी। अच्छा 4-5 जेड़ा पट्टियां न हां बोली सकते कि पट्टियां लगाईया तो हां।
1: हां जी
0: जी जी ता फसल कदेई की है सोयाबीन दी।
1: अच्छा तो बहुत बढ़िया
0: जी बढ़िया है
1: जी।
0: जी जी चलो अच्छी
1: है
0: जी। क्या बोला थी
1: शिमला मिर्च जड़ी से पोली हाउस
0: जी। अच्छा जेड़ा शिमला मिर्च है से पोली हाउस जान दी जी। चलो बड़ी अच्छी गल है क्योंकि मेहनत करना जरूरी है ना जी। जी तो हाँ भी जरूर ये पर मेहनत करा दे होने ना ताई तो हाँ जो तिदा जेड़ा मेहनत करके तो हाँ जेड़ा सोयाबीन है या शिमला मिर्च है तिदी फसल अच्छी होई ना पैदावार। जी अच्छा खुद ही कर दे तो हाँ जी ता और भी अच्छी गल है ना जी। जी जी जी ता कदिया लगा था तो हम जो ये कार्यक्रम
1: कार्यक्रम तो बड़ा अच्छा
0: जी जी जी जी ता प्रकाश चंद जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना जेड़े से पसंद करके
1: जी कालू में मुझे बहुत मेहनत
0: जी
1: डेरा डेरा
0: अच्छा कालू
1: में मुझे डेरा
0: जी जी जी जरूर ये गीत तुहां तक पहुंचा दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा
1: धन्यवाद
0: जी। दर्शकों तुहां सारी इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो दोस्त शशि कन्ने इसी कन्ने अहां भी अपनी जेड़ा गलबात है इसे तुहां तक पहुंचा देना कन्ने अपनी स्वास्थ्य दा जेड़ा ख्याल रखना भी जरूरी है कन्ने मेहनत अहां कुथी भी कर देन मेहनत जेड़ा से अहां दी हमेशा रंग लेकर आती है पर तेरी पर अहां जो मेहनत करने दी जरूरत होंगी इसी कन्नै हां फिरी ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो थोड़ा दे अग्गे बढ़ा देन कन्नै अगली जेह्ड़ा फरमाइश सियाहां तक पहुंची होवै व्हाट्सएप दे माध्यम ने तो जरूर मनोज जी तक अहां ये फरमाइश पहुंचा देन कन्नै से रहने वाले न छतराड़ी ते तो जरूर तुम सारे भी इस भजन जो इंजॉय करा कन्नै नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं तो सारे ही सुनिया ये भजन ये फरमाइश फिर ते हाँ वापिस आई हूँ अपनी गलबात उपर कने तो सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र जो इंजॉय करा दें उन्हें कने इसी कने इस सफ़र जो हाँ फिरी ते अगे बढ़ाते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है सहाँ तक पहुँची हुए प्रकाश चंद दी कने से रहने वाले न नगरी ते तो ज़रूर तिना तक हाँ ये फरमाइश पहुँचा देन तो सारे भी इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने समय दी ओर अगर अहाँ नज़र दौड़ाइए तो समय जड़ा है सहाल बिल्कुल थोड़ा देर तो समय के अनुसार चलना भी जरूरी है क्योंकि समय के अनुसार चल के ताई तो तुहदियाँ जड़ा फरमाइश है न से तुह तक अहाँ पहुँचाई सकते हैं कने गलबात भी जरूर अहाँ तुह तक पहुँचा देन तो इसी कने ये जड़ा फरमाइश है सभी तुह तक अहाँ पहुँचा देना।

कानवी दशमलव दो मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इस कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से तुहां तक रहंदा है दो ते तीन बजे तक। तो इसी कन्ने तुहां सारे अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति कन्ने हमेशा खुश रहा कन्ने अपना जेड़ा ख्याल है से जरूर रखा।

0: मिलेगा। सेट अप कर जाओ।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
0: चुप यार।
1: पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
3: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार।

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे
2: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे अरे भाई पीने का पानी और ले आ,
3: ये लो भैया पानी।
2: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है
4: भैया? अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
5: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
6: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
5: जल है तो कल है।

0: भी सर।
1: ये मेरा इस्तीफा।
0: क्यों
1: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
1: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
2: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
6: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
1: मोहित मेरा इस्तीफा।
0: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
1: सॉरी यार,
0: काम कीजिए आप लोग।
6: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
7: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।
8: बोला था ना तुझे कि क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तू सिलेक्शन के लिए चला गया।
9: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
10: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
8: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता,
10: पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।
11: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
8: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
11: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
12: हेलो मम्मी, वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
13: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया। अरे एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
12: सॉरी बेबी।
13: क्या सॉरी यार, कमाल है। एक काम करो, ये लो, मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए। 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तभी दोनों के लिए चल रही है ना। अगर ना हो तो

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचि का हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

उस रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: साथ समोसा मिलेगा। सटअप कर जाओ।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो?
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
0: चुप यार।
1: पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
3: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार।

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहेंगे
1: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले
2: आया,
3: ले लो भैया पानी।
1: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है
4: भैया? अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
5: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
6: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
5: जल है तो कल है।

0: ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
0: मोहित मेरा इस्तीफा।
7: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
0: सॉरी यार,
7: काम कीजिए आप लोग।
6: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
8: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।
9: बोला था ना तुझे, ये क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तू सिलेक्शन के लिए चला गया।
10: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
11: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
9: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता,
11: पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।
12: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
9: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
12: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
13: हेलो मम्मी, वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
11: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया। अरे एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
13: सॉरी बेबी।
11: क्या सॉरी यार, कमाल है। एक काम करो, ये लो, मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए। 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तंगी दोनों के लिए चल रही है ना। अगर ना तो

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी बखूबी की असो ट्यून कर रो बुना। हाँ बिल्कुल ट्यून कर रो बुना और आऊँ आर जे सचिन कपूर बिल्कुल हाजिर है तू सुसो की तुंदे सभी रे रेडियो उस सेट में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रह सभी श्रोतागण रह क्या हाल चाल श्रोतो तुंदे उम्मीद कर दें कि तुंदे हाल चाल कन सो ठीक ठाक बुने तो सब के सो खरे बुने हैं और अपने घर खुश और तंदुरुस्त बुने जो कि रहना चाहता इंसान जो हर वक्त हर पल तंदुरुस्त रहना चाहता इंसान जो है ना और खुश रहना चाहता सब तो मोटी गल छो तो हर बार बनते कजो कि यहाँ नेक्स्ट आवर्स नेक्स्ट डे है ना यार नेक्स्ट वीक क्या बुना सू कसी कुछ ना पता है ना कजो कि इड़ी पल भर रहा भरोसा नहीं कि कहना इंसान जो कभी क्या बुझे अच्छा था फिर ताएं तो हमेशा वलन हो कि खुश रहना की सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो यह सब श्रोता सो के जुड़ सकते हैं रोजाना ही है 7018819 पर नंबर अक मौके फिर तू हो गया है शेयर कर दिन 7018819 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और कॉल करे करे अपना पसंदीदा गीत क्या सो होने सकते हैं अपने क्षेत्र रे जानकारी और वो की साझा कर सकते हैं। यह गल खास ख्याल रहे कि जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लाइक जरूर भुआ जानकारी किया सो साझा करने लाइक जरूर भुआ। बहरहाल इनदे पहले श्रोता सो की कनेक्टेड हैं और इस समय धर्मशाला रे मौसम रे गल करिए श्रोताओं तो 17 डिग्री सेल्सियस रे आसपास की सो धर्मशाला रे मौसम बन रहा है और न मेरी गल करूँ श्रोताओं ह्यूमिडिटी रे गल करूँ जैसी अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी बलते हैं 78% रे आसपास किया सो नामे हाँ ह्यूमिडिटी हा शो तुम ता आइए जी कार्यक्रम मंच इस प्रकार सो की जानकारी के न सो चल दी वह नहीं न इस प्रकार सो की जानकारी डा आप पिटारा के अशोतों सो खुल दे रहना हा पर चलिए जी भी तुसु पता कोई भी नवा गीत इंदा हा ता है बिल्कुल जी तक रसूल है पुझे गच्छा है अपनी औरतों कोशिश कर दे हिन किया है ब्रॉडकास्ट तस गीता जो ज़रूर करना शीला ठाकुर राय न्यू गद्याली किया सो मैशअप पा शोतों और फीमेल वाइज मा मे बी ए फर्स्ट टाइम इस प्रकार मैशअप किया सो भुआ हा और खासकर शीला ठाकुर राय धन्यवाद करना चाहूँ कि तो है जिस प्रकार हो कि कम बैक तो है करो हा और करू करते हैं जिस प्रकार सो की तो है अपनी स्टेज परफॉर्मेंस माँ बाकमाल ने तो है ना बहुत कमाल हिन और चलिए रेडियो इतनी माँ ज़्यादा तारीफ तनाव कसी सिंगरहरी कर सकता हा लेकिन शीला ठाकुर जी वैसे भी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हा फीमेल वॉइस बड़े लाजवाब हा जबरदस्त था और यारे बारे ता थोड़ा करीब बल्लू करता कजो कि ये बहुत पुराने आर्टिस्ट हिन बहुत स्टार्टिंग मुझे लगता कि यही किया सो कर रहा है ना कजो कि ता समय वे आर्टिस्ट हिन और बहुत मतलब बल्ले सकते हैं कि धुआंधार आर्टिस्ट है हिन ताइए जी हाँ ये नवा गीत किया सो कट जरूर तो है किसी सकते हैं शीला ठाकुर अगर यूट्यूब में तो है लिख ले श्रोताओं ता ए मतलब यार नवा गीत की सो चली ना इस गीता जो तो है ज़रूर प्यार भी दिन और आइए जी है सब भी हुन दिन कि क्या कुछ किया सो रंग रूप लेकर इस बारी फिर हाजिर भोया तुंदे अपनी गद्दन शीला

0: शीला जी, इस मैशअप जो बंद करने का दिल था बिल्कुल भी ना था, लेकिन क्या करिए, वक्त रही थोड़ी करी क्राइटेरिया रेडियो रो कुछ ऐसा कि ये भी मैं किया, सो थोड़ा ज़्यादा ही ब्रॉडकास्ट किया, सो करी तो इवन की 11 मिनट तो चलिए कजो कि 9 गीत हो श्रोताओं ठेरे वास्ते सो ब्रॉडकास्ट किया सो करना पे हुआ, ताकि तो है इस गीत जो कि सो जरूर हुन और इस यूट्यूब में किसी कर शीला ठाकुर ज़रूर तो है हेरन और यारे चैनल जो सब्सक्राइब करन और यारे गीत जो कि सो आशीर्वाद दिन और बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत प्यारी आवाज़ है। भगवान तुंदी आवाज़ जो कि असो ये बरकरार रखा, तुसु हई है खूबसूरत किया, सो तुंदी आवाज़ भी तुम ते नेचर है, तुंदी आवाज़ भी तुने ही खूबसूरत आ, प्यारे हा, हसीन आ और दुलारी हा। चलिए फिलहाल इन श्रोता भी असोगे कनेक्टेड लगी पे श्रोताओं भुना और कुछ एक खास जानकारी भी तुसोगे कि असो है साझा कर लेंदे हैं। शतो अक्टूबर हमारे पहले ही वीकेंड में किया सो कांगड़ा घाटी वे धर्मशाला मैकलोडगंज में बम्पर पर्यटन सीजन ने रफ्तार किया सो पकड़े लिया है। शतो गांधी जयंती री छुट्टी और वीकेंड रे चलते पंजाब हरियाणा दिल्ली चंडीगढ़ समेत विभिन्न राज्य थो बड़ी संख्या में पर्यटक धर्मशाला मैकलोडगंज धर्मकोट भक्सुना खनियारा रे खड़ोता वैली थातरी और नड्डी के न सो पुजे हैं। शतो होटल में किया सो कमरे री मांग तेजी थो किया सो बढ़ गई है। शतो और मैकलोडगंज क्षेत्र में किया सो होटल ऑक्यूपेंसी किया सो 95 वे लगभग किया 95 थो 100% तक किया सो पुजेगी है। शो तो तटीय धौलाधार हरियाणी प्रसिद्ध ट्रैकिंग साइट में पुजने वाले ट्रैकर व पर्यटक प्रकृति रे सोगे सुकून रे पल के सो बिताओ करते हैं। शो तो हसीन वादी मंज ए पल के न सो बिताओ करते हैं। शो तो इन श्रोतागण कनेक्टेड हैं, पुज दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू करते हैं। नमस्ते जी, हेलो माफ़ कर शोतो थोड़ा इतना पढ़ना साहब किताब। नमस्ते जी, नमस्ते, तुंदी आवाज़ नहीं अजी सू पुजू कर दी। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते जी।
1: नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते, ठीक ठाक ने?
1: हाँ जी सर जी, ठीक ठाक जी।
0: अच्छा जी, कौन बलुंदेन और कड़ी थों बलुंदेन?
1: सुनील कुमार बोले सर जी, कोठियां जलोटते।
0: अच्छा अच्छा जी, सुनील कुमार जी तो है हस्त पुष्ट और तंदुरुस्त हैं ना?
1: ठीक है ना सर जी, जो चली गई जिंदगी सर जी।
0: चलिए तो सुहेरी करियो तुम तो कॉल इन देता हूँ, बड़ा एनर्जेटिक किया सो पूछे गंदा हा। चलिए पहले ये दस कि शीला ठाकुर रे नौ गीत है तो तक पहुंचाओ के दे लगो।
1: बहुत अच्छा लग गया सर जी, बहुत बढ़िया लग गया सर जी गाना।
0: अच्छा
1: हाँ जी सर जी, बहुत प्यारी आवाज सर जी।
0: चलिए ठीक है जी, अगर शीला ठाकुर हुनु कर दे हिंद ता तीनों दस में चांदे की तुंदी आवाज बड़ी प्यारी हा इंदे श्रोता के ना।
1: चलो उन्हें आने टाइम में सर जी और गीत गान है।
0: हाँ बिल्कुल, और फीडबैक की है सो तुंदा मुलना शुरू हो सीगो है ना जी।
1: हाँ जी सर जी
0: जी, ता चलिए जी, कुंडन गीत होना पसंद कर ले तो है
1: सर जी। गाना सुनाई ने बंदना दी बनती है वाजे जय बाबा बालकनाथ जी का भजन, मोहलिया कुंडला वाला।
0: मोहलिया कुंडला वाला,
1: मन मोहलिया कुंडला वाला।
0: हाँ वही तो ताई बोल।
1: हाँ जी सर जी,
0: ठीक है जी, जरूर होने ले।
1: हाँ जी धन्यवाद सर जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते। चलिए इंदे अगले श्रोता सोगी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, कौन बलुंदन और कड़ी थों बलुंदन?
2: मैं सुरजीत बोला था सर, धर्मशाला कैंट पे।
0: अच्छा सुरजीत जी धर्मशाला कैंट थो, क्या बात है,
2: बड़ी टाइम दे बाद मैं तुम्हें कॉल कीती है जी।
0: अच्छा ठीक ठाक ने तो है राजी बाजी ने?
2: हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी हूँ।
0: अच्छा
2: तेरा रे थोड़ी थोड़ी गादी कढ़ाई लेना पूरी तो मुझे ना हिंदी है जी, अपन प्रयास जरूर कर ला जी।
0: क्या बात है, क्या बात है, बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी बल्लू गर्दन गद्दी जी तो है। वैसे कड़ी रे रहने वाले
2: हैं? बेसिकली धर्मशाला कैंट तो ही है जी।
0: अच्छा तो फिर अच्छा मतलब सोगी रही रही के गद्दी सीखी के बुने है ना।
2: जी सुनील राणा वगैरह सब मित्र हैं जी।
0: अच्छा क्या बात है क्या बात है क्या बात है।
2: अभी है पहला तासील जी जो बड़ी बड़ी मुबारक दी यारा गाना बड़ा प्यारा गाना है।
0: हाँ जी
2: अच्छा दुई गल जड़ा जे टूरिस्ट री करी है ते
0: जी
2: तो ठीक है कि येरा बड़ा बड़ी काम थोड़ी है ते काम होना भी चाहिए ना जी।
0: जी
2: अपना आग बड़ी दुखारी गल है जी जड़ा जे त्रिउंडा जो बच्चे बच्चू कर दे तिया पैसे दिया कर दे अपना तिया जो फैसिलिटी क्या है जी।
0: बिल्कुल ये मांग तुंदी।

0: दुखारी गल है जी,
1: जी
0: बड़ी दुखारी गल है जी कि एरा पब्लिक टॉयलेट है ना, पात्र ढंगारी है ना ना जी।
1: जी बिल्कुल,
0: कम से कम जे तुसे 200-300 रुपया तियां ले कर दिन सब कुछ तियां दिया देना।
1: ये तो बिल्कुल बड़ी सही गल तो है, बल्ले और पकड़े भी आऊँ बलना चाहता कि अगर तो है चार्जेस करू कर दें तो हिसाब की फैसिलिटी भी नॉर्मल दी फैसिलिटी के अनुसार सोता दे सकते हैं, है ना जी।
0: क्या बोलना जी, प्रशासन की कमी आ कि सरकार की कमी आ, क्या बोली सकने जी।
1: चलिए कबल्ले तो कुछ न सकते हैं, पर फिर भी तो है बड़ा अच्छा अच्छा एक मैसेज के सो कन्वे करो जी, बड़ा अच्छा मैसेज के सो कन्वे करो आप।
0: बेसिकली सर ये असें ए रहा हूं बिलोंग कर दें ता इस पर ये डाला जी स्थिति ठीक करी थी रास जो खुशी है ना जी।
1: हां बिल्कुल खुशी है जी।
0: तो सर इस तरीके जाने टूरिस्ट ए फिर करी इन दिया ता कंप्लेंट आ कर दे रास तो बुरा लगता है जी कि भाई साहब त्रिवण त्रिवण तो आप बहुत कहते हैं लेकिन वहां है क्या, गवर्नमेंट की तरफ से आप पैसे भी ले रहे हो दे क्या रहे हो आप यार हमें वो।
1: बिल्कुल
0: दुख
1: बंदा बिल्कुल, और ये मतलब बड़ी नॉर्मल दी फैसिलिटी है जो कि तो है वॉशरूम की गल करे है ना कि बाथरूम वगैरह के ना सो बुना चिन देन त्रिवंड में है ना। ये बड़ी अच्छी गुहारत होंगी सरकार और प्रशासन सोगी, मे बी रेडियो रे जरिए या फिर वीडियो रे जरिए अगर तुंदी आवाज़ पुछदे आ तो शायद इतनी पर भी काम किए सो पूछे सका है ना। बिल्कुल काफी ज्यादा उम्मीद अब जो एक खबर लाई है कि मैक्लोडगंज रे होटल पूरा पैक थी है त्रिवंड के आसो पूरा मतलब बड़ा सैलाब तो तड़ी है ना पर्यटक बड़ा सैलाब थो, और दो दिन सैटरडे संडे था काफी ज्यादा मतलब ठीक ठाक ही बुक थो पूरा ठीक बलून दिन तो है सो ट्रैफिक जाम भी बुना सो करखन करखा ढील नजर किया सो इच्छु कर दे थे है ना। चलिए जी तुंदे मैसेज किया कोई भी पुलिस कर्मी इन दे बड़े इस कार्यक्रम जो होंदे हैं डीसी ऑफिस थों भी होंदे हैं इस कार्यक्रम जो ता ए तुंदा मैसेज तड़ी ते कन्वे की असो बुझेगो हा, और कुछ इति अंदर अगर एक्शन बुंदा ता फिर ये तुंदी बदौलत बुना की आम जनता अपील करो कर दी थी और दी पर एक्शन बुआ है ना।
0: ओके थैंक यू सर, थैंक यू।
1: ठीक है जी,
0: मेरे मित्र कोई सुनील भाई रा कोई गीत तो सुनाई दिन
1: तर बिल्कुल जी राणा साहब रा गीत है जरूर होने ले। ठीक है जी, ओके थैंक यू सो मच जी, नमस्ते।
0: अरे गद्दी भाषा अंदर कोई गलती हो जाएगी तो
1: अरे सर कमाल है, मतलब लगो ना करता मुझे कि तो है गद्दी नहीं वाकई में, इवन की ये कमेंट के जरिए भी इसको पता लगना फेसबुक के माध्यम तो भी की वाकई में ना लगो ना कि तो है गद्दी नहीं, मतलब मुझे एक सेकंड वास्ते भी फील ना कि मतलब तो है गद्दी नहीं इतनी इतनी ताऊ तुसु दसना चाहता कि जो इंदे अपने गद्दी रे न्यू जनरेशन है तिन्यो इतनी प्रॉपर नहीं इंदे इतनी बढ़िया तो है गद्दी भाषा अपने गद्दी बोले की सो बल्ले है।
0: ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर,
1: थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो, और कार्यक्रम मिंदी अपनी गप्पा कैंड श्रोतों से चल रही हैं ता तो सब बाखूबी ऐसो के जुड़ो भी करते हैं श्रोतों, और अपना पसंदीदा गीत किया सो होने भी सकते हैं, और वाकई में इन्हें जो गल बल्ले है जी मैं खबर लाए श्रोतों ते एकदम कॉल करे और दसो कि अगर त्रिवंड गाने वैके ने सो चार्जेस सरकार या प्रशासन के सो लेव करता हा तस हिसाब रही नॉर्मल दी फैसिलिटी के ना सो त्रियुण में किया सो सरकार अपनी औरतों या प्रशासन अपनी औरतों के सो दे भी सकता है। यह एक अच्छा संदेश के सो दिता दुआ इं बलो कि ट्रैफिक अरे व्यवस्था किया सो बिल्कुल भी तस प्रकार होगी व्यवस्थित ना थे। हाँ वाकई में इना ना थे माओ तुसू यारा कोइंसिडेंस हुणनु आ कि ही मेरी अपनी बाइक मिंजो के कोइंसिडेंस हुआ है कि जो योल रे निवासिन सो तो सब जान दे उन्हें किया है जहने मेन योल थों कि सो ऊपरारी किनारी चढ़ दिन स्लेड गोदाम नोडरानी मंदिर री किनारी के तस रोड़ा मंजा है चढ़ दहीन तड़ियों थोड़ी करी ऊपर खिंच कर तो है रू बना कि अक राइट हैंड साइड किया सो रेड़ी लग रही बंदे तड़ी वेड़ी मामा यानी कि मेन रोड थों ज़्यादा ना तो कोई 50-60 कदम तो मैं ऊपर लो रहे थे सो बाइक तस रोड़ा मन जाना तत्थों ज़्यादा ही पुछ सकता है तो तड़ी बाइक लो रहे थे तो जनाब इनके प्रशासन रहे बड़े होनहार हिन वो हमेशा बलनो बड़े टैलेंटेड हिन तिया टैलेंट रही कोई कमी नहीं तिजो सो मेन रोड में इतनी गड्डी खड़ रही थी सो ना तिजो हुजी कजो कि सो बजारी थी है ना और मेरे अननोन बाइक थी सो तिजा लियो तो ऊपर खिंच करी तिजा कि सो चलान करी था है ना चलान 500-1000 रहा जो भी हा सो तो नो इशू चलो है अपनी औरतों की सो जरूर दिल है कजो क्या है असू पता क्या है रूल रेगुलेशन ही सीख दे हिन है ना सभी पहले तो और है ना बल्कि जिंदगी में कि सो सब तो पहले रूल और रेगुलेशन की सो मायने रख दे हर इंसान वास्ते है ना तो मतलब ऐसा नहीं कि प्रशासन सो सिर्फ तिहारी चोर जो थी है तिहारी गलती है या ठीक है तिन्हों लगो कि शायद इड़ी बाइक ना बुना चिंदे थी मेन बाजारों को ना ही नहीं है खड़ेरे शायद तिन्हों तिह लगो बुना तो ये अपनी अपनी सोच बंदे अपने अपने तकनीकी इस्तेमाल बंदा दिमाग करा है ना। लेकिन ये तो खुले करे बलनो कि भाई साहब जिसेरे चलते सेरे कोई गलती नहीं है मैं तथों बात तिजो होगी गलबात भी करी और मैं तिजो ये भी बोलूँ कि मुझे कोई इशू नहीं है 1000 रुपये चलाना 1200 चलाना मुझे कोई इशू नहीं है मुझे इशू ऐसा गला रहा कि जब मेन सड़क अंदर के ने सो इतनी ज़्यादा पार्किंग छो रहे हा और तो है दुकान अंदर बेखुरे हैं यहाँ रही जस दुकान अंदर सो बेखुरे थी तस दुकाना रही गड्डी की आ सो मेन बाजार अंदर लग रहे थी यहाँ चलान ना और कस की अननोन रहा चलान की सो तो है करी था मेलो आऊँ सिर्फ तुंदा धन्यवाद करना वाकई मैं आऊँ सो चूर पंच बोल साले थी आऊँ दुनिया लोगों मैं तिहारा धन्यवाद करूँ हाथ जोड़ कर कि धन्यवाद आ कि तू सो गड्डी ना हो जी मेन इतनी अंदर तो है मतलब 60-70 कदम ऊपर चले करेगी आ सो तह बाइक कर चलान के सो करी था तेरा हूँ धन्यवाद करना तू ये ना हो जो कि जहा दुकाना तो है बेकुर यार अपनी गड्डी की सो गलत लग रहे लेकिन तुम सो हो जी पीता हूँ धन्यवाद करना बस तो ये जनाब यह स्टोरी हुनाने रहे मेरा मकसद ये थो कि करप्शन की सो कभी भी हिंदुस्तान थों खिंची नहीं सकते हा आगे मामूली दे एग्जाम्पल में दिता दसो बड़ा कॉमन दे एग्जाम्पल है ना आऊँ ना मुंजो हियाँ हज़ारों ऐसे बूणन हज़ारों करोड़ों ऐसे बूणन जिन्या हो गए इस प्रकार रे माड़ी मोटी करप्शन के सो रोज़ाना बुंदे या इतों ज़्यादा करप्शन के सो बुंदे था करप्शन जो बंद करने वास्ते दिन प्रतिदिन बढ़ने आई थी बंद किया सोना कर सकते हैं मंत्री खरा बुला तो सिरे जो पचीन किन सोना खरे बुने हैं MLA खरा बुला तो सिरे हगूँ पचीन के कहन सो खरे ने बुने हैं SP खरा बुला तो सिरे हगूँ पचीन के कहन सो खरे ने बुना तो ये जो पचिंकरी टोले की है ना ये मतलब है इंसान की आ सो ना है कर सकते हैं पचिंका भी टोले की सो खराब बंदे बंदे है ना। चलिए जी तो मेन मुद्दा ये तो कि भाई साहब हिरदे हिरदे भी करप्शन की सो बुझू कर दे हा और आऊँ चाहता था तड़ी बड़ा कुछ कर सकता थो बहुत कुछ तड़ी बुझ सकता थो लेकिन मैं बहुत कुछ सोच समझ करे है ना बल देना कि गुस्सा जहने इंदा ना तो तहने एकदम रिएक्ट करना कि सो जरूरी ना बुंदा या एकदम कस की पट करे करे जवाब देना क्या सो भी जरूरी ना बुंदा हा गुस्सा हिंदा था अपने आप जो कि सो शांत रखा अपने आप जो समझ नहीं रखी सो टाइम दिया बुझ सकता तो तहने आऊँ कुछ करी दा था सो गल और बद कि सो बड़ी बद गंदी है ना अपने आप जो शांत रखो जो थो विनम्रता होगी अपने दिलारी गल की सो तिया होगी भले भी दिती मैं तिया थोड़ा एहसास भी कराई था कि भाई साहब तो है गलत इन आऊँ गलत नहीं है ना एहसास कराना भी जरूरी है, लेकिन कस तरीके होगी कस की हो एहसास कराना है, सो मेन पॉइंट है। तो चलिए जी, कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रही ना, और कार्यक्रम में अबे बिल्कुल बिल्कुल गीतारा पिटारा गया, सो फरमाइशरा पिटारा इवन की खोल दे चल दे।

0: শোধ এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর ভেড়ি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যা সব ইয়ে টিউন কর রো আর কার্যক্রম লেকে রে আউ সচিন কাপুর হাজির হুয়া ইন্দি আপনি গপ্পা তো চলিয়ে কার্যক্রম জো আগো বড়েন শোতো আর আগলি জানকারি তো সো গিয়া হ্যা বহুত সাঝা করি লেকিন আক প্যারি দে কিয়া সো কাহানি সাঝা কর দেন শোতো আক সাধু থিয়ে जिन्हें कि मोक्ष प्राप्त करी लियो थो और सो साधना माँ बहुत ज़्यादा लीन थी है इतने ज़्यादा कि त्यारी परमात्मा हो गई किया सो रूह इतनी मिली को छोरे थी कि तिन्यो बस ये लगता था कि परमात्मा हो गई किया सो मेरा मिलाप किया सो भूने आ रहा और मिलने आ रहा परमात्मा सो के त्यारा जिंदगी रा का सिद्धांत हो असूल तो आके जिंदगी रा शो तो कि सो कदी भी भिक्षा की या सो मंग देना थी है जो मुड़ेगा अच्छा सो ठीक है ये सो अग दिन श्रोतों बाजार जो किया सो टहल दे किया सो बाजार री किनारी चले गए और जो भी तीनों दिन दा थू श्रोतों सो ग्रहण करी लेंदे थी है ले लेंदे थी है ना लेकिन सिद्धांत है तो कि मंग देना थी है अब तैयारी इच्छा बोए अग दिन की आऊँ किया सो जलेबी खाऊं इच्छा जागी पे अंदर होता हूँ है ना लेकिन सो जो जलेबी हड़ा तो सो जलेबी दिच्छू ना करता तो और यारा सिद्धांत हो जिंदगी रा असूल तो जिंदगी रा के मंगना नहीं है ना अक दिन भुआ सो दिन में तो साधु मन मारी करके सो चलिया दूए दिन फिरी भुआ दूए दिन फिरी बाजार किनारे गए त्यारी इच्छा फिरी भोई कि मुझे पूछा लेकिन सो जलेबी जहने तड़ू कर दी थी जहने सो बणू कर दी थी श्रोतों जहने सो कड्डू कर दा सो चासनी था बड़ी इच्छा बुच्चू कर दी थी साधु रोई लेकिन सो मंगे ना सकता थो असूल थो जिंदगी रा मंगना नहीं आ कोई अपनी इच्छा थो दे दिया था ठीक आ फिर सो चले आए कुटिया माँ ध्यान लगे करना अब ध्यान लगे करना श्रोतों तो ध्यान जी हाँ लगे सो परमात्मा रा करना था सो करखना करखा जलेबी किया सो थोड़ा करे ध्यान भटकाना लगे अक दिन बुआ दुए दिन बुआ त्रिये दिन फिरी बाजार हो गया था फिरी सोई सो हलवाई पुछो ना करता तो कि तुसु लैने जलेबी कि ना लैने हाँ या दिच्छू ना करता तो अपनी औरतों तो ये इच्छाएं क्या ना सो फिरी जो कुछ साधु थी तो इच्छा हमारे लिए और चली गए लेकिन जहने परमात्मा रा ध्यान लगे करना था तहने फिरी सो जलेबी चली गया सामने चौथे दिन फिर ऐसा हुआ है ना फिर एट लास्ट क्या हुआ कि साधु सोचो कि हम जलेबी खाई लेनू हाँ और साधु है मंगदा तो ना थो कजो कि जिंदगी रसूल थो कि मंगना तो नहीं है सिद्धांत थो कि मंगना तो नहीं है भाई तो क्या करो कि इन्हें दिहाड़ी की आसो लाना शुरू करे बोलो आके दिहाड़ी लाई लेंदा तू उन्हें तो चली इन्हीं जलेबी है ना मजे हो गए इन्हें दिहाड़ी लाई और मन में इतना ज़्यादा उफान तो तहा जलेबी जो लेकर इतना ज़्यादा मतलब खुशी थी तहा जलेबी जो लेकर तहा चाशनी जो लेकर कि पूरा दिन दिहाड़ी लाने तो बाद किया सुसाधु है सुसाधु जो सीधा परमात्मा सो के किया सो मिलाप करने आड़े थी है तिन्या साधु है किया श्रोतों सो हाथ बिना धोए पैर बिना धोए और सीधा जलेबी लेना किया सो चले गए जलेबी ले और जलेबी रा जोड़ा भरो और करखा साइडा मा किया सो नदी किनारे की सो घिची बैख है जी नदी किनारे घिची बैख है जी तीन जलेबी रा टुकड़ा किया सो चुको और जी मुँह मंज पाना किया सो शुरू करूँ तिया ही तीनों ध्यान कुछ अजीब ध्यान किया सो बुआ और तीन तीन सो जलेबी की सो फेंकी थी दुआ टुकड़ा चुकू सो भी फेंकी थी नदी किनारे त्रिया चुक्कू सो भी फेंकी थी चौथा चुक्कू सो भी फेंकी थी पंचमा चुक्कू सो भी फेंकी थी तीन करते करते एक लास्ट टुकड़ा बचो और सिर्फ नवाला गाने आड़ा तो मुँह अंदर लेकिन तीन साधु किया तीन साधु किया सो भी फेंकी थी और जी सो फेंके श्रोता होती है भगवान रे दर्शन बुआ और भगवान ने बोलो कि हाँ वे तेरा सिर्फ और सिर्फ किया सो टेस्ट ले करता थो तेरी परीक्षा किया सो ले करता थो और तू यह परीक्षा माँ किया सो पास हुआ हा ते अपने अपना मोह के सो तई छड़ी दिता हा अपनी इच्छाएं के अनुसार ते इतनी मतलब छड़ी दीती हैं तो जो मोक्ष के सो प्राप्त हुआ है वह सो श्रोतों इंसान भी कुछ इस प्रकार के कठपुतले हा कि इच्छाएं किया सो इंसान में बहुत बूंदी ने उम्मीदा के सो इंसान में बहुत बूंदी ने दुई थों चूर री चूर थों आठ री आठ थों बारह री बारह थों सोलह थों बी री इच्छाएं के ना सो बढ़ती रहती ने है ना इच्छा के सो हमेशा इंसान री के सो बढ़ती रहती ने फलाना मुंजो होगी ये करी करा फलाना ये करी करा इच्छाएं अंदरों बढ़ती रहती श्रोतों अज गड्डी तो दत्ते अज अगर बाइक तो दत्ते कि सो गड्डी भोआ गड्डी हा तो फिर और मोटी गड्डी भोआ इच्छाएं इंसान जो किया सो शांत ना रहना दिन दिन यह गल्ला जो हमेशा याद रखें श्रोतों कि इच्छाएं क्या ना सो इंसान जो शांत ना रहना दिन दिन सो प्रत्येक दिन क्या ना सो बढ़ती हिन और मन मंज किया सो अशांति लेकर इंदी हिन तो सो सुकून ना मोलना सो मेरी गल हमेशा इस नाचीज आरजे सचिन कपूर री गल हमेशा याद रखे श्रोतों की मन रे शांति किया सो सब थो मोटा सुख बोला जिंदगी में करोड़ों खरबों भी है रुए नश्रोतों कि सो भी बेचैन के ने सो रेंदे ने दिल के सो दुख दा रेंदा हा असली शांति मन हरी शांति हा तो चलिए श्रोतों कार्यक्रम जो हगो बढ़ंदे हैं और कार्यक्रम मंच इन अगले श्रोता सो गए कनेक्टेड हैं पुछ दिन कुण वल्लू दिन और कड़ी तों वल्लू दिन नमस्ते जी हाँ जी नमस्ते जी
1: ठीक ठाक
0: बहुत बढ़िया जी कौन बोलूं देन और कड़ी थों बोलूं देन
1: अच्छा जी आप किसने बोलूं दास में बुदाम
0: थों अच्छा जी किशन जी ठीक ठाक बढ़िया जी बढ़िया और नोएता जी
1: कोई नहीं सब परानी है
0: शो तो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर तो है सब भी है वेड़ी गुंजन धर्मशाला ट्यून कर रो राउंड सचिन कपूर आसोगे इन द श्रोता के इनसो जुड़ रहे हैं और चलिए जी तो सो की गप बच्चू कर देती तो है किशन जी हिन स्लेड गोदाम तो है ना जी
1: जी जी
0: किशन जी क्या खूबसूरत है स्लेड गोदाम रे कुछ पंचायत बढ़ने थो बाद कुछ डेवलप भोया तड़ी डेवलपमेंट भोया कुछ एक चीज़ा बदली ने या फिर एज इट इज या अच्छा जी आती है अच्छा
1: जी
0: ता क्या उम्मीद हैं तुसो जितने भी प्रतिनिधि नोए बने तिन्या थों क्या उम्मीद हैं क्या वरंदे ने अपने दिल अंदर जग्या सके क्या क्या बोवा तुंदे पंचायत में कजो कि आज़ादी थों बाद 1947 थों बाद की सो पहली बार योल ठीक है जतैड सिलेड गोदाम की सो पंचायत बनिया क्या उम्मीद हैं हां
1: जी ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿਸ਼ਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸੋ ਕੁੱਲਾ ਕੁੱਲਾ ਬਸ ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ
0: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਸੰਜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ
0: ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਜੀ
0: ਚਲੀ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ
1: ਇਹਦੇ ਰੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਜੀ ਕਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਾ ਗਰਾ ਕੋਰਾ ਦਾ ਸਾਗਾ ਮੋ ਚੋਪੜਾ ਪਰੇ ਖੜਾਵਾ
0: ਜੀ
1: ਮੈਂ ਦਸ ਬੱਲੂ ਤੇ ਦਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਨਾ
0: ਜੀ
1: थोड़ी बहुत खाली ब्लॉक में जी
0: हाँ बिल्कुल ये आर्मी एरिया थो इंदे थे कुल मुझे अल्ले भी याद है
1: बिलकुल
0: पूरे धर्मशाला में ऐसा की जड़ी भी कुल्ला बख है या फिर खड्डा बख है जियारे भी घर ने तिया कुछ इस प्रकार रही की सो जिज्ञासा अपनी मन में जगा रही है की सीधा सो खड्डा या कुल्ला अंदर की सो अपना बाथरूम रा पानी और किचन रा पानी किया सो फेरी दिन दिन सीधा भाई गच्छा
1: ये ना सचिन जी मन लीजिए कि अब मेरा घर खुला थल्ले है ना
0: जी
1: ਸਦੀਆਂ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਘੜੀ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਖੁੱਲਾ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਪਰੀ ਟਾਇਲਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨਾ
0: ਦਿੱਕਤ
1: ਕਿਆ ਨੇ ਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਜਿਸ ਤੀਆਂ ਬਲੀ ਨਾ
0: ਜੀ
1: ਸੱਸੋ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਰਹੇ ਕੁੱਲ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦਮ ਕੇ ਨਾ ਸੋ ਜਿਤਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ ਨਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਸੋ ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਹਨ ਚਾਹੇ ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਤੀਆਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਆ ਸੋ ਪੁਜਾਈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਤੀਆਂ ਜੋ ਤੋਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਕਰੀ ਕਿ ਸੋ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਿਆ ਸੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਸੀ ਉਮੀਦ ਕਿਆ ਸੋ ਹੈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਔਰ ਤਥੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਨਾ ਬੁੰਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇ ਸਮਾਧਾਨ ਤਾਂ ਤਥੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੂ ਉਹ ਕੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵੇੜੀ ਗੁੰਜਨ ਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣੀ ਕਰੀ ਕਿ ਸੋ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਏ ਤੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ
1: ਜੀ
0: ਜੀ
1: ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਘੁਸਣਗਾ
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੀਤਾ ਔਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਨੋ ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚ ਬਣੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਸੋ ਇਸ ਮਾਮੂਲੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਨਮਸਤੇ
1: ਵੈਲਕਮ ਜੀ
0: ਚਲੀ ਸ਼ਤੋ ਤਾਂ ਅਬੇ ਤੁਸੂ ਸਭੀ ਥੋ ਸਚਿਨ ਕਪੂਰ ਲੈ ਲੈਨੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛ ਗਏ ਸ਼ੋਤੋਂ ਤੁਸੂ ਸਭੀ ਥੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਰਹਿ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁਲਦਾ ਹਾਂ ਸੋ 6 ਵਜੇ ਮੁਲਦਾ ਸ਼ੋਤੋਂ ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਛਾਏ ਕਹਿਣ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਬੜੀ ਮਾਰਦੀ ਲਈ ਸੋ ਇੱਛਾਏ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ ਔਰ ਉਮੀਦਾਂ ਕਹਿਣ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰੀ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਸਭੀਓ ਮੋਟੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਖੁਸ਼ ਬੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੋ ਇੱਥੋਂ ਮੋਟੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਸੋ ਹਮ ਸਚਿਨ ਕਪੂਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਰ ਜੇ ਸਚਿਨ ਕਪੂਰ ਜੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਪੁੱਛੂ ਕਰ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਕੇ ਸੋ ਦਿਆ ਸ਼ੋਤੋਂ ਆਰ ਜੇ ਸਚਿਨ ਕਪੂਰ ਕਰੀ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਂ ਸ਼ੋਤੋਂ ਔਰ ਸਚਿਨ ਕਪੂਰ ਕਰੀ ਕਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਾ ਨਮਸਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ

नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। रजोल धनोटू सड़क 6 से 16 अक्टूबर तक रहेगी बंद। पाइप कलवर्ट एवं सीसी पेमेंट निर्माण कार्य के चलते वाहनों की आवाजाही पर रहेगी रोक। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र खनियारा में एक वर्षीय LLM पाठ्यक्रम शुरू। पाठ्यक्रम में 30 गैर सब्सिडाइज सीटें उपलब्ध, मेरिट के आधार प्रवेश। बेसहारा मानसिक रोगियों की मदद करेगा विधिक सेवा प्राधिकरण। 7 से 9 अक्टूबर से चलेगा विशेष अभियान। ज्वालामुखी रोहाड़ू सड़क का एक हिस्सा 6 से 16 अक्टूबर तक रहेगा बंद। सड़क कार्य के चलते वाहनों की आवाजाही वैकल्पिक मार्ग से होगी। अब समाचार विस्तार से।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा द्वारा मानसिक बीमारी के कारण भटक रहे बेसहारा लोगों की सहायता के लिए 7 से 9 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। ये जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आर्मेहुल शर्मा ने दी। उनका कहना है कि अभियान का उद्देश्य समाज के संवेदनशील एवं वंचित वर्ग के लोगों को समयबद्ध मानवीय एवं उचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के साथ साथ उनके अधिकारों, गरिमा और कल्याण की रक्षा सुनिश्चित करना है। विशेष अभियान के दौरान जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों के समन्वय से ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। अभियान में पैरालीगल वॉलंटियर भी सक्रिय रूप से सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि चिन्हित व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करवाने के साथ आवश्यक उपचार तथा जरूरत के अनुसार उपयुक्त मनोचिकित्सीय संस्थान में भर्ती करवाने की व्यवस्था की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय खनियारा के निदेशक कुलदीप कुमार जी ने ये जानकारी दी कि एचपीयू क्षेत्रीय केंद्र मोहली खनियारा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एक वर्षीय एलएलएम पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में 30 गैर सब्सिडाइज सीटें उपलब्ध हैं, जिन पर प्रवेश मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र 21 अक्टूबर तक एचपीयू क्षेत्रीय केंद्र मोहली खनियारा में जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र का शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 1500 रूपए और SC/ST/PWD वर्ग के लिए 900 रूपए निर्धारित किया गया है। शुल्क निदेशक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला के नाम से डिमांड ड्राफ्ट या IPO के माध्यम से जमा करवाना होगा। जिला दंड अधिकारी कांगड़ा हेमराज वैरवा ने सड़क निर्माण कार्य के चलते रजोल से धनोटू तक सड़क के एक हिस्से को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि रजोल से धनोटू सड़क का एक हिस्सा 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 तक बंद रहेगा। इस दौरान पाइप कलवर्ट तथा सीसी पेमेंट का निर्माण कार्य किया जाएगा। रजोल गांव राष्ट्रीय राजमार्ग 154 में से पहले से जुड़ा हुआ है, इसलिए रजोल के लिए अलग से यातायात डायवर्जन की आवश्यकता नहीं होगी। जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 115 के तहत जारी किया है। हालांकि एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन तथा अन्य आपातकालीन वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज वैरवा ने सड़क निर्माण कार्यों के चलते ज्वालामुखी रुहाड़ा सड़क के एक हिस्से को सड़क कार्य के चलते अस्थायी रूप से बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि ये मार्ग 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा, ताकि सड़क का कार्य सुरक्षित एवं सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। इस दौरान सड़क कार्य के लिए सिहारपाई से जजवार तक कटिंग एवं अन्य निर्माण कार्य किए जाएंगे। इस दौरान वाहनों की आवाजाही के लिए अधेदी हट्टी, अदवानी, बलारडू, चंबापत्तन वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है। वाहन चालक इस अवधि में उक्त वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। इस दौरान एम्बुलेंस तथा अन्य आपातकालीन वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश में फरवरी 2027 से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की शुरुआत हो सकती है। सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के धबोटा में ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। ये परियोजना राज्य के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। परियोजना के लिए लगभग 4000 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध करवाई गई है। वहीं ऊना में करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन अमोनिया परियोजना का प्रस्ताव है। इसके लिए जमीन और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं पर भी काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के 6 शहरों में अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट बनाए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग की ओर से इस योजना को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। योजना के तहत सड़कों को बार बार खोदने के बजाय बिजली, पानी, सीवरेज और दूसरी यूटिलिटी सेवाओं की लाइनों को जमीन के नीचे बनाए जाने वाले व्यवस्थित डक्ट में डाला जाएगा। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग इस दिशा में आगामी कदम उठाएगा। प्रारंभिक चरण में प्रदेश के 6 शहरों को इस योजना में शामिल किया गया है।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले स्वच्छता कर्मियों के बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने सभी राजकीय तथा निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों तथा मुख्याध्यापकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से पात्र विद्यार्थियों की सूची स्कूलों को भेजी गई है। स्कूलों को सूची में शामिल विद्यार्थियों को विवरण का सत्यापन करना होगा। 31 अक्टूबर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। भारत में 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट बनाने की प्रस्तावित योजना के लिए घरेलू कंपनी यूप्लेक्स ने अमेरिका की स्पेक्ट्रा सिस्टम्स के साथ साझेदारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक इन नोटों के लिए प्लास्टिक सामग्री तैयार करने वाले संभावित आपूर्तिकर्ताओं का मूल्यांकन कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने 10 और 20 रुपए के नोटों के लिए प्लास्टिक फिल्म की जरूरत को लेकर निविदा जारी की है। इन नोटों के लिए लगभग 68,000 रीम विशेष प्लास्टिक फिल्म की आवश्यकता होगी। इस फिल्म पर छपाई और स्याही की पकड़ मजबूत बनाने के लिए विशेष कोटिंग की जरूरत रहेगी। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और एक कार्यक्रम लेकर मैं सचिन कपूर हाजिर हुआ हूँ, गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए जी आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी हमारे साथ इस सुर की ट्रेन में जो है वो बैठे हुए हैं, और ये सुरों की ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हम सफर की तरह इसमें यूं ही आनंद लेते रहिए गीतों का।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं नाचीज सचिन कपूर हूँ। कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने को होस्ट कर रहा हूँ और ये प्यारे प्यारे से नगमे आपके बीच आपकी उस ट्रेन में रख रहा हूँ। आइए इसी के साथ लेके चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर।

0: Thank you. Thank you very much.
1: आप सभी बने हुए हैं इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ यूं ही बने रहिएगा और हम इसी तरह से आपके दिल को खुश करने की गीतों की ये डोर यूं ही चलती चलेगी श्रोताओं जब तक आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का आनंद आप सभी ले रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर।

रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम 91.2 एफएम पर सुन रहे हैं। बिल्कुल नाम है कार्यक्रम का गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए इसी तरह से आनंद लेते चलते हैं नए पुराने गीतों का और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा एक और गीत। ये नगमे यूं ही चलते रहेंगे, ये ट्रेन यूं ही चलती रहेगी, आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

आप सभी बने हुए हैं इस समय आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, ये कार्यक्रम यूं ही महकता रहेगा आपके घर पर, आपकी गाड़ियों में, आपके खेतों में और जहां जहां भी आप सभी ने इस समय 91.2 FM ट्यून किया है, वहां वहां ये कार्यक्रम की गूंज यूं ही गूंजती रहेगी।

0: समोसा मिलेगा।
1: सटअप कर जाओ।
2: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
3: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार।
2: पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
3: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
2: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
4: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार।

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे
1: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे तुम भी। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
2: ये लो भैया पानी।
1: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है
3: भैया? अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
5: आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी।
4: जल है तो कल है।

0: ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
6: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
2: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन?
7: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
0: मोहित मेरा इस्तीफा।
1: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
0: सॉरी यार,
1: काम कीजिए आप लोग अपना।
7: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
8: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।
9: बोला था ना तुझे, ये क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तू सिलेक्शन के लिए चला गया।
10: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
11: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
9: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता,
11: पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।
12: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
9: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
12: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
13: हेलो मम्मी, वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
14: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया, अरे एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
13: सॉरी बेबी।
14: क्या सॉरी यार, कमाल है। एक काम करो, ये लो मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए। 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तभी दोनों के लिए चल रही है ना। अगर ना तो

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेणी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ RJ सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। होप सो आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे। मैं अक्सर कहता हूँ खुश रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो खुश होंगे आप और तंदुरुस्त होंगे, है ना जी। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आप सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूँ। 8 बजे तक आप मेरे साथ रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे और बहुत सी जानकारियाँ हमारे साथ रहेंगी, और साथ ही साथ गीत संगीत का पिटारा जो है वो भी हमारे साथ रहेगा श्रोताओं। तो कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला को जो है वो हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। एक कार्यक्रम हमें आपको बहुत सारी जानकारियों के साथ रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले धर्मशाला के मौसम के साथ जो है वो आपको रूबरू करवा लेते हैं। इस समय श्रोताओं 18 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान बना हुआ है, इसके आसपास जो है वो इस समय धर्मशाला का क्लाइमेट बना हुआ है श्रोताओं। और बात करूँ मैं अगर नमी की श्रोताओं, जिसको अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कहा जाता है, वो लगभग 65 से 70 के आसपास जो है वो इस समय बनी हुई है श्रोताओं। और चलिए, ये है मौसम की जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई है, यह है धर्मशाला का मौसम। तो आइए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, और आगाज़ देखिए ज़रूर होना चाहिए, आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ।

क्या बात है शोतो, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत ही प्यारा सा ये गीत है। हम सभी ने सुना, आप सभी सुन रहे हैं समय 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेणी गुंजन धर्मशाला। बहुत सी जानकारियाँ जो हम आप तक पहुँचाएंगे श्रोताओं, साथ ही साथ जिस प्रकार से कार्यक्रम का श्रोताओं एक क्राइटेरिया रहता है, उस क्राइटेरिया को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले धर्मशाला का मौसम, उसके बाद विचार, और फिर उसके बाद जो है वो जानकारियाँ आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। कहते हैं मन की शांति सबसे महंगा गहना है, इसे संभाल कर रखें, शिकायतें कम और कम शिकायतें जो है वो कम करें श्रोतों, और यही खुशी का सरल सूत्र है श्रोतों। यदि आप सफलता की तलाश में हैं तो असफलताओं से डरना बंद कर दें। संघर्ष से टकराकर प्राप्त की गई सफलताएं जो है वो स्वाभिमान पैदा करती हैं, अभिमान नहीं। इसी प्रकार से श्रोतों कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और लेकर चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा आज सचिन कपूर के साथ गूंज अपने बन की।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं। अपने अपने रेडियो सेट पर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है एक बार फिर से सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। हाई श्रोतों कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और जी बिल्कुल नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कुछ जानकारी है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। श्रोतम, कांगड़ा पुलिस की CIA टीम ने जो है वो पालमपुर में एक होटल में दबिश देकर 7.52 ग्राम चिट्टे के साथ जो है वो एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। श्रोतम, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बरामद चिट्टे के अलावा एक होड़ अमीज कर जो है श्रोतों वो कब्जे में ले लिया। श्रोतों, मामला जो है वो पुलिस थाना पालमपुर में है, NDPS अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। श्रोतों, मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की देर रात CIA टीम को जो है वो गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर पालमपुर के लोहना स्थित PCCN चौक के पास जो है वो श्रोतों चौक के समीप एक होटल में दबिश दी गई। श्रोतों, होटल के एक कमरे में 4 पुरुष और 1 महिला मौजूद थे। श्रोतों, तलाशी के दौरान हरियाणा के सिरसा जिले के 32 वर्षीय दविंदर सिंह और उनसे जो है वो 7.52 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। श्रोतों, पूछताछ और छानबीन के दौरान पुलिस ने कमरे में मौजूद अन्य लोगों की भूमिका भी जो है वो संदिग्ध पाई। इसके बाद CIA टीम ने 5 को गिरफ्तार कर लिया। श्रोतों, गिरफ्तार आरोपी में जो है वो दीपिंदर सिंह के अलावा पालमपुर क्षेत्र के आदित्य पठानिया 24 वर्षीय और कबीर 23 वर्षीय और साथ ही साथ एक और श्रोतों प्रांशुल कपूर 24 वर्षीय और मंडी ज़िला के 27 वर्षीय ममता शामिल है। श्रोतों, पुलिस ने आरोपियों से जुड़े वाहन को भी जो है वो कब्जे में ले लिया। श्रोतों, अब जांच में ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी चिट्टा कहां से लेकर आए थे और नशे की आपूर्ति के पीछे कौन लोग जुड़े हैं। उधर पुलिस अधीक्षक कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा, लेकिन चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर।

श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। आई श्रोतों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी आप तक साझा करते हैं। हिमाचल को मिलेगा श्रोतों 237 करोड़। जी बिल्कुल, हिमाचल को राष्ट्रीय कैंप प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के तहत केंद्र ने 237.6 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है श्रोतों। चालू वित्तीय वर्ष के लिए ये राशि प्रदेश को मिली है श्रोतों। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को 288.70 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना भेजी गई थी, लिहाजा राशि की मंजूरी केंद्र सरकार की ओर से दी गई है श्रोतों। मंजूर राशि से जो है वो प्रदेश के अलग अलग वन क्षेत्रों में पौधारोपण, जंगलों की सुविधा, मिट्टी और नमी संरक्षण सहित अन्य आवश्यक कार्य किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार कैंप के तहत तैयार कार्य योजना में जो है श्रोताओं वो क्षतिपूर्क वनीकरण, पौधारोपण और एकीकृत जलगाम प्रबंधन कार्यक्रम और अन्य कार्य जो हैं वो शामिल हैं श्रोताओं। इन मुद्दों के लिए कुल लगभग 90 करोड़ रुपए जो है वो प्रस्तावित किए गए थे श्रोतों। राष्ट्रीय कैंप ने इनमें से 73.40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं श्रोतों। वन क्षेत्र में नए पौधे लगाने और कृत्रिम पुनर्जन के लिए जो है वो प्रस्तावित 26.72 करोड़ रुपए जो हैं वो श्रोतों दिए हैं। अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाएंगे, आप बने रहिएगा वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, गूंज अपने पन की।

शोधो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ सचिन कपूर। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय खनियारा के निदेशक कुलदीप कुमार ने जानकारी दी है कि HPU क्षेत्र केंद्र मोहाली खनियारा के शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एक वर्ष LLM पाठ्यक्रम जो है वो शुरू किया जा रहा है। श्रोतों LLM पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। इस पाठ्यक्रम में 30 गैर सब्साइड सीटें जो हैं श्रोतों वो उपलब्ध हैं, है ना जी। जिन पर प्रवेश मेरिट के आधार पर जो है वो किया जाएगा। श्रोतों इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी जो है वो अपना आवेदन पत्र जो है वो 21 अक्टूबर तक HPU क्षेत्र केंद्र मोहाली खनियारा में जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र का शुल्क सामान्य वर्ग के लिए जो है वो 1500 रुपये है और SC ST और SC और ST के वर्ग के लिए जो है वो 900 रुपये निर्धारित किया गया है। शुल्क निर्देशक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्र केंद्र धर्मशाला के नाम से डिमांड ड्राफ्ट या IPO के माध्यम से जो है वो जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त विषय में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वेबसाइट https://hpunivi.ac.in तथा क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट https://hpunivi.ac.in यूनिवर्सिटी डिटेल्स होम HPH विजनल सेंटर से जो है वो दिशा निर्देश पढ़ने के उपरांत प्रवेश हेतु फॉर्म जो है वो आप भर सकते हैं, फार्म भरकर उनके कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। श्रोतों अगली जानकारियां आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे, बने रहिएगा वेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, गूंज अपने बन।

శ్రోతో ఎఫ్ఎం బ్యాండ్ ఇక్యాను దిశంలో బదో మీ గెహిట్స్ పర్ రెడీ గురించి అంతరంశాల तो बाखूबी आपने ट्यून किया हुआ है। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को अगली जानकारी की ओर। जिला दंड अधिकारी कांगड़ा हेमराज भैरवा ने सड़क निर्माण कार्य के चलते ज्वालामुखी ये जानकारी भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे ज्वालामुखी वाली, लेकिन उससे पहले मैं ये जानकारी ज़रूर पहुंचाना चाहता हूँ श्रोताओं, क्योंकि ये भी सड़क निर्माण का कार्य है और ये वजोल का कार्य है, तो ये जानकारी पहले मैं

देखना चाहता हूँ। अब तक जिला दंड अधिकारी कांगड़ा हेमराज भैरवा ने सड़क निर्माण कार्य के चलते रजोल से धनोटू तक सड़क के एक हिस्से को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए जो है वो बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। श्रोतों, उन्होंने बताया कि वजोल से धनोटू सड़क का एक हिस्सा 6 अक्टूबर यानी कि कल जो है श्रोतों वो 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 तक जो है वो बंद रहेगा। श्रोतों, इस दौरान पाइप जो है वो कलवट तथा सीसी मतलब निर्माण कार्य जो है वो किया जा रहा है, है ना जी। कुछ एक पाइप्स का जो है वो निर्माण कार्य किए जा रहा है, इसलिए फिर वजोल गांव राष्ट्रीय राजमार्ग 155 से पहले से जुड़ा हुआ है जैसे कि हम सभी जानते हैं, इसलिए वजोल के लिए अलग से यातायात डाइवर्जन की आवश्यकता नहीं होगी। जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 188 की धारा 115 के तहत जारी किया है। श्रोतों, हालांकि एम्बुलेंस अग्निशमन वाहन तथा अन्य आपातकालीन वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। इन वाहनों को जो है श्रोतों वो मौके पर जो है वो परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह से जानकारियों का सिलसिला जो है वो ज़रूर चलता रहेगा। श्रोतों, आप सभी जुड़े हैं, बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया हुआ है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। जिला दंड अधिकारी कांगड़ा हेमराज भैरवा ने सड़क निर्माण कार्य के चलते ज्वालामुखी रोहाड़ा सड़क के लिए जो है वो एक हिस्से को सड़क कार्य के चलते जो है वो अस्थायी रूप से बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। श्रोतों, उन्होंने बताया कि ये मार्ग 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 तक वाहनों की आवाजाही के लिए जो है वो बंद रहेगा, ताकि सड़क का कार्य सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जो है वो पूरा किया जा सके। इस दौरान सड़क कार्य के लिए जो है श्रोताओं वो अन्य बिल्कुल अन्य विकल्प जो हैं वो भी रखे हुए हैं, और सड़क कार्य के लिए जो है श्रोताओं वो बेहतरीन कार्य के लिए जो है वो निर्माण कार्य किए जाएंगे श्रोतम, है ना जी। तो इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। आइए लेके चलेंगे आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहेगा, जुड़े रहेगा रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ, आपके अपने रेडियो सेट के साथ।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी की ओर लेके चलते हैं। श्रोतो, इंसानियत कर्म ही जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। जी बिल्कुल, सुलह क्षेत्र के अंतर्गत परोर स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में आयोजित दो दिवसीय सत्संग समागम के अंतिम दिन रविवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सत्संग के प्रवचन देते हुए हुजूर महाराज ने कहा कि इंसान की इंसानियत और उसके कर्म ही जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। जाति धर्म समुदाय कुछ नहीं है, केवल कर्म ही जीवन भर काम आते हैं। श्रोतों, परिवार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, संस्कार और कर्म सबसे जरूरी है। सत्संग के जरिए ही कर्मों का बोझ हल्का किया जा सकता है। शब्द के जरिए ही हम अपने भीतर छिपे अंधकार को जो है वो मिटाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हजूर महाराज ने कहा कि इस धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए 84 लाख जीव जो हैं वो तरसते हैं, लेकिन मालिक उसी को मनुष्य जीवन देता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। नाम शब्द को पाने के लिए मन के सारे दोष और मैल को धोकर गुरु का ध्यान करना आवश्यक है। अपने अपने महाराज, अपने अपने गुरु का, अपने अपने भगवान का ध्यान करना जो है वो आवश्यक है। श्रोतों, जब तक मन पवित्र नहीं होगा और स्वार्थी और स्वार्थ की भावना खत्म नहीं होगी, तब तक नाम शब्द को हासिल नहीं किया जा सकता है। श्रोतों, जी बिल्कुल, इंसानियत कर्म ही जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। आप सुन रहे हैं समय 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आरजे सचिन कपूर। अब से ठीक कुछ ही देर में जो है वो आप समाचार सुनेंगे आपके अपने रेडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें, जुड़े रहेगा आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ।

0: इनोवेशन जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी करेंगी। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास करती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पहमला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। नई दिल्ली में आज म्यूनिख सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के पर्यटन आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके कि ये बदलाव किसने किए। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन

मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। 2026 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में कार्ल डाइसरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया गया। तीनों वैज्ञानिकों को ऑप्टोजेनेटिक्स के जुड़ी खोजों के लिए यह सम्मान मिला है। इस तकनीक से प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय या बंद किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिकों को याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। स्टॉकहोम में करोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली ने आज इसकी घोषणा की। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में आज एडवांटेज भारत एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र विषय पर इंडिया गेम के 14वें संस्करण में सुश्री पटेल ने वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं के बीच पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप में कल तक बारिश की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश में अगले दो दिनों के दौरान तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये गूंज अपनेपन की श्रोताओं बिल्कुल रहनी चाहिए और ये गूंज अपनेपन की इसी प्रकार से जो है वो होनी चाहिए। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। आइए जी कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और ये जानकारियों का सिलसिला श्रोताओं यूँ ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूँ ही खुलता रहेगा। श्रोताओं प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में खनन गतिविधियों से सरकार के खजाने में लगातार जो है वो राजस्व पहुंच रहा है। श्रोतों जिला खनन विभाग के आंकड़ों के अनुसार बात की जाए तो पिछले वर्ष यानी कि 2025-26 में विभाग ने जो है वो 14,90,84,442 रुपये वो जुटाए थे। श्रोतों वहीं जारी वित्त वर्ष में 2026-27 में जो है वो सितंबर तक 495 रुपये की आय हो चुकी है। श्रोतों इस तरह पिछले वित्त वर्ष और जारी वित्त वर्ष में सितंबर तक की आय को मिलाकर विभाग का कुल श्रोतों बताना चाहते हैं राजस्व 19,94,14,936 रुपये यानी करीब 19.94 करोड़ रुपये जो है वो पहुंच गया है। खनन विभाग के अनुसार ये आय मुख्य रूप से जो है वो 19 खनन पट्टों की नीलामी और निजी भूमि पर दिए गए 37 खनन पट्टों की लीज से प्राप्त हुई है। श्रोतों इन पटों से मिलने वाली राशि सरकार और खनन विभाग के वास्तव में जमा हुई है। जारी वित्त वर्ष के अभी कई महीने शेष हैं श्रोतों, ऐसे में विभाग को आगे की जो है वो वास्तव बढ़ने की उम्मीद है। श्रोतों इतना ही नहीं जिला कांगड़ा में प्रदेश सरकार व खनन विभाग की जो है वो कहीं ना कहीं वर्ष 2015-16 में किए गए सर्वे के आधार पर जिला में 42 खनन साइटों की नीलामी के लिए चिन्हित किया गया था। श्रोतों जानकारियों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा बिल्कुल यूँ ही चलता रहेगा। श्रोतों आप सभी इस समय बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। कार्यक्रम कौन सा सुन रहे हैं आप सभी, चलिए बताइए, सोचिए कौन सा कार्यक्रम सुन रहे हैं। बिल्कुल बाखूबी हमारे जो श्रोता है वो बाखूबी जानते हैं कि कार्यक्रम वो सुन रहे हैं इस समय। गुड इवनिंग धर्मशाला, और किसके साथ, आपके अपने नाचीज आरजे सचिन कपूर के साथ। बिल्कुल मैं फेसबुक पर भी बिल्कुल जुड़ा हूँ, कुछ एक रील्स जो है वो डालता रह रहा हूँ आजकल श्रोताओं, क्योंकि कहते हैं ना कि क्या ज़माने के हिसाब से जो है वो चलना पड़ता है, यानी कि ट्रेंड के हिसाब से जो है वो थोड़ा सा चलना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं आरजे सचिन कपूर फेसबुक पेज है मेरा, और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ आपको एक सचिन कपूर के नाम से भी जो है वो फेसबुक आईडी है। श्रोतों इंस्टा आईडी आरजे स्पेस सचिन कपूर के नाम से है, तो ज़रूर आप सभी देख सकते हैं। वहाँ पर भी हम कुछ एक रील्स जो हैं, कुछ एक जानकारियाँ या कुछ एक स्टोरीज जो हैं वो डालने की ज़रूर कोशिश करते हैं अपनी गद्याली भाषा में। बहरहाल कार्यक्रम को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और लेके जाएंगे अपने श्रोताओं को इस फेरे से गीत की ओर।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला पर सभी ने ट्यून किया है और बड़े अच्छे लगते हैं। वाकई में इन्हें श्रोतों अच्छी चीज़ें अक्सर अच्छी लगती हैं, चाहे फिर वो चेहरा हो, फिर वो धरती हो, अंबर हो, या कहीं के नज़ारे हों। श्रोतों अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं और अच्छी चीज़ों की हमेशा जो है श्रोतों वो तारीफ़ होती रहती है। ये ज़माना अच्छी चीज़ों की अक्सर तारीफ़ें जो है वो करता रहता है। श्रोतों अगली जानकारी जो है वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज को जो है वो MRI सीटी स्कैन और एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जांच से संबंधित डाटा को 20 अक्टूबर तक जो है वो एंड टू एंड डिजिटल करने के निर्देश दिए हैं, डिजिटाइज करने के जो हैं वो निर्देश दिए हैं। श्रोतों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को जॉब ट्रेनी प्रशिक्षु चिकित्सकों को स्नातकोत्तर पीजी पाठ्यक्रम करने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि सुपर स्पेशलिस्ट पाठ्यक्रम करने के इच्छुक चिकित्सकों को भी अनुमति प्रदान की जाएगी। श्रोतों उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के बॉन्ड की अवधि और राशि में वृद्धि की जाएगी श्रोतों, ताकि पाठ्यक्रम पूरे करने के बाद वे प्रदेश में लौटकर जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा जारी रखे। श्रोतों उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के मरीजों को लाभ मिलेगा। श्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कई कदम जो है वो उठा रही है और इन पहलों को जो है वो सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। श्रोतों उन्होंने कहा कि डायग्नोस्टिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिए गए कि अपने अपने रेडियोलॉजी विभाग में किए जा रहे सभी MRI सीटी स्कैन एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जाँच से संबंधित डाटा 20 अक्टूबर तक जो है वो एंड टू एंड जो है वो डिजिटाइज किया जाए। श्रोतों इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राप्त मानव संसाधन उपलब्ध करवाए जाएगा। श्रोतों उन्होंने सभी मेडिकल कॉलेजों को नर्सों और टेक्नीशियनों की भी आवश्यकता की जानकारी भी उपलब्ध करवाने के निर्देश जो हैं वो दिए हैं, ताकि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। श्रोतों कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और आइए कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, लेके चलेंगे अब हम आपको इस प्यारे से गीत की ओर। बिल्कुल चांद सा रोशन चेहरा, मैंने अभी कहा था ना कि चाहे चेहरा हो, चाहे धरती हो, चाहे आसमान हो, चाहे कोई खूबसूरत चीज़ हो, श्रोतों देखने के लिए हमेशा हमेशा से ज़माना जो है वो तारीफ करता आया है।
1: ये चांद सा रोशन

FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो जो कि सचिन कपूर। बाकी मैं ही तारीफ करूं क्या उसकी, कभी कभी ना शब्द जो है वो कम पड़ जाते हैं श्रोतों तारीफ करने को, अगर उतनी ही खूबसूरत चीज़ हमें अगर देखने को मिल जाए श्रोतों तो वाकई में ही तारीफ करने के लिए शब्द वाकई में कम पड़ जाते हैं। बहरहाल आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए कार्यक्रम को आगे लेकर जाते हैं और आप सभी श्रोताओं को जो है वो थोड़ा सा अगली जानकारी के साथ रूबरू करवाने की कोशिश भरपूर करते हैं। श्रोतों टांडा मेडिकल कॉलेज में जो हुआ श्रोतों एक डॉक्टर के साथ जो छेड़छाड़ हुई थी है ना, लैब टेक्नीशियन ने की थी वो है ना, तो मुख्यमंत्री सुक्खू ने जो है वो निर्देश पर जो है वो DMER की कार्रवाई जो है वो मांगी है श्रोतों। तो मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को श्रोतों, टांडा मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ मामले पर जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर जो है वो कार्रवाई करते हुए आरोपी लैब टेक्नीशियन को जो है वो निकाल दिया गया है श्रोतों। और रामपुर के काशापाट दौरे से शिमला पहुंचते ही सीएम ने मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपी लैब टेक्नीशियन को जो है वो तत्काल प्रभाव से निकाल दिया श्रोतों, निकालने के निर्देश दिए गए श्रोतों। वहीं मामले में कार्रवाई को लेकर जो है वो हुई देरी से भी सीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दो टुक कहा कि इस तरह की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और समय पर जो है वो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निर्देशालय ने मामले में जो है वो कहीं ना कहीं पुष्टि दिखाई श्रोतों। और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और इसी के साथ थोड़ी सी बॉलीवुड की जो है वो भी जानकारी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यामी गौतम जी, बिल्कुल यामी गौतम आदित्य ने छोड़ी मुंबई श्रोतों, हिमाचल को बनाया बसेरा जी बिल्कुल। डायरेक्टर आदित्य धर और उनकी एक्ट्रेस पत्नी यामी गौतम को लेकर बड़ी खबर जो है वो सामने आई है श्रोतों। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुकी इस जोड़ी ने मुंबई छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि मायनगरी मुंबई को छोड़ अब हिमाचल प्रदेश में जो है वो बसने का फैसला किया गया है श्रोतों। इन दोनों ने, यामी गौतम ने शादी से पहले मंडी के गोहरा में 25 एकड़ ज़मीन पर बना 100 साल पुराना हेरिटेज घर खरीदा था श्रोतों, जो कि 100 साल पुराना था। तो चलिए जी, जोड़ियां जो हैं वो सलामत रहनी चाहिए और खुश रहनी चाहिए है ना। फिर नगरी कोई भी हो, चाहे वो मुंबई नगरी हो चाहे वो कोई और नगरी हो, जोड़ियां सलामत रहनी चाहिए। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और लेके चलेंगे आप सभी को इस

शुद्ध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर। आई श्रोतों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का, और इस अंतराल के बाद फिर हम आपसे रूबरू होते हैं।

0: सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया सर, आपका फ़ोन दे दीजिए सर प्लीज़, एक कॉल करना सर प्लीज़ सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: मैं एक कॉल करूँगा सर पापा को बस सर प्लीज़ सर, फ़ोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फ़ोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक दिन के फ़ोन से फ़ोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है ये लीजिए सर आपका फ़ोन, थैंक यू फ़ोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: इतने पैसे, माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फ़ोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज़ करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे, और पता कितना टाइम?
4: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
4: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहा है बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
5: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
4: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर। अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
4: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
5: वो किसी को भी हो सकता है।
4: हाँ, और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
4: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में।

सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने हैं क्या?

शोतो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे सचिन कपूर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोतो और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं इस अंतराल के बाद। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की विदाई के बाद भी बीते कई दिनों से जो है वो मौसम साफ बना हुआ है श्रोतों, लेकिन अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज अब बदलने वाला है श्रोतों। आज ही बिल्कुल बताना चाहते हैं 6 से यानी कि कल से 10 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का अनुमान है श्रोतों। इस दौरान 6, 7 और 8 अक्टूबर को कई ज़िलों में जो है वो आंधी बारिश और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 6 अक्टूबर को बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला ज़िला में आंधी बारिश और बिजली गिरने को लेकर जो है वो येलो अलर्ट रहेगा श्रोतों। इस दौरान आंधी की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है श्रोतों। 7 अक्टूबर को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिला में येलो अलर्ट रहेगा। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है श्रोतों। 8 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला ज़िला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा श्रोतों। आइए अब आपको लेके चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

0: यह है आप सभी का अपना वेडी गुंजन धर्मशाला और श्रोतों 7:45 मिनट जो है वो हो चुके हैं। आप सभी सुन रहे हैं वेडी गुंजन और अब वक्त हो चुका है श्रोतों वेडी गुंजन में प्रादेशिक समाचारों का।
1: पर्यटकों की आमद में वृद्धि, पर्यटन कारोबार को मिली मजबूती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति कल बिलासपुर स्थित एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। इस दौरान वे प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बिलासपुर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दीक्षांत समारोह के बाद इसी दिन राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम है, जहां उनके रात्रि ठहराव की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति का 7 अक्टूबर को मनाली के हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए कुल्लू जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा सहित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के व्यापक प्रबंध किए हैं। जिला प्रशासन ने होटल क्षेत्र, प्रमुख मार्गों और कार्यक्रम स्थलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 1-1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। आज शिमला में मुख्यमंत्री से मिलने आई इन खिलाड़ियों की मांग पर उन्होंने कहा कि इन तीनों खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर को भी 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों को पारंपरिक हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस बीच युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत ओडिशा के 32 जिलों से हिमाचल के भ्रमण पर आए 47 विद्यार्थियों के एक दल ने मुख्यमंत्री से शिमला में भेंट की। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से उनके भ्रमण के अनुभवों के बारे में जानकारी ली। ये दल NIT हमीरपुर और शिमला का भ्रमण कर चुका है, जबकि आगामी दिनों में IIT मंडी, अटल टनल और ज्वालामुखी मंदिर सहित अन्य प्रमुख स्थलों का दौरा करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जॉब ट्रेनी प्रशिक्षु चिकित्सकों को PG पाठ्यक्रम करने की अनुमति देने के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं। आज शिमला में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम करने के इच्छुक चिकित्सकों को भी अनुमति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सकों के बॉन्ड की अवधि और राशि में भी वृद्धि की जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे GST सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल की। नए GST सुधार 22 सितंबर 2025 से लागू हुए थे। प्रधानमंत्री ने GST को वन नेशन वन टैक्स के रूप में देश के लिए एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया है।
2: नागरिक देवो भव के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म में इसकी 7 झलक दिखाई दे और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे MSME यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हो और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार।
1: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, X handle @AIRNews_Shimla और YouTube चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
3: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
4: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
3: नहीं बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं, ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
5: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज न करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
7: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
6: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
7: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
6: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
7: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
6: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
7: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
6: लड़ी हक की लड़ाई,
7: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों में पिछले 3-4 दिन से पर्यटकों की आमद में भारी वृद्धि देखी गई है। 2 से 4 अक्टूबर तक बाहरी राज्यों से करीब 70,000 वाहन शिमला पहुंचे हैं। आंकड़ों के मुताबिक सामान्य दिनों की तुलना में लॉन्ग वीकेंड पर शिमला पहुंचने वाले वाहनों की संख्या 2 गुना से भी अधिक रही। शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की संख्या बढ़ने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि पर्यटकों की आमद बढ़ने से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को फायदा हुआ है। ASP शिमला शहरी मेहर पंवर ने कहा कि आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की संभावना है, जिसके लिए शिमला पुलिस पूरी तरह तैयार है।
8: लॉन्ग वीकेंड के चलते शिमला में काफी टूरिस्ट की आवाजाही रही है। हमारे डेटा के मुताबिक 3 दिनों में 3rd और 4th तारीख को कुल मिलाकर के 70,000 के करीब गाड़ियों की आवाजाही रही है। तो आने वाले वीकेंड में ट्रैफिक की समस्या ना हो, ये हम पूरी तरीके से इंश्योर करेंगे और पुलिस बल पूरा तैनात है और हम अपनी कार्य प्रणाली को भी समय समय पर अपडेट करते रहते हैं ताकि हम और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकें। सभी शिमला शहर निवासी और पर्यटक हैं, उनसे शिमला पुलिस की यही अपील है कि आप यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें।
1: उधर कांगड़ा जिला के धर्मशाला और त्रियुंड में भी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। हिमाचल फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष अश्वनी बांबा के अनुसार 40 से 50 साल के अनुभव में उन्होंने धर्मशाला में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक नहीं देखे।
9: 2-3 दिन की लंबा वीकेंड आया, मुझे भी यहाँ 40-45 साल हो गया, मैंने इतना रश नहीं देखा था। सड़कें जाम थी, होटल फुल थे, चाहे वो होमस्टे था, चाहे B&B था, चाहे गेस्ट हाउस था, सब फुल थे। टोटल इकोनॉमी को एक बूस्ट मिला। इतना टूरिस्ट आपका सड़कों पे था, होटल में था, खैर उससे ज्यादा तुरंत बीच में 5-7 हजार बंदा तुरंत ग्राउंड और उसके आस पास जगह पे हो सकता है।
1: प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया है कि सुक्खू सरकार ने झूठी गारंटियां देकर प्रदेश की जनता को ठगा है और विकास पूरी तरह थम गया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई चरम पर पहुंच गई है और मुख्यमंत्री को भाजपा में गुटबाजी के आरोप लगाने से पहले अपनी पार्टी की दशा और दिशा संभालनी चाहिए। राजेंद्र राणा ने कहा कि सुक्खू सरकार में अपने ही मंत्रियों और विधायकों को जलील किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हिमाचल को कर्ज के बोझ तले दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली से समाज का हर वर्ग परेशान है। प्रदेश में मौसम के एक बार फिर करवट बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 6 से 9 अक्टूबर के बीच प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर आंधी तूफान, बिजली चमकने और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा के साथ बर्फबारी का पूर्वानुमान भी जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास पर एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। राज्य सरकार एशियन गेम्स में हिमाचल की कबड्डी स्वर्ण पदक विजेताओं और क्रिकेट खिलाड़ी रेणुका ठाकुर को प्रदान करेगी 1-1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जॉब ट्रेनी प्रशिक्षु चिकित्सकों को पीजी पाठ्यक्रम करने की अनुमति देने के स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। और प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पिछले 3-4 दिनों से पर्यटकों की आमद में वृद्धि, पर्यटन कारोबार को मिली मजबूती। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
0: श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ वेड़ी जो कि सचिन कपूर। तो श्रोतो अब आपसे ले लेते हैं अलविदा, आप सभी को कर देते हैं टाटा बाय बाय, कल फिर मिलते हैं श्रोतो। यूं ही हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सचिन कपूर लेता हूँ आपसे इजाज़त। नमस्ते धर्मशाला।

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे
1: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ।
2: ये लो भैया पानी।
1: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
3: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
5: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी।
4: जल है तो कल है।

0: ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
7: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
8: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
0: मोहित मेरा इस्तीफा।
9: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
0: सॉरी यार।
9: काम कीजिए आप लोग अपना।
8: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
10: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।

0: बोला था ना तुझे ये क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तू सिलेक्शन के लिए चला गया।
1: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
2: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
0: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता, पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा, ये ले।
3: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
4: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
3: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
5: हेलो मम्मी, वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
6: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो, सीधा मम्मी को फोन कर दिया। अरे एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
5: सॉरी बेबी।
6: क्या सॉरी यार, कमाल है। एक काम करो, ये लो मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए। 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तंगी दोनों के लिए चल रही है ना। अगल ना तो

नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। रजोल धनोटू सड़क 6 से 16 अक्टूबर तक रहेगी बंद। पाइप कलवर्ट एवं सीसी पेमेंट निर्माण कार्य के चलते वाहनों की आवाजाही पर रहेगी रोक। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र खनियारा में एक वर्षीय LLM पाठ्यक्रम शुरू। पाठ्यक्रम में 30 गैर सब्सिडाइज सीटें उपलब्ध, मेरिट के आधार प्रवेश। बेसहारा मानसिक रोगियों की मदद करेगा विधिक सेवा प्राधिकरण। 7 से 9 अक्टूबर से चलेगा विशेष अभियान। ज्वालामुखी रोहाड़ू सड़क का एक हिस्सा 6 से 16 अक्टूबर तक रहेगा बंद। सड़क कार्य के चलते वाहनों की आवाजाही वैकल्पिक मार्ग से होगी। अब समाचार विस्तार से।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा द्वारा मानसिक बीमारी के कारण भटक रहे बेसहारा लोगों की सहायता के लिए 7 से 9 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। ये जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आर्मेहुल शर्मा ने दी। उनका कहना है कि अभियान का उद्देश्य समाज के संवेदनशील एवं वंचित वर्ग के लोगों को समयबद्ध मानवीय एवं उचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के साथ साथ उनके अधिकारों, गरिमा और कल्याण की रक्षा सुनिश्चित करना है। विशेष अभियान के दौरान जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों के समन्वय से ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। अभियान में पैरालीगल वॉलंटियर भी सक्रिय रूप से सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि चिन्हित व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करवाने के साथ आवश्यक उपचार तथा जरूरत के अनुसार उपयुक्त मनोचिकित्सीय संस्थान में भर्ती करवाने की व्यवस्था की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय खनियारा के निदेशक कुलदीप कुमार जी ने यह जानकारी दी कि एचपीयू क्षेत्रीय केंद्र मोहली खनियारा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एक वर्षीय एलएलएम पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में 30 गैर सब्सिडाइज सीटें उपलब्ध हैं, जिन पर प्रवेश मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र 21 अक्टूबर तक एचपीयू क्षेत्रीय केंद्र मोहली खनियारा में जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र का शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 1500 रुपए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए 900 रुपए निर्धारित किया गया है। शुल्क निदेशक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला के नाम से डिमांड ड्राफ्ट या आईपीओ के माध्यम से जमा करवाना होगा। जिला अधिकारी कांगड़ा हेमराज वैरवा ने सड़क निर्माण कार्य के चलते रजोल से धनोटू तक सड़क के एक हिस्से को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि रजोल से धनोटू सड़क का एक हिस्सा 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 तक बंद रहेगा। इस दौरान पाइप कलवर्ट तथा सीसी पेमेंट का निर्माण कार्य किया जाएगा। रजोल गांव राष्ट्रीय राजमार्ग 154 में से पहले से जुड़ा हुआ है, इसलिए रजोल के लिए अलग से यातायात डायवर्जन की आवश्यकता नहीं होगी। जिला दंडाधिकारी ने आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 115 के तहत जारी किया है। हालांकि एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन तथा अन्य आपातकालीन वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज वैरवा ने सड़क निर्माण कार्यों के चलते ज्वालामुखी रुहाड़ा सड़क के एक हिस्से को सड़क कार्य के चलते अस्थायी रूप से बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि ये मार्ग 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा, ताकि सड़क का कार्य सुरक्षित एवं सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। इस दौरान सड़क कार्य के लिए सिहारपाई से जजवार तक कटिंग एवं अन्य निर्माण कार्य किए जाएंगे। इस दौरान वाहनों की आवाजाही के लिए अधेदी हट्टी, अदवानी, बलारडू, चंबापत्तन वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है। वाहन चालक इस अवधि में उक्त वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। इस दौरान एम्बुलेंस तथा अन्य आपातकालीन वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश में फरवरी 2027 से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की शुरुआत हो सकती है। सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के धबोटा में ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। यह परियोजना राज्य के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। परियोजना के लिए लगभग 4000 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध करवाई गई है। वहीं ऊना में करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन अमोनिया परियोजना का प्रस्ताव है। इसके लिए जमीन और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं पर भी काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के 6 शहरों में अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट बनाए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग की ओर से इस योजना को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। योजना के तहत सड़कों को बार बार खोदने के बजाय बिजली, पानी, सीवरेज और दूसरी यूटिलिटी सेवाओं की लाइनों को जमीन के नीचे बनाए जाने वाले व्यवस्थित डक्ट में डाला जाएगा। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग इस दिशा में आगामी कदम उठाएगा। प्रारंभिक चरण में प्रदेश के 6 शहरों को इस योजना में शामिल किया गया है।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले स्वच्छता कर्मियों के बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने सभी राजकीय तथा निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों तथा मुख्य अध्यापकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से पात्र विद्यार्थियों की सूची स्कूलों को भेजी गई है। स्कूलों को सूची में शामिल विद्यार्थियों को विवरण का सत्यापन करना होगा। 31 अक्टूबर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। भारत में 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट बनाने की प्रस्तावित योजना के लिए घरेलू कंपनी यूप्लेक्स ने अमेरिका की स्पेक्ट्रा सिस्टम्स के साथ साझेदारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक इन नोटों के लिए प्लास्टिक सामग्री तैयार करने वाले संभावित आपूर्तिकर्ताओं का मूल्यांकन कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने 10 और 20 रुपए के नोटों के लिए प्लास्टिक फिल्म की जरूरत को लेकर निविदा जारी की है। इन नोटों के लिए लगभग 68,000 रीम विशेष प्लास्टिक फिल्म की आवश्यकता होगी। इस फिल्म पर छपाई और स्याही की पकड़ मजबूत बनाने के लिए विशेष कोटिंग की जरूरत रहेगी। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: मौका मिलेगा।
1: शट अप कर जाओ।
2: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
3: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार।
2: पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
3: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
2: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
4: पूरा खाना एक साथ नहीं,
2: थोड़ा थोड़ा करके।

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे
1: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ,
2: लो भैया पानी।
1: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
3: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
5: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी।
4: जल है तो कल है।

0: ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
7: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
8: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
0: मोहित मेरा इस्तीफा।
9: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
0: सॉरी यार।
9: काम कीजिए आप लोग अपना।
8: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
10: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।
11: बोला था ना तुझे, ये क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तू सिलेक्शन के लिए चला गया।
12: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
13: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
11: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता,
13: पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।
14: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
11: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
14: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
15: हेलो मम्मी, वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
16: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया। अरे एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
15: सॉरी बेबी।
16: क्या सॉरी यार, कमाल है। एक काम करो, ये लो, मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए। 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तंगी दोनों के लिए चल रही है ना। अगल ना हो तो

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: समोसा मिलेगा।
1: सटअप कर जाओ।
2: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
3: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार।
2: पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
3: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
2: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
4: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाओ।

0: कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना
1: बेटा, तुम याद रखना,
0: तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे
1: तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ,
2: ये लो भैया पानी।
1: छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है?
3: भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है?
4: हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है।
5: आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी,
4: जल है तो कल है।

0: ये मेरा इस्तीफा।
1: क्यों
0: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
2: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
3: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
4: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
5: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
6: मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
7: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
8: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
9: मोहित मेरा इस्तीफा।
10: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
9: सॉरी यार,
10: काम कीजिए आप लोग अपना।
8: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
11: कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे गंदा पानी कुछ समय बाद अपने आप नीचे बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती। याद रखना, विवाद में नहीं धैर्य में असली शक्ति होती है। इसलिए किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही जवाब।
12: बोला था ना तुझे, ये क्रिकेटर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, फिर भी तू सिलेक्शन के लिए चला गया।
13: मेरी बात मान, एक जोर से खींच, रिजेक्शन विजेक्शन सब भूल जाएगा।
14: इधर बैठे तुझे लगेगा कि सारा स्टेडियम तेरा नाम चिल्ला रहा है।
12: अरे एक बार लेने से कुछ नहीं होता,
14: पर तू तो खिलाड़ी है, तू कब से डरने लगा? ये ले।
15: कई युवा नशे को अपनी छोटी छोटी हार से लड़ने का हथियार बनाने की गलती कर बैठते हैं और अक्सर नशे के भ्रम में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
12: किसने कहा तुमसे कि मैं इस हार को भूलना चाहता हूँ? मैं एक खिलाड़ी हूँ, अपने हार को अपनी मेहनत से जीत में बदलना आता है मुझे।
15: अपने आत्मविश्वास से नशे को हराएं, आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम।
16: हेलो मम्मी, वो मुझे ना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, आप 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे प्लीज?
17: तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो? सीधा मम्मी को फोन कर दिया। अरे एक बार मेरे से तो पूछ लेती, मुझसे तो आके बात करती।
16: सॉरी बेबी।
17: क्या सॉरी यार, कमाल है। एक काम करो, ये लो मम्मी को फोन करो और बोलो मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 30,000 चाहिए। 10,000 मुझे भी तो चाहिए, मुझसे तो पूछ लेती, तंगी दोनों के लिए चल रही है ना। अगल ना हो तो

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।